आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। आज सोमवार है। शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 जून 2026 ईस्वी। प्रातः की 5:49 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है चिंतन।
1: अपन मौत वा विचारक प्रति अतिशय आग्रह मानव स्वभावक अंग थिक। हम जे कहै छी सह ठीक अछि, एहिसँ इतर जे किछु अछि मिथ्या थिक। एहन विचार वा मनोदशा कहू लोकमे सामान्यतया पाओल जाइ छै। एहि सम्बन्धमे विचारणीय थिक जे एके सत्य समय स्थान पात्र विभेदसँ मिथ्या सिद्ध भऽ जाइ छै। आजुक सत्य काल्हि मिथ्या भऽ जायत, वा स्थान विशेषक सन्दर्भमे जँ कहल जाय तऽ जे किछु सत्य कहल बुझल मानल जाइ छै स्थान परिवर्तन भेने ओ मिथ्या भऽ जायत। तखन मत विशेषक प्रति आग्रहक प्रश्ने कहाँ उठै छै? भारतीय समाजमे स्वमतक प्रति आग्रह बेसी देखल जाइ छै।

0: यह कारण थिक जे परंपरावाद जतेक बद्धमूल भारतीय समाज में अछि ततेक अन्यत्र नहि। खाहे ओ परंपरा समयानुकूल समयोचित आ उपयोगी हो वा नहि, अतः जतेक रूढ़ि आ अंधविश्वास भारतीय जनजीवन में सुनियाल अछि ततेक अन्यत्र कतौ नहि। हमर कुल वा परिवार अहिना करैत आयल अछि, तें हम एकरा कऽ रहल छी आ किछु बीत जतेक करिते रहब। हमरा परिवार में ई नहि कहियो भेल अछि, तें हम ई नहि करब। एहन उक्ति प्रायशः सुनबा में अबै छै। एकरा हठवाद वा मूढ़ताक अतिरिक्त आर किछु नहि कहल जा सकै छै। समय परिवर्तनशील अछि, तें यदि समयक संगहि वैचारिक परिवर्तन वा परिमार्जन नहि कयल जाय तऽ बुद्धिजीवीक लेल ई उचित नहि थिक। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतवासी के वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनेबाक संदेश देलनि। कोनो मत वा विचार के विज्ञानक तराजू पर तोलबाक आग्रह कयलनि। हुनका विचारें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनौनाइ शोषित पीड़ित भारतीय जनताक लेल एक गोट प्रबल अनिवार्यता छल। हुनका मते विज्ञाने एकमात्र एहन साधन थिक जकरा अवलंबन द्वारा न केवल मानवक आर्थिक अपितु वैचारिक सामाजिक सब प्रकारक उन्नयन संभव अछि। प्रश्न अछि सामाजिक उन्नयन कोना। एहि प्रश्नक उत्तरक लेल पुनः प्रश्ने सँ आरंभ कयल जाय। समाज किएक पछुआइ छै? उत्तर अछि रूढ़िग्रस्तताक कारण, अंधविश्वासक कारण। जँ रूढ़ि आ अंधविश्वासक त्याग कऽ देल जाय, सरल गलल अंधधारणाकेँ छोड़ि देल जाय, नव नव विचार समयोचित धारणाक अवलम्बन कयल जाय, तऽ स्वतहे सामाजिक विकासक गति तीव्र भऽ उठतै। दोसर शब्दमे विषय वस्तु घटना वा विचारक प्रति जँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाओल जाय, हमरा लेल लाभप्रद अछि की हानिकर अछि, एहि पहलू पर सुस्थिर चित्तसँ तर्क वितर्क कयल जाय, आ जे लाभप्रद अछि तकरा ग्रहण कयल जाय, आ जे हानिकर थिक तकर त्याग कऽ देल जाय, तऽ सामाजिक उन्नयन स्वतहे आरम्भ भऽ जेतै। पंडित नेहरू तैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनेबा पर बल दै छलाह। ओ तऽ स्पष्ट शब्दमे घोषणा कयने छलाह जे विज्ञानक अवलम्बनक इतर भारतक प्रगतिक दोसर कोनो विकल्प नहि अछि। किछु लोक विज्ञानों पर संकीर्ण मतवादक छाप लगबै छथि, जेना ई साम्यवादी विज्ञान थिक, ओ पूंजीवादी विज्ञान थिक। एहन टीका टिप्पणीक खंडन करैत पंडित नेहरू कहै छलाह, विज्ञान तऽ विज्ञान थिक आ विज्ञान स्वयमेव परिभाषित अछि, एहि पर संकीर्ण मतवादक छाप लगौनाइ कदापि संभव नहि अछि। आइ भारतक जे किछु वैज्ञानिक प्रगति भेल अछि, एहि 40 वर्षमे कृषि, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा, खनन आ भूतत्व, ऊर्जा आ अंतरिक्ष विज्ञानक क्षेत्रमे भारतक जे किछु उपलब्धि रहल अछि, ताहि सभीक सर्वाधिक श्रेय पंडित नेहरूएक दूरदृष्टि आ विज्ञान प्रेमके छनि। सामाजिक पटल पर सेहो भारतक प्रगतिक श्रेय बहुलांशतः हुनके छनि। विज्ञानक जे विध्वंसक पक्ष अछि तकर ओ प्रबल विरोधी छलाह। विज्ञानक साध्य हेबाक चाही मानव कल्याण, ने कि मानवक संहार।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज का विषय है तिल की आधुनिक खेती। जानकारी दे रहे हैं शंकर कुमार चौधरी।
2: स्नेही किसान श्रोता भाई बहन लोकन, आजुक कृषि चर्चा आप शंकर कुमार चौधरी से सुनल जाय। हमरा लोकन तेलहनी में खरीफक बेर में तिल फसल के आधुनिक उन्नत विधि से खेती क के चिक्कन आमदनी क सकै छी जे बेरक मांग अछि। एखन तिल फसल के खेती के प्रसंग में चर्चा कर रहल छी। तिल दू रंगक होइत अछि, एकटा उजरा तिल आ दोसर करिया तिल। एकर सभक सदत उन्नत ओ अनुशंसित प्रभेद के लगेबाक चाही। स्नेही किसान श्रोतागण, करिया तिल के उन्नत प्रभेद एकटा अछि कृष्णा। एकर औसत उपज क्षमता 6.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर

0: धरि होइत अछि। ओ एकरा तैयार होयबाक अवधि 64 से 70 दिन धरि मानल गेल अछि। एहिमे तेलक मात्रा 9.5% धरि मानल गेल अछि। ओ एकर उपजाक लेल देश भरिक पूरा राज्य मानल गेल अछि। उजरा तिल के उन्नत प्रभेद अछि कांके सफेद। एकर औसत उपज क्षमता 5.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर धरि अछि। एकरा तैयार होयबाक अवधि 70 से 80 दिन धरि मानल गेल अछि। एहिमे तेलक मात्रा 50% धरि होइत अछि आ एकरा बाउग करबाक उपयुक्त क्षेत्र दक्षिणी बिहार मानल गेल अछि। एकटा उजरा तिल के प्रभेद होइत अछि प्रगति MT 75 2002। ई प्रभेद रोग सहिष्णु एकटा नव प्रभेद अछि। एकर औसत उपज क्षमता 7.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर धरि होइत अछि। ओ एकरा तैयार होयबाक अवधि 80 से 85 दिन धरि मानल गेल अछि। एहिमे तेलक मात्रा 50% धरि पाओल जाइत अछि आ एकरा उपजयबाक लेल बिहारक पूरा क्षेत्र उपयुक्त मानल गेल अछि। तिल के एकटा उन्नत प्रभेद अछि कालिका। एकर औसत उपज क्षमता 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर धरि मानल गेल अछि। एकरा तैयार होयबाक अवधि 90 दिन धरि अछि। ओ एहिमे तेलक मात्रा 48% धरि पाओल जाइत अछि। एकटा प्रभेद अछि RT 351। एकर उपज क्षमता 9.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर धरि होइत अछि। ई सब अछि तिल के उन्नत प्रभेद। एकरा बाउग करबाक काल हमरा लोकनि के बीया दर 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर धरि होइत अछि आवश्यकता। बाउगक बेर मे खरीफ मे करिया तिल मध्य जून सँ मध्य जुलाई धरि बाउग कयल जाइत अछि आ उजरा तिल मध्य जून सँ जून के अंत धरि बाउग करबाक उचित बेर अछि। तिल के बाउग करबा सँ पहिने बीया के उपचारित कऽ दियैक, जाहि लेल हमरा लोकनि 2 ग्राम थीरम सँ प्रति किलोग्राम बीया के उपचारित कऽ सकैत छी। बाउग करबा काल एकर दूरी 30 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर × 15 सेंटीमीटर रखबाक चाही। खाद ओ उर्वरक में हमरा लोकनि कंपोस्ट 60 क्विंटल बाउग के 20 से 30 दिन पहिने दऽ देबाक चाही। 40 किलोग्राम नेत्रजन स्फुर, 20 किलोग्राम पोटास स्फुर के पूरा मात्रा आ नेत्रजन के आधा मात्रा खेत के अंतिम जोत के बेर में दऽ कऽ माटि में नीक जकाँ मिला दिए आ नेत्रजन के बचल शेष आधा मात्रा के बाउग के 30 दिन का बाद पाँती के बीच में दऽ कऽ ऊपर बेसन कऽ दिए।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम कृषि चर्चा। अब हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा।

इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। एनटीए ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। सीबीआई वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉ एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदिनी सिन्हा, जो यहाँ की एक जानी मानी डाइटिशियन है। आइए इनसे हम बातचीत करते हैं। हमारी बातचीत का विषय होगा शिशु आहार। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि जो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका उस समय आहार क्या होना चाहिए?
2: सबसे पहले तो जब बच्चा जन्म लेता है उसका आहार, तो जैसे सबको पता है कि माँ का दूध ही सबसे सर्वोच्च होता है उसके लिए। जब बच्चा जन्म लेता है उसके आधे घंटे बाद ही हम बोलते हैं कि माँ का दूध देना चाहिए। 6 महीने तक माँ के दूध पे ही बच्चे रहे तो सबसे बेस्ट है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ को दूध नहीं आ पाता या दूध कम आता है, तो उस समय पे फिर हम लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो फिर आप बच्चे को गाय का दूध आप दे सकते हैं।
1: माँ का दूध सबसे अच्छा आहार होता है, लेकिन यदि किसी माँ के स्तन में दूध यदि नहीं है तो उस परिस्थिति में कोई पाउडर मिल्क वगैरह कोई ले सकता है?
2: हाँ, पाउडर मिल्क वगैरह ले सकता है। अच्छा। लेकिन आप एक बार अगर अपने मन से कुछ ना

0: करें, डॉक्टर से एक बार पूछ के ही करें। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आप अगर पाउडर मिल्क भी नहीं तो फिर गाय का जो दूध है वो सबसे बेस्ट है।
1: अच्छा, तो गाय का दूध सीधा रहना चाहिए, उसमें कुछ पानी मिला
0: नहीं, उसमें हम कुछ पानी मिला के देंगे, बिना मलाई वाला देंगे। अच्छा। और उसको एक बार छान के भी देंगे, ऐसा नहीं है कि बस दूध गर्म किया और दे दिया, उसको हम लोग छाने तो सबसे बेस्ट है।
1: सीधे देने से वो गरिष्ठ हो सकता है ना?
0: हाँ, गरिष्ठ हो सकता है, पचाने में बच्चे को परेशानी होगी इसलिए।
1: अच्छा, पानी के बारे में भी डॉक्टर साहब बहुत कंफ्यूजन होता है कि छोटे बच्चों को पहले कुछ दिनों तक पानी अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका?
0: नहीं, पानी अवॉइड करने को ही बोलते हैं हम लोग, छोटे बच्चों को हम लोग कभी नहीं बोलते हैं कि आप उनको पानी दें। पानी अगर आपको बच्चे को देना भी है तो आफ्टर 5 मंथ्स आप स्टार्ट करें, जब बच्चा 5 महीने का हो जाए उसके बाद आप पानी दें तो बेस्ट है।
1: 5 महीने तक बिल्कुल ना पानी
0: नहीं, आप मिल्क पे ही रखें बच्चे को। अच्छा। मिल्क पे ही रखें या मदर मिल्क पे है तो सबसे अच्छा, अगर नहीं भी है तो पानी नहीं देते। लेकिन हाँ, अगर कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हमको देना पड़ता है तब उस टाइम पे हम बच्चे को जो है पानी दे सकते हैं, लेकिन कुछ भी उसमें ऐड ना करें। जो बहुत लोग कुछ कुछ चीजें ऐड कर देते हैं, मिश्री विश्री ये वो, उन चीजों को हम ऐड ना करें तो अच्छा है।
1: जैसे मान लीजिए बहुत गर्मी है, बच्चा परेशान है, तो उस केस में पानी देने में कोई हर्ज नहीं है?
0: उस में हर्ज नहीं है, लेकिन हम बहुत मतलब कम क्वांटिटी हम पानी दें, ज्यादा उस तरीके से नहीं कि हम बस पानी पिलाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं।
1: सादा पानी तो नहीं, नल
0: नहीं,
1: का पानी
0: नहीं, नल का पानी नहीं, वो हाँ फिल्टर्ड वाटर हो, बॉइल्ड वाटर हो तो वो अच्छा है।
1: ठीक है, तो 6 महीने तक तो आपने कहा कि माँ का दूध जो है सर्वोत्तम आहार है, उसके बाद आहार में क्या परिवर्तन आ सकता है?
0: उसके बाद जो हम बोलते हैं कि जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो हम एक फूड स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री फूड, उसको बोला जाता है कि जो कि फूड बहुत जरूरी है, क्योंकि बस माँ के दूध से बच्चे का जो एक डेवलपमेंट है वो 6 महीने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे को जो है फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट चाहिए। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमको बच्चे को अनाज जो है, जो घर का जो खाना है, सिंपल सी बात है, उसको हमको स्टार्ट करना है, लेकिन बस ये देखना है कि हमको उसको कैसे शुरू करना है। बच्चा 6 महीने का है, हम उसको लिक्विड से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि दाल का पानी है, राइस वाटर है, सूप आप दे सकते हैं सारी सब्जियों को छान के, पालक का सूप बच्चे को दे तो बेटर है, क्योंकि आयरन की नीड बहुत ज्यादा होती है, विटामिन सी की नीड बहुत ज्यादा होती है उस टाइम पे। तो आप सब सब्जियों को सूप बना के छान के पतला करके 6 महीने में आप ऐसे बच्चे को दे सकते हैं। फ्रूट जूस भी आप दे सकते हैं, लेकिन ये स्टार्ट हम बहुत कम करेंगे, ये स्टार्ट करेंगे 1/2 to 1 teaspoon।
1: अच्छा,
0: इस मतलब तरीके से स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं है कि बच्चा ले रहा है तो हम इसको दिए जा रहे हैं, इस तरीके से नहीं करना है। स्टार्ट विथ मतलब स्मॉल फीडिंग मींस 1/2 teaspoon to 1 teaspoon।
1: यानी कि जो हम लोग जो चावल खाते हैं, जो काफी बड़े बड़े दाने होते हैं, या दाल गाढ़ी दाल खाते हैं, उस तरह का उसको
0: नहीं,
1: भोजन
0: बिल्कुल नहीं, नहीं। स्टार्ट विद क्लियर लिक्विड डाइट, उसके बाद हम फुल लिक्विड डाइट पे आएंगे। जब 7वें महीने में बच्चा आएगा तो हम बच्चे को दूध वाली जो आइटम है, जैसे खीर का आइटम है, सूजी का पॉरिज हो गया बिल्कुल पतला बना के, कस्टर्ड हो गया बिल्कुल पतला बना के, ये खिचड़ी बिल्कुल पतली सी खिचड़ी, या दाल आप उस टाइम दाल का सूप थोड़ा सा, इस तरीके से हम बच्चे को स्टार्ट कर सकते हैं।
1: तो कितने दिनों के बाद हम उसको जो है पूर्ण आहार दे सकते हैं?
0: पूर्ण आहार जो सॉलिड फूड देंगे वो हम बच्चे को 1 साल के बाद देंगे, 12 महीने, नहीं तो जो 8 से 9 महीने का जो है वो भी पूरा सेमी सॉलिड डाइट पे रहेगा। बच्चे का खिचड़ी हो गया, मैस पोटैटो हो गया, सब्जियां मिक्स करके दें आप। 10-11 महीने का है तो दलिया है, ओट्स है, आप ये चीजें आप बच्चे को दे सकते हैं। रोटी जो है पूरा उबाल के, बॉयल करके, पीस के वैसे दे सकते हैं।
1: अच्छा, 1 साल हो जाने के बाद आपने कहा कि उसको जो है भोजन जो है स्टार्ट कर सकते हैं, परंतु कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो 1 साल तक शिशु को नहीं दिया जाना चाहिए?
0: सबसे पहला चीज तो ये है कि जो हैवी स्पाइसी फूड दी है, ज्यादा फ्राइड आइटम नहीं बच्चे को देना है, ज्यादा स्पाइसी आइटम बच्चे को नहीं देना है, ज्यादा फ्लेवर आइटम नहीं देना है, जैसे बिस्किट वगैरह अपना दें तो बेस्ट है। जो हमने बताया कि एक नॉर्मल घर का अनाज, सब्जी, फल और दूध पे बच्चे को रखना है हमको 1 साल तक।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे श्रोताओं को शिशु आहार के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब सुनिए भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले ये देशगान।

संवेद स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये देशगान। अब सुनिए भजन, स्वर है हरिहरन का।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR ऐप और सुनते रहें आकाशवाणी दरभंगा। अगला भजन हम आपको सुनवाते हैं, स्वर है जगजीत सिंह का।

शर्मा बंधु की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे ये भजन। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। इसी भजन के साथ भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। अब सुनिए रामचरितमानस का मुख्य स्वर है अनुराधा पौडवाल का।

ऐसा कर रहे हैं। प्रश्न है, ज्ञान और भक्ति में क्या भेद है? काकभुशुंडी कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में माया द्वारा प्रेरित रिद्धि सिद्धियां विघ्न उपस्थित करती हैं। माया के अतिरिक्त देवगण भी बाधाएं उत्पन्न करने में पीछे नहीं रहते। इंद्रियां झरोखों के समान होती हैं, जिनसे आती विषय वासना रूपी हवा के प्रवाह को रोकना बड़ा कठिन होता है। इन झोंकों से ज्ञान रूपी दीपक का बुझ जाना भी बड़ा सरल और स्वाभाविक है। इस दीपक के बुझते ही जीव आवागमन के क्लेश भोगने लगता है। संतों और ज्ञानियों का मत है कि ज्ञान मार्ग से मोक्ष रूपी परम पद पाना अत्यंत कठिन है, किंतु ये पद भक्ति मार्ग से बड़ी सुगमता से प्राप्त हो जाता है।

रामचरितमानस गान अभी आप सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी की दरभंगा केंद्र से किया गया। जानकारी प्राप्त कीजिए आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। आपसे कुछ देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला 7:05 पर। उर्दू प्रोग्राम अंजुमन आप सुना करते हैं 9:10 से। फिल्म संगीत का समय होगा 10:00। विद्यापति गीत आप सुना करते हैं 10:30 से। शास्त्रीय संगीत का समय होगा दिन के 11:00।

फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे दिन के 12 बजे। बहनों को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार आप सुना करते हैं 12:30 से। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे 1:15 पर। रोजगार सूचना आप सुनेंगे 2:10 पर। फिल्म संगीत एक बार फिर से सुनेंगे 2:30 से।

लोकगीत का समय होगा दोपहर 3 बजे। सांतकालीन सभा के अंतर्गत आप सुनेंगे युवा दोस्तों को संबोधित कार्यक्रम तरुणा कुसुम संध्या 5 बजे। विद्यापति गीत आप सुनेंगे 6:10 से।

0: ग्रामीण भाइयों को संबोधित कार्यक्रम गांव घर का समय होता है संध्या 6:30 से। किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी आप सुनेंगे संध्या 7 से। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे 7:52 से। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार का समय होता है 8:15 से। पब्लिक स्पीच यह कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 से। और फिल्म संगीत पर फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी का समय होगा 10:00। ये था आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त विवरण। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। अष्टमः भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोगस्य उपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नम्। विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण तस्य इंडोनेशिया देशस्य समकक्षीयेण सुगियोनो इत्यनेन च सभायाः सहाध्यक्षता कृता। भारत इंडोनेशिया देशौ राजनैतिक रक्षा सुरक्षा समुद्रीय व्यापार निवेशः औषधीय स्वास्थ्य सेवाः डिजिटल ऊर्जा संपर्कः अंतरिक्षम शिक्षा दूतावास संस्कृति क्षेत्रम इत्यादीनां विविध क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढं कर्तुं चर्चितवन्तौ। उभौ नेतारौ परस्पर हितानां क्षेत्रीयस्य वैश्विकस्य च विषयेपि विचाराणां आदान प्रदानम् अकुरुताम्। डॉक्टर जयशंकरः स्वस्य प्रारंभिक भाषणे उक्तवान् यत् उभयोः राष्ट्रयोः मध्ये संयुक्त आयोगः चतुर्णां वर्षाणाम् अन्तरालस्य अनन्तरम् आहूयते। अस्मिन् उपवेशने द्वैपाक्षिक सम्बन्धेषु महती प्रगति अभवत्। लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिरला वर्यः अद्य चंडीगढ़ नगरे कॉमनवेल्थ संसदीय संघस्य CPA इत्यस्य भारत क्षेत्रस्य त्रिदिवसीय

0: दलद्वितीयसम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य सम्मेलनस्य आयोजनं हरियाणाविधानसभया क्रियते। अस्मिन् कार्यक्रमे राज्यसभायाः उपसभापतिः हरिवंशः, राज्यस्य मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणाविधानसभायाः अध्यक्षः हरविन्दरकल्याणः, सम्पूर्णदेशस्य 15 विधानमण्डलानां पीठासीन उपपीठासीन अधिकारिणः, विधानसभायाः सदस्याः च उपस्थिताः भविष्यन्ति। राष्ट्रियपरीक्षा अभिकरणेन NTA इत्यनेन अस्मिन् मासे 21 दिनांके आयोक्ष्यमाणस्य 26,000 नीट यूजी पुनः परीक्षायाः कृते परीक्षानगरसूचनापत्रं प्रकाशितम्। पुनः परीक्षाः अपराह्णे 2 सायं 5:45 भारतस्य 51,500 नगरेषु, 14 विदेशेषु च भविष्यन्ति। NTA इत्यनेन स्पष्टीकृतं यत् परीक्षा नगरसूचनापत्रं प्रवेशपत्रं नास्ति, अपि तु केवलम् अभ्यर्थिनां परीक्षाकेन्द्रज्ञानाय सूचना एव अस्ति। अभिकरणेन अभ्यर्थिनः प्रार्थिताः यत् ते परीक्षायाः प्रवेशपत्रस्य विमोचनस्य च विषये नवीनतमानां घोषणानां कृते स्वस्य आधिकारिकजालपटले अद्यतनीयाः भवेयुः। विश्वस्य बृहत्तमा सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वस्ति योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनायाः कार्यान्वयन राज्येषु पश्चिम बंगाल राज्यं 37वां राज्यं भविष्यति। राज्ये ABPM जय इत्यस्य कार्यान्वयनार्थम् अद्य राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्राधिकरणं पश्चिम बंगाल सर्वकारश्च सहमतिपत्रे हस्ताक्षरं करिष्यतः। नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रिणः JP नड्डायाः तथा पश्चिम बंगस्य मुख्यमन्त्रिणः शुभेन्दु अधिकारिणः उपस्थितौ MOU इत्यस्य हस्ताक्षरं भविष्यति। भारतस्य पूर्वोत्तर राज्यैः सह सहकारं सुदृढं कर्तुं द्विदिवसीय यात्रायै यूरोपीय संघस्य उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलम् अद्य असम राज्यस्य गुवाहाटी नगरम् आगमिष्यति। यूरोपीय संघस्य मतानुसारं चर्चाः तेषु विषयेषु केन्द्रिताः भविष्यन्ति यत्र यूरोप देशस्य तथा पूर्वोत्तरस्य च समानहितानि सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः श्वः नवदिल्ल्यां भूपत्तन प्रबन्धन व्यवस्थायाः उद्घाटनं करिष्यति। गृहमन्त्रालयेन उक्तं यत् LPMS इत्यस्य आरम्भः भारतस्य आधुनिकतन्त्रज्ञानसक्षमसीमाप्रबन्धनव्यवस्थायाः कृते महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। भारतीयमल्लक्रीडकाः ह्यः मंगोलियायाम् ओपन् क्रीडायां भारतस्य कृते 2 स्वर्णपदके 2 कांस्यपदके च विजितवन्तः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY को लागू करने वाला 36वां राज्य बनने जा रहा है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ABPMJAY योजना लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेगी। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत

0: कैलाश नड्डा और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन के जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य उपस्थित होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी के अनुसार पुनर्परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित होगी। NTA ने कहा कि परीक्षा शहरों की जानकारी प्रवेश पत्र नहीं है, इसे केवल अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्र वाले शहर की जानकारी देने के लिए जारी किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉक्टर एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने घोषणा की कि कर्नाटक विधानसभा परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य उम्मीदवार होंगे। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर शामिल हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल चुका है। संघर्ष से होर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर जुरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलेंड गोरेस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला, नमस्कार मिथिला सुनयवला सेहो श्रोता लोकन के विजय कुमार सिन्हा के नमस्कार, संगे कयाम नैयर जी अहूँ के नमस्कार।
1: जी हाँ बिल्कुल, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में आपको पहली बार श्रोताओं के सामने प्रस्तुत कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: कयाम नैयर जी, आई हमारा लोकन के एक कार्यक्रम में सबसे पहले हमारे लोग सुबह

0: चार सौ नहीं तो आजुक सुविचार की अच्छ।
1: मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा।
0: बहुत नीक आप कह लिया ना।
1: और कार्यक्रम में आगे बढ़ाते हुए सुविचार के बाद हम श्रोताओं के रेडियो पर भेजते हैं, उनके जानकारियों को थोड़ा सा अपडेट करने की कोशिश करते हैं। इतिहास में क्या कुछ खास है आज के दिन? आज ही के दिन 1936 में इंडियन स्टेट ब्रांड का सिस्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो AIR कर दिया गया था। आज ही के दिन 1948 में एयर इंडिया ने भारत और ब्रिटेन के बीच अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू की। मालाबार प्रिंसेस नाम का विमान मुंबई में लंदन के लिए रवाना हुआ था, मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुआ था। भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति ने पेरिस में प्रेमचंद ओपन टेनिस का मिश्रित युगल खिताब जीतकर इतिहास रच दिया था। आज ही के दिन विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस, इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना यह दिवस प्रतिवर्ष 8 जून को आयोजित किया जाता है। और साथ ही साथ आज के दिन हम विश्व महासागर दिवस भी मना रहे हैं।
0: हाँ तो कहियाम जी, एक बाद हमारा लोकन
1: कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ों को हम समेट कर लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं कि श्रोताओं को ये कार्यक्रम बिल्कुल अच्छा लगे। और कार्यक्रम में मैथिली सुगम संगीत और साथ ही साथ कुछ ऐसे चर्चा लेकर आते हैं जो श्रोताओं के लिए हो, उनकी जानकारियों को थोड़ा सा अपडेट कराने के लिए हम कोशिश करते हैं। और इस ये कार्यक्रम बिल्कुल उन्हें अच्छा लगे, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हम समेट कर लेकर आते हैं। विजय जी, आज कार्यक्रम में हम लोग चर्चा ज़रूर करेंगे कि जो पानी है, जल है, हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि पानी की महत्वता क्या है, पानी होता क्या है, पानी के बारे में हम जितना बात कर लें उतना कम है। पानी हमारे लिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। पानी की महत्वता हर वो इंसान से लेकर पशु पक्षी हर किसी को पता है, इस ख़ास तौर पे इस गर्मी में, कि पानी की अहमियत क्या है, पानी हमारे लिए कितना है। नहाने खाने धोने से लेकर सारी चीज़ों की जितनी भी हमारी ज़रूरत है वो पानी से ही है।
0: देखो कयाम जी, बड़ नीक गप कहलो। देखो कयाम जी, जे हमर सबक जीवन में पानिक बड़ बेसी महत्व है। आ कहलो गेल अछि कि जले जीवन अछि, आ ई पृथ्वी पर जीवनक सबसे महत्वपूर्ण आ आधारभूत स्रोत अछि। एकर तऽ मानव शरीरक लगभग 60-70% हिस्सा जल सँ बनल अछि।
1: जी बिल्कुल, और इस पानी पर हम लोग चर्चा करेंगे, जितना चर्चा करें उतना कम है। लेकिन देर न करते हुए श्रोताओं के रेडियो पर भेजते हैं सबसे पहले एक मैथिली सुगम संगीत।
0: सुनल जाए मैथिली सुगम संगीत।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: छोटे से अंतराल के बाद फिर से हाजिर है नमस्कार मिथिला में। नमस्कार मिथिला में बहुत सारी चीज़ों को हम समेट कर लेकर आते हैं, हमने पहले भी कहा आपको, और समय के साथ चलते रहना चाहिए। और समय के साथ किसी भी काम को अगर हम करते हैं तो हमारे पास बचा हुआ समय आगे किसी दूसरे काम में हम उसे बचा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम आकाशवाणी दरभंगा से बहुत सारी चीज़ों को समय के साथ ही आप तक लेकर आने की कोशिश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। और अब वक्त हो चुका है हालचाल का, हालचाल प्रस्तुत करेंगे विजय कुमार सिन्हा।
4: नमस्कार, ई आकाशवाणी दरभंगा केंद्र थिक, आप विजय कुमार सिन्हा सा हालचाल सुनल जाए। पुरातत्व संग्रहालय समितिक बैसार में सांस्कृतिक विरासत पर भेल ठोस विमर्श। मधुबनी जिला में पुरातत्व संग्रहालय गतिविधिक संबंध में गठित समिति केर बैसार जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी की अध्यक्षता में मिथिला ललित संग्रहालय में आयोजित भेल। बैसारक संबंध में विस्तृत जानकारी दैत जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी कहलनि जे जिलाधिकारी के नेतृत्व में मधुबनी जिलाक गाम गाम में पसरल सांस्कृतिक विरासत के आगू आबि रहल पीढ़ी धर पहुँचेबाक उद्देश्य से मिथिला ललित संग्रहालय के तत्वावधान में एकटा व्यापक अभियान चलाओल जाएत। दरभंगा बैडमिंटन अकादमिक दिस से खेलक विकास तथा खिलाड़ी सबके प्रोत्साहित करबाक उद्देश्य से 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर आयोजित कयल जा रहा है। अहि आशयक निर्णय अकादमिक कार्य समिति बैसार में लेल गेल। अकादमिक सचिव विकास कुमार शर्मा जानकारी दैत कहलनि जे ई प्रशिक्षण शिविर 9 जून से 23 जून 2026 धरि आयोजित होयत। शिविर में 6 से 14 वर्षक आयु वर्गक बालक आ बालिका सब भाग लऽ सकता। प्रतिभागी सबके आयुक्त आधार पर 2 समूह में विभाजित कयल जायत। पहिल समूह 6 से 9 बरख तथा दोसर समूह 10 से 14 बरख आयु वर्गक रहत, जाहि में हुनका सबके पृथक पृथक प्रशिक्षण प्रदान कयल जायत। अकादमिक अध्यक्ष सिद्धार्थ कुमार जिलाक इच्छुक बालक बालिका अभिभावक सबसे ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर में सहभागिता करबाक अपील कयलनि। ओ कहलनि जे एहन प्रशिक्षण शिविर में सबसे बालक सभक खेल प्रतिभाक विकास होयत तथा समर कैंप में नामांकन व अन्य जानकारी लेल इच्छुक अभिभावक दरभंगा लॉन टेनिस आ बैडमिंटन स्टेडियमक इंडोर हॉल में संपर्क कऽ सकै छथि। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 लेल नामांकन प्रक्रियाक औपचारिक शुभारंभ समर्थ पोर्टलक माध्यम सँ कयल गेल। विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे समर्थ पोर्टलक एकेडमिक मॉडल पर क्लिक कऽ प्रवेश प्रक्रियाक आधिकारिक शुभारंभ कयलनि। महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल मिशन शक्ति योजना सभक DM कैलन समीक्षा। सहरसाक जिलाधिकारी दीपेश कुमारक अध्यक्षता में हुनकर कार्यालय बेसम में महिला एवं बाल विकास निगमक अंतर्गत संचालित मिशन शक्ति योजना सभक समीक्षात्मक बैसार आयोजित कयल गेल। बैसार में उप विकास आयुक्त, उप निदेशक जनसंपर्क, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ICDS, जिला परियोजना प्रबंधक महिला एवं बाल विकास निगम, जिला मिशन समन्वयक, जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विमेनक प्रतिनिधि सहित जिलाक सब बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आ संबंधित पदाधिकारी उपस्थित छलाह। बैसारक दौरान जिला परियोजना प्रबंधक मिशन शक्ति अंतर्गत संचालित विभिन्न योजना

0: सब आ कार्यक्रम सबक वर्तमान स्थिति उपलब्धि आ प्रगतिक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत कयलनि। जिलाधिकारी सब संबंधित पदाधिकारी सबके मिशन शक्ति अंतर्गत संचालित योजना सबक प्रभावकारी क्रियान्वयन नियमित अनुश्रवण आ समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करबाक निर्देश दैत महिला सब आ बालक सबक सशक्तिकरण लेल समन्वित प्रयास करबाक आवश्यकता पर विशेष जोर देलनि। कुशेश्वर स्थान प्रखंड क्षेत्र के हिरणी गाम में रवि दिन प्रथम हॉस्पिटल सुपौल बाजार के तत्वावधान में पंचायत समिति सदस्य श्वेता झा के आवासीय परिसर में निःशुल्क चिकित्सा शिविरक आयोजन कयल गेल। शिविरक नेतृत्व अस्पताल के निदेशक राजेश कुमार झा कयलनि। शिविर में बेसी से बेसी लोक के स्वास्थ्य परीक्षण कऽ हुनका आवश्यक दवा निःशुल्क उपलब्ध कराओल गेल। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA रवि दिन नीट UG 2026 के फेर से होमय वाला परीक्षा के लिए अभ्यर्थी लोकन के शहरक आवंटन कऽ देलक। अभ्यर्थी लोकन अपन आवेदन संख्या आ पासवर्ड के संग लॉग इन कऽ कऽ एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कऽ सकै छथि। हायाघाट प्रखंड मुख्यालय में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत विभिन्न स्थान पर पौधारोपण कयल गेल। प्रखंड मुख्यालय पर BDO निवेदिता CEO शशि कुमार भास्कर, राजस्व अधिकारी महेश्वर राम, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी प्रभात कुमार, प्रमुख प्रतिनिधि विकास कुमार सिंह आदि पौधारोपण करैत कहलनि जे धरतीक श्रृंगार हरियाली अछि, अंधाधुंध गाछ के कटाई से पर्यावरण असंतुलित भऽ गेल अछि, एना में पौधारोपण आ पौधाक सुरक्षा संकल्प लेनाय आवश्यक अछि। ओ कहलनि जे वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के प्रति जागरूकता लेनाय आवश्यक अछि। हाल चाल अपने लोकन आकाशवाणी दरभंगा केंद्र से सुन रहल छी।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: दरभंगा शहर के यातायात व्यवस्था के सुव्यवस्थित करवा आ प्राय नृत्य लगे वाला भीषण सड़क जाम से आम जनता के निजात दियाबे लेल प्रशासनिक कवायद तेज कऽ देल गेल अछि। नगर आवास एवं विकास विभाग की योजना के तहत शहर के 10 प्रमुख चौक चौराहा पर जल्दीए अत्याधुनिक ट्रैफिक सिग्नल लगाओल जायत। एहि पहल से नहि केवल यातायात सुगम होयत बल्कि शहर के सूरत सेहो स्मार्ट आ सुरक्षित नजर आओत। प्रशासन द्वारा चिन्हित कयल गेल स्थल में शहर के सबसे व्यस्त इलाका शामिल अछि। ओहि में दोनार, मिर्जापुर, लोहिया चौक, इनकम टैक्स चौराहा आ दिल्ली मोड़ प्रमुख अछि। एहि चौराहा पर वर्तमान में यातायात के भारी दबाव रहैत अछि जाहि से अक्सर जामक स्थिति बनल रहैत अछि। ट्रैफिक सिग्नल लगेला के बाद वाहन परिचालन नियमबद्ध होयत, आम लोक सबके समय बचत सेहो होयत आ दुर्घटना में सेहो कमी आयत। सिग्नल प्रणाली लागू भेला से यातायात प्रबंधन में बेसी मदद मिलतनि। दरभंगा जिला क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में जननायक कर्पूरी ठाकुर बाबा नागार्जुन स्टेडियम बेनीपुर में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबला में ईगल क्रिकेट क्लब दरभंगा बेनीपुर क्रिकेट क्लब के 30 रन से पराजित कऽ खिताब अपन नाम कऽ लेलक। फाइनल मैच में पहल बल्लेबाजी करैत ईगल क्रिकेट क्लब निर्धारित 10 ओवर में 142 रन बनौलक। लक्ष्य के पीछा करैत उत्तरी बेनीपुर क्रिकेट क्लब टीम निर्धारित 10 ओवर में 112 रन बना सकल और मैच 30 रन से हारि गेल। मैचक उपरांत आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में स्थानीय विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी विजेता उपविजेता टीम के कप और शील्ड प्रदान कऽ कऽ सम्मानित कयलनि। खिलाड़ीक उत्साह वर्धन करैत ओ कहलनि जे खेल में विजेताक अपन महत्व होइत अछि मुदा उपविजेताक भूमिका सेहो कम महत्वपूर्ण नहि होइत अछि। मौसम, आजुक मौसम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा आ मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमानक अनुसार उत्तर बिहारक क्षेत्र में अगला किछु दिन धरि गर्म आ शुष्क मौसम रहबाक संभावना अछि। एहि दौरान अधिकतम तापमान 42 डिग्री सी से 45 डिग्री सी के बीच रहबाक संभावना अछि और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सी के आसपास रहबाक अनुमान अछि। 9 जून के किछु स्थान पर गरज चमक तेज हवा तथा हल्लुक वर्षा संभावना अछि। विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक अनुसार एहि प्रचंड गर्मी के बाद समस्तीपुर आ आसपास के जिला में मानसून के 15 से 20 जून के बीच पहुँचबाक प्रबल संभावना अछि। बादल के स्थिति के ध्यान में रखैत किसान भाई लोकनि किसानक काज करैत मौसम विभाग लोक सब के सतर्क रहबाक और आवश्यक सावधानी बरतबाक लेल अपील केने अछि।

0: एहि संग हालचाल संपन्न भेल। नमस्कार।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: इस छोटे से अंतराल के बाद हालचाल के बाद अब श्रोताओं को अवगत करा दें लोकल अपडेट से। नगर में सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट व मृत पशु आदि से संबंधित शिकायत को लेकर निगम के नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर हैं 6202-7740 पर आप शिकायत कर सकते हैं। शहर में बिजली की समस्या होने पर फ्यूज कॉल सेंटर के मोबाइल नंबर हैं 7763-818-77 पर आप संपर्क कर सकते हैं। दरभंगा से ट्रेनों की बात करें तो सुबह 6:30 पर पटना के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस, सुबह 8:15 पर नई दिल्ली के लिए बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट, दोपहर 12:30 पर पटना के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस, शाम 7 बजे

0: फ्यूज़ कॉल सेंटर के मोबाइल नंबर हैं 7763-818-77 पर आप संपर्क कर सकते हैं। दरभंगा से ट्रेनों की बात करें तो सुबह 6:30 पर पटना के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस, सुबह 8:15 पर नई दिल्ली के लिए बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट, दोपहर 12:30 पर पटना के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस, शाम 7:00 नई दिल्ली के लिए स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट। विमानों की बात करें तो दरभंगा से सुबह 9:30 पर मुंबई के लिए, सुबह 11:30 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए, दोपहर 12:25 पर दरभंगा से कोलकाता के लिए, दोपहर 12:50 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए, दोपहर 1:35 पर दरभंगा से मुंबई के लिए। ये विमान रविवार, सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को है। दोपहर 3:00 दरभंगा से हैदराबाद के लिए और शाम 4:35 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए। इस कार्यक्रम में हम बहुत सारी चीज़ें समेट कर लेकर आते हैं और बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। और आज हमने पहले भी कहा था आज के इतिहास में कि आज हम विश्व महासागर दिवस मनाते हैं। विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे हर साल 8 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को महासागरों के महत्व, समुद्री जीव के संरक्षण और महासागरों पर मानवीय गतिविधियों को के प्रभाव के बारे में जागरूक करना है।
1: कयाम जी देखियो जे ये अपने कहले विश्व महासागर दिवस ये हर साल 8 जून के मनायल जाय वाला एकटा वैश्विक कार्यक्रम है जे जीवन के बनायल रखबा में महासागरक महत्वपूर्ण भूमिका के जश्न मनबैत है। हमर सबक ई महासागर के उत्सव दिवस के रूप में सेहो मान्यता देल गेल अछि।
0: जी हाँ बिल्कुल, कहा जाता है महासागर पृथ्वी के फेफड़े हैं जो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है और हमारे पर्यावरण को संतुलित करते हैं। समुद्रीय प्रदूषण जैसे प्लास्टिक, कचरा, जलवायु परिवर्तन और समुद्रीय संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग को रोकना। इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव पहली बार 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो ने आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में कनाडा के प्रतिनिधियों द्वारा रखा गया था। 2008 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी। इसका उद्देश्य स्थान विकास और महासागरों के संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर लोगों को जागरूक करना है। और कार्यक्रम में हम श्रोताओं को भी थोड़ा उनकी भी उम्मीद जगी रहती है कि अब उनको पता है कि हाँ कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है जैसे जैसे। और किसी भी कार्यक्रम में किसी भी चीज़ में अगर गीत संगीत ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो देर न करते हुए श्रोताओं के रेडियो पर भेजते हैं एक प्यारा सा गाना,
1: सुनल जाए।

उम्मीद करते हैं आज पहली बार दिल की बात की है और हमारे विजय सिन्हा जी भी स्टूडियो में नमस्कार मिथिला में पहली बार श्रोताओं के सामने रूबरू हैं। उम्मीद करते हैं ये कार्यक्रम बिल्कुल श्रोताओं को अच्छा लगे। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने पहले चर्चा की थी कि पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है।

0: पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके लिए जीवन को गुजारना नामुमकिन सा है पानी के बिना। इतनी अमृत भरी चीज़ों को हम यूं ही ऐसे बर्बाद कर दें, ये सोच विचार की बात है। इसकी संरक्षण बिल्कुल ज़रूरी है, सर्वोच्च तम प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम इसको बचाएं। फसलों की सिंचाई उत्पादन के लिए जल प्राथमिकता है, उसकी आवश्यकता होती है। इसके बिना योजना की आपूर्ति का की कल्पना नहीं की जा सकती है। जल हमारे शरीर के में अमृत की तरह है, ये पाचन क्रिया को सही रखता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, पौधे और फसलों को उगाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। सिंचाई के बिना कृषि संभव नहीं है। पीने के अलावा जल का उपयोग खाना पकाने, कपड़ा धोने और घर की साफ सफाई जैसी दैनिक कार्यों में होते हैं।
1: निगम कयाम जी, देखो कयाम जी, जो पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल के केवल 3% हिस्सा मीठ पानी पिए योग्य अछि, जाहि में से अधिकांश ग्लेशियर के रूप में जमा अछि। एहि लेल जल के दुरुपयोग रोकनाय आ जल संरक्षण जेना वर्षा जल संचयन हमर सभक सबसे पैघ जिम्मेदारी अछि। एकरा भेल अहाँके विद्युत उत्पादन, जल विद्युत परियोजना के जरिए बिजली उत्पन्न करबा वाला जलक उपयोग कयल जाइत अछि। कृषि आ भोजन, फसलक सिंचाई के लेल पानि सबसे आवश्यक स्रोत अछि। जलक बिना अन्नक उत्पादन संभव नहि होइत अछि, जाहि से भोजनक आपूर्ति सुनिश्चित होइत अछि। तहिना भेल पर्यावरण संतुलन, जल चक्र मौसम के नियंत्रित करैत अछि। त कयाम जी, जलक संरक्षण लेल हमरा लोकन के पानिक बर्बादी के रोकबाक चाही, बरखा जल संचयन के अपनेबाक चाही, जल के दूषित होबा से बचेबाक चाही। आ जले जीवन अछि, तैं एकर समझदारी से उपयोग केनाई आर आबे वाला पीढ़ी के लेल बचनाई हमर सबक लेल नैतिक कर्तव्य अछि।
0: जी बिल्कुल श्रोताओं, जिस जल का हमारे जीवन में इतना खतरन इतना महत्वपूर्ण और इतना योगदान है, इतनी ज़बरदस्त उसकी उपलब्धियां है, उसके लिए यूं ही हम इसे बर्बाद नहीं कर सकते हैं। जल की हर एक बूंद हमारे जीवन के लिए अनमोल है, इस पे सोच विचार करने की ज़रूरत है। आज भी समाज में देखने को मिलता है, ख़ासतौर पर गर्मी के मौसम में आप देख लें कि पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कि हर आदमी परेशान है। ट्यूबवेल के सूख जाने का चापाकल, जितना भी खासतौर पर ग्रामीण इलाका है, वहाँ हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ट्यूबवेल चापाकल जो हमारा है वो सूख जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अभी भी हम अपने आप को समझें। छोटी छोटी चीज़ें हम अपने जीवन में बदलाव लाकर इसे दूर कर सकते हैं। ये नहीं है कि किसी भी बदलाव को लाने के लिए किसी बड़े मुहिम, किसी बड़े आंदोलन की आवश्यकता है, नहीं। सबसे पहले आप किसी भी चीज़ को अपने अंदर, अपने मन के अंदर वो आंदोलन लाएं। वो मन के अंदर जब तक किसी चीज़ को आप सोचेंगे विचारेंगे नहीं, तब तक वो चीज़, वो आंदोलन आप समाज में नहीं कर सकते हैं। खुद में बदलाव लाना ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि आप किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो उसमें जल भी आता है। आप आपका जो घर का नल है, कहीं से रिसाव हो रहा है, पानी थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, हम आप सोचते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक एक बूंद तो गिर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। लेकिन नहीं, फ़र्क पड़ता है। आप वहाँ पर एक कुछ भी थोड़ा सा लगा कर देख लीजिए, जो बाल्टी लगा लें, छोटा सा टब लगा लें, कुछ भी ऐसा लगा लें, सुबह में या दो दिन के बाद आप देखें वो भर जाएगा या आधा हो जाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि हमने कितना, एक एक बूंद जो पानी है, कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वो जाहिर है वो भर जाएगा। आप देख लें तो आपको समझ में आएगा कि ये पानी बर्बाद ही हो गया। उसी तरह जब हम नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, जहाँ पर ज़रूरत है एक टब की, एक बाल्टी की पानी की, वहाँ हम दो तीन बाल्टी पानी बर्बाद कर देते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और आजकल तो बिजली की बचत भी ज़रूरी है। आप हर जगह, आप जो मीटर है वो मीटर स्मार्ट मीटर है, वहाँ आप ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे, मोटर चलाएंगे तो बिल आपके ज़्यादा आएंगे। तो बचत भी ज़रूरी है हर वो चीज़ के लिए, चाहे वो प्राकृतिक संसाधनों का बचत हो या खुद का बचत हो या आपके, आपका जो इनकम है उसकी बचत है, वो बचत करना आपके भविष्य में फ़ायदा करता है। उसी तरह जल की बचत भी ज़रूरी है कि हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए जल, जो अभी विजय सिन्हा जी ने कहा कि 3% जल है, उसमें से भी 1% पीने योग्य पानी है, तो आप इस 1% को कैसे बचाएंगे ताकि आने वाली जनरेशन है, आने वाला जो हमारा भविष्य है, वो उस पानी का सही प्रयोग कर सके। वर्तमान से लेकर भविष्य तक की चिंता हमें होनी चाहिए, और छोटी छोटी मुहिम के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो ही जीवन में सफल हो पाते हैं।
1: निगप कयाम जी, देखो कयाम जी, शरीर के ऊर्जावान रखना है और निर्जलीकरण से बचवाक लेल पानी बड़ जरूरी है। तहिना पोषक तत्वक परिवहन, ई भोजन सँ विटामिन आ खनिज के घोरि कऽ शरीर के कोशिका धरि पहुँचब।

0: होइत अछि पानि। एकर तापमान नियंत्रण जे होइत छै पसीना बहाकऽ शरीर के तापमान के संतुलित रखैत अछि। दैनिक जीवन आ स्वच्छता, तऽ घरेलू उपयोग मे खाना पकेनाइ, नहनाइ, कपड़ा धोनाइ आ साफ सफाइ के लेल पानि बड़ आवश्यक अछि।
1: जी हाँ बिल्कुल, और कुछ लोगों को हमने देखा भी है, ये प्रैक्टिकली चीज़ें हैं विजय जी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको पानी पीना है एक गिलास आधा गिलास, तो वो एक गिलास पानी भर लेते हैं और थोड़ा सा दो घूंट ही पिया, उसके बाद पानी को फेंक देते हैं। ऐसा जनरली लोग करते हैं। आप जितना आपको ज़रूरत है, जितनी चीज़ों की आपको आवश्यकता है उतनी ही चीज़ आप प्रयोग में लाएँ, चाहे वो पानी, जिस पानी की हम वैल्यू अहमियत नहीं देते हैं, वो पानी हमारे लिए खाना से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खाना ना खाकर हम दो दिन ज़िंदा रह सकते ज़रूर हैं, लेकिन पानी के बिना दो दिन ज़िंदा रहना थोड़ा मुश्किल है। तो जितनी पानी की ज़रूरत हमें है, हमारी ज़रूरतों के हिसाब से ही उस पानी का प्रयोग करें, चाहे वो पीने के लिए हो, नहाने के लिए हो, कपड़ा धोने के लिए हो। जल संरक्षण के बारे में बातें हैं, अभी बरसात का टाइम है, कई जगहों पर ऐसा किया जाता है कि जो वर्षा का पानी है उसे कोई बड़ा सा ड्रम हो या किसी चीज़ में लोग जमा कर लेते हैं और उसको वापस मवेशियों को धोने में, गाड़ियों को धोने में, कपड़ा धोने में, इन सब चीज़ों में वो इस्तेमाल करते हैं, और करना भी चाहिए। कुछ लोग आज भी ऐसा करते हैं, और अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं तो बहुत सारी चीज़ में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीज़ों के लिए समाज का उस पर उन पर असर जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि वो सकारात्मक सोच ही होनी चाहिए, लोगों को उनके प्रति सकारात्मक सोच ही होनी चाहिए कि वो जल के संरक्षण को कर रहे हैं ताकि पर्यावरण संतुलित रह सके, हमारा भविष्य वर्तमान से लेकर भविष्य अच्छा हो सके। तो हर आदमी अगर ये चीज़ करता है, हर मोहल्ले में ये चीज़ करता है, तो आप यकीन मानिए हमारा समाज ज़रूर बदलेगा। जल संरक्षण में हम बिल्कुल आगे रहेंगे और जो जल का संकट है भविष्य में इस बात के लिए बिल्कुल नहीं होगा, और हम खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, कार्यक्रम को आगे करते हुए हम भी कोशिश करते हैं कि हम श्रोताओं को यूं ही खुश रख सकें। स्टूडियो के में बैठे हुए हम सब कोशिश करेंगे कि हमारे जो श्रोता हैं वो सामने बैठकर ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब जो अगला गाना है उनके मन का हो, उनके मन के हिसाब से हो। तो देर न करते हुए श्रोताओं के रेडियो पर भेजते हैं एक प्यारा सा गाना।

0: भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए। उम्मीद करते हैं श्रोताओं को ये गाना बिल्कुल पसंद आया होगा और कार्यक्रम को हम यूं ही आगे बढ़ाते हुए बचे हुए समय में हम कोशिश करते हैं कि श्रोताओं के साथ यूं ही बने रहें, श्रोताओं की को यूं ही इंटरटेन करते रहें, उनकी जानकारियों को थोड़ा सा बढ़ाते रहें। और हम लोग बातचीत कर रहे थे कि जल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्व रखता है जल, और जल के बिना ज़िंदगी गुजारना बिल्कुल नामुमकिन सा है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब एक नज़र डालते हैं समसामयिक घटना पर। एक नज़र, भारत इंडोनेशिया ने रक्षा व्यापार और ऊर्जा के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर की चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन पर कड़ी निगरानी का आगाह किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल को सैफीन चैंपियनशिप 2026 जीतने पर दी बधाई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ईरान के साथ शांति समझौता होने से पहले ईरान की संपत्तियों को फ्रीज ही रखेंगे और प्रतिबंध भी नहीं हटाएंगे। भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान ने 5 विकेट के नुकसान पर 113 रन बना लिए थे। अभी भी वो भारत के 564 रनों के मुकाबले 451 रन पीछे है। कार्यक्रम को हम यूं ही आगे बढ़ाते हुए घड़ी की सुई इशारा भी करिए कि हाँ वक्त हो चुका है इजाज़त लेने का, लेकिन अभी बचे हुए समय में विजय जी क्यों ना श्रोताओं के रेडियो पर भेजा जाए एक और प्यारा सा गाना
1: सुना जाएगा ना।

0: बिल्कुल उम्मीद करते हैं श्रोताओं को ये कार्यक्रम बिल्कुल पसंद आया होगा और रेडियो को आप बिल्कुल अपने पास अपने दिल के पास रख सकते हैं। रेडियो को साथ लेकर जाने की अब ज़रूरत नहीं, हर आदमी के पॉकेट में रेडियो है। उस जो मोबाइल आपके पास है, जो एंड्रॉयड सेट आपके पास है, वो जिस पे प्ले स्टोर में जाकर न्यूज़ ऑन AIR डाउनलोड करें और आकाशवाणी दरभंगा के सारे कार्यक्रमों को आप अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। जो कार्यक्रम आपका फेवरेट है, मन पसंदीदा है, उसे आप अपना फेवरेट बनाकर जब चाहें, जहां चाहें, जिस वक्त चाहें, आकाशवाणी के दरभंगा के समय अनुसार आप उसे सुन सकते हैं। इस वादे के साथ कि अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत कयाम नैयर और
1: विजय कुमार सिन्हा के।
0: नमस्कार
1: मिथिला।

0: भोर होते उठ जाओ किएक तऽ इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराय लगैत अछि, ऊर्जा आबा वाला काल्हि लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप सँ सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
2: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नै हैत तो खेती नै हैत, आ खेती जँ नै हैत उपजा नै हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

0: शक्ति गाम घर संध्या 6:30 पर।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय,
2: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
0: घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आबि रहल छी एक ही क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
3: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
4: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
5: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथी सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
4: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
3: आकाशवाणी दरभंगा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात। हमारे
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
4: पश्चिम बंगाल है आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज के इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद

0: राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काशफी नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
1: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
3: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
4: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसुलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियानो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
6: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अवशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
5: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का

0: 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
1: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
0: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 2 दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल सम्पन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
3: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने 2 मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
2: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब

0: अब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोक सत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: pragmatic reset in ties with India during foreign minister's visit, backing bilateral route on border issue. Ministry of Home Affairs approves deployment of 670 companies of CAPFs, marking one of the largest ever multi-layered security arrangements for Amarnath Yatra, reports the Asian Age. An editorial in Hindustan Times states how SAARC offers India what other forums cannot. It empowers Delhi amidst global turmoil with no guarantee needed from any external actor in setting the terms of the organization. In an extraordinary arrangement, need paper setters to be in lockdown till re-exam, no phone, net, team housed at secret location, says the Times of India. The Economic Times states, lay old town to get heritage makeover to enhance infrastructure and improved public amenities. The Indian Express quoting the government says, despite second price revision of LPG gas cylinder since crisis in West Asia, oil marketing companies are still losing 700 rupees. And finally, in a historic first for Punjab, celebrated music composer and singer A.R. Rahman delivered a live performance at the Attari border on Sunday, paying tribute to the border security force through a stirring rendition of his patriotic song, Jai Ho, notes the Tribune. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. West Bengal set to become 36th state or union territory to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. National Testing Agency releases exam city intimation slip for NEET UG 2026 re-examination scheduled to be held on the 21st of June. Lok Sabha Speaker Om Birla to inaugurate Commonwealth Parliamentary Association India Region Zone 2 conference in Chandigarh today. New Delhi says Indonesia is a key pillar of India's Act East policy. Iran fires waves of missiles at Israel for first time since April ceasefire. And in tennis, Germany's Alexander Zverev secures his maiden Grand Slam title. And with that, we end the morning news. Have
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मगरबी बंगाल उन 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में शामिल हो जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करेगा। इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान के शहर से मुतालिक स्लिप जारी कर दी है। ये इम्तिहान इस माह की 21 तारीख को कराया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लिमानी एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन जोन 2M कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। भारत ने कहा है कि इंडोनेशिया भारत की मशीक नवाज पॉलिसी का एक अहम सुतून है। ईरान ने अप्रैल जंगबंदी के बाद से पहली मर्तबा इसराइल पर मिजाइलों से हमले किए हैं। और टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर जेरव ने इटली के फेलियो कोबली को 5 सेट में हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल उन 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में शामिल हो जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY नाफिज करेगा, जो दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी फंड से चलने वाली सेहत इंश्योरेंस स्कीम है। सेहत के कौमी अथॉरिटी और मगरबी बंगाल हुकूमत रियासत में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के निफाज के लिए आज एक मफाहमत नामे पर दस्तखत करेगी। इस मफाहमत नामे पर दस्तखत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकजी वजीर JP नड्डा और मगरबी बंगाल के वजीर आला सुविंदु अधिकारी की मौजूदगी में किए जाएंगे। इस पेशरफ्त को मुल्क भर में मुल्क के सभी शहरियों के लिए मुसावी और हिफ्जान सेहत की रसाई के सफर में एक बड़ा संग मील बताया जा रहा है। मगरबी बंगाल में ABPMJAY के नफाज से इस बात की उम्मीद है कि रियासत में लाखों अहल मुस्तफीदीन को भारी भरकम सेहत अखराजात से माली तहफ़ फराहम होगा, जबकि मुल्क भर में हिफ्जान सेहत के फवायद के इम्कान में बिला रुकावट मदद मिलेगी। इससे मेयारी और सस्ती हिफ्जान सेहत खिदमात तक रसाई में इजाफा होगा और रियासत का हिफ्जान सेहत का निज़ाम भी मजबूत होगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना JAY PM اہل مستفیدی

0: को सानवी और आला दर्जे के अस्पताल में दाखिल होकर इलाज के लिए फी खानदान हर साल 5 लाख रुपए तक सेहत बीमा फराहम करती है। इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान के शहर से मुतालिक स्लिप जारी की है। ये इम्तिहान इस माह की 21 तारीख को मुनाकिद कराया जाएगा। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि रजिस्टर्ड उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना दरख्वास्त नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करके अपने इम्तिहान के शहर के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: एनटीए की तरफ से जारी किए गए नोटिस के मुताबिक ये इम्तिहान भारत के 551 शहरों में और मुल्क से बाहर 14 शहरों में दिन में 2 बजे से 5:15 बजे तक पेन एंड पेपर तरीके कार के तहत करवाया जाएगा। एनटीए ने वाजे किया है कि इम्तिहान के शहर के ताल्लुक से जारी की गई स्लिप एडमिट कार्ड नहीं है, बल्कि इसे उम्मीदवारों को उस शहर के बारे में मुतला करने के लिए जारी किया गया है जहां उनके इम्तिहान का सेंटर वाक़ है। एनटीए ने उम्मीदवारों से जोर देकर कहा है कि इम्तिहान और एडमिट कार्ड जारी किए जाने से मुतालिक ताज़ा ऐलान के बारे में मालूम उसकी बाकायदा वेबसाइट से हासिल कर रहे हैं। मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट यूजी इम्तिहान का इनेकाद 3 मई को कराया गया था, जिसे बाद में पेपर लीक होने के इल्जाम के सबब 12 मई को एनटीए की जानिब से मनसूख कर दिया गया। फिलहाल सीबीआई में इस मामले की जांच कर रही है और 21 जनवरी को ये इम्तिहान दोबारा मुनक़द कराया जाएगा। दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामानी एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन की 3 रोज़ा जोन 2M कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के फ़राइज़ हरियाणा कानून साज असेंबली की तरफ से अंजाम दिए जा रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी, हरियाणा असेंबली के स्पीकर हरविंद्र कल्याण, मुल्क भर के 15 लेजिस्लेचर के प्रिसाइडिंग और नायब प्रिसाइडिंग अफसरों के साथ साथ कानून साज असेंबलियों के मेंबरान शिरकत करेंगे। इफ्तिताही इजलास के दौरान हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंद्र कल्याण इस्तकबालिया खुतबा देंगे। इस मौके पर हरियाणा की तरक्की और तारीख को पेश करते हुए एक खसूसी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई जाएगी। इसके बाद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश और वजीर आला नायब सिंह सैनी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। इसके बाद टेगोर थिएटर में शाम को एक सकाफती प्रोग्राम मुनाकिद होगा, जिसमें आईन और भारत के मालामाल सकाफती विरासत को उजागर किया जाएगा। आकाशवाणी आज अपने क़याम के 90 साल पूरे होने की तकरीब मना रहा है। 8 जून 1936 को आज ही के दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रखा गया था। ये तारीखी दिन मुल्क की सकाफत, इत्तिलातों और नशरियाती तारीख में एक खसूसी लम्हा है, जहां आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो खिदमात को तेज़ी से उसत दी गई और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी 591 स्टेशन ऑपरेट कर रहा है, जो भारत की 98% आबादी तक पहुंच रहा है। आकाशवाणी 23 जुबानों में 146 इलाकाई जुबानों में मुख्तलिफ प्रोग्राम नशर कर रहा है। आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजनल 100 से ज़्यादा मुल्कों में अपनी नशरियाती खिदमात फराहम कर रहा है और आलमी सतह पर भारत की आवाज़ को पहुँचा रहा है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश क़यादत में गुज़श्ता 12 साल के दौरान सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर भारत में एक नुमाया तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी हुकूमत ने गरीब, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए अहम शोबों में गुज़श्ता 12 साल के दौरान हुकूमत की कोशिशों पर एक खसूसी फीचर लेकर आया है। आज हम माहौलियाती तहफ़ुज़ के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: गुज़श्ता 12 साल के दौरान भारत ने ठोस पॉलिसी इकदाम और मुस्तकिल नफाज के जरिए पायदार

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव और एक सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि आज। राजद ने सुनील कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की सूची जारी की। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज समेत उत्तर बिहार में कई स्थानों पर आज हो सकती है बारिश। दक्षिण बिहार में मौसम गर्म रहेगा। और पटना के दिलीप कुमार तथा सीवान की सोनी कुमारी ने गुजरात के अहमदाबाद में संपन्न प्रथम योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव और एक सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए आज नामांकन की अंतिम तिथि है। अब तक किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया है। सभी उम्मीदवार आज अपना नामांकन करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: विधान परिषद चुनाव के लिए एनडीए की ओर से 9 उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। वहीं महागठबंधन ने भी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। महागठबंधन की ओर से राजद के सुनील सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। भाजपा ने इस चुनाव के लिए भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और गायक पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित को उम्मीदवार बनाया है। वहीं जदयू ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद को उम्मीदवार घोषित किया है। इधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। सभी प्रत्याशी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। गौरतलब है कि विधान परिषद की 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव जबकि एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है। प्रत्याशी 11 जून तक नामांकन वापस ले सकते हैं। आवश्यकता होने पर इन सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन शाम को मतगणना होगी। समाचार कक्ष से मैं सविता पारीक।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता के अनुसार पंजीकृत उम्मीदवार अपने आवेदन संख्या और पासवर्ड का उपयोग करते हुए आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
2: एनटीए द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवासी श्रमिक कल्याण एवं कौशल विकास मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के काफिले पर मधुबनी जिले में असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। जिले के खजौली थाना क्षेत्र के ठाहर गांव में हुए इस हमले में श्री प्रसाद सुरक्षित बाहर निकल आ गए। घटना के बाद श्री प्रसाद ने कलवाही थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि घटना में शामिल सभी आरोपितों की पहचान कर शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।
3: कुछ असामाजिक तत्वों ने उनसे अनुचित डिमांड करने लग गए वो लोग, और जब मंत्रीगण के द्वारा उनको समझाया गया तो वो वहां से उनके जाने की, जब वो गाड़ी में बैठ के जाने लगे तो कुछ महिलाओं को उन्होंने आगे कर दिया और उसमें कुछ महिलाओं ने पत्थर चला दिया, जिससे कि माननीय मंत्री जी की जो गाड़ी थी उसके पीछे का शीशा फूट गया। सीसीटीवी फुटेज पुलिस को काफी सारा मिला है और जिस व्यक्ति ने कार्य किया है उसकी पुलिस ने पहचान कर ली है, और 2-4 महिलाएं ने आगे किया तो उसकी भी पहचान पुलिस ने कर ली है, और छापेमारी के लिए विशेष टीम गठित है और सब पे कार्रवाई करके FIR की जाएगी पुलिस के बयान पे।
0: इधर मंत्री श्री प्रसाद ने कहा कि यह घटना विपक्षी दल राजद के असामाजिक और उग्र कार्यकर्ताओं की सुनियोजित साजिश का परिणाम है। पटना के कच्ची दरगाह और वैशाली जिले के बिद्दुपुर को जोड़ने वाले 6 लेन पुल पर अगले माह से यातायात

शुरू कर दिया जाएगा। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 103 पर बन रहे इस पुल की कुल लंबाई लगभग 20 किलोमीटर है। इसमें 9.76 किलोमीटर पुल और 10 किलोमीटर पहुंच पथ का निर्माण किया गया है। सचिव ने बताया कि इस पूरी परियोजना पर 4988 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पुल के आधे हिस्से पर यातायात पहले से जारी है। राज्य से गुजरने वाली रेलगाड़ियों में लगे डिब्बों की अगले एक सप्ताह के अंदर जांच की जाएगी। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी स्पेशल ट्रेन के एक स्लीपर कोच में कपलिंग टूटने की घटना के बाद यह कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत मुख्यालय, वर्कशॉप तथा मंडल के अधिकारी अत्यधिक खराब डिब्बों वाली रेलगाड़ियों की जांच कर उन्हें हटाएंगे। साथ ही पीरियोडिक ओवरहॉलिंग करने वाले सभी वर्कशॉप का अगले एक माह में ऑडिट किया जाएगा। राज्य के 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले राशन कार्डधारी परिवारों को उनके घरों तक जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनाज पहुंचाएंगे। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अनुसार पटना जिले के मसौढ़ी और वैशाली जिले के हाजीपुर में इस पहल को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार राशन विक्रेताओं को प्रोत्साहन राशि देगी। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। यह ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचनात्मक और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण है। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आज आकाशवाणी 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्शों पर खरा उतरते हुए आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग देश के विभिन्न भूभागों में हर दिन सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों का प्रसारण करता है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: इधर आइए, इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
3: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण बिहार में अगले दो दिनों तक गर्म और उमस भरा दिन रहने की संभावना है। वहीं अगले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया और किशनगंज समेत उत्तर मध्य तथा उत्तर पूर्व बिहार के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
4: दिनांक 8 जून राज्य के उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले तीन दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।
3: मौसम विभाग के अनुसार 11 जून से प्री मानसून की गतिविधियों में तेजी आने के पूर्वानुमान है। इससे प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश होने से गर्मी से

0: राहत मिल सकती है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर जिले का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा है, जहां का अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित होकर देश में कई परिवर्तन हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आकाशवाणी समाचार की ओर से पिछले 12 वर्षों में सरकार के प्रयासों और पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों पर पेश है एक रिपोर्ट।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
2: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
1: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। जलवायु
0: पटना के दिलीप कुमार और सिवान की सोनी कुमारी ने गुजरात के अहमदाबाद में संपन्न प्रथम योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं मुजफ्फरपुर के सुधांशु शेखर ने रजत पदक प्राप्त किया। पटना में खेली जा रही बिहार राज्य सब जूनियर शतरंज प्रतियोगिता में पटना की ईशानी पाठक और मुजफ्फरपुर की नव्या गोयन का संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर बनी हुई हैं। 10वीं दक्षिण एशिया आत्यापात्या चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीते। प्रतियोगिता के बाद भारतीय टीम के सदस्य पटना के वैष्णवी और अरवल के दिवाकर कुमार का पटना पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन राव भागवत अपने 3 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। इस दौरान वे मुंगेर में आयोजित बिहार झारखंड के कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम में शामिल होंगे। इस कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम में बिहार और झारखंड के 127 शिक्षार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं। अररिया जिले में होटलों और अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा ऑडिट को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन की टीम ने होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, अस्पताल, निजी नर्सिंग होम और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन के लिए जांच की। किशनगंज जिले के बहादुरगंज थाना क्षेत्र में लोहागाड़ा इस्मत टोला में छापेमारी कर पुलिस ने एक युवक को भारी मात्रा में मादक पदार्थ स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। दानापुर रेलवे सुरक्षा बल ने पटना के मीठापुर रेल लाइन के किनारे अतिक्रमण करने के मामले में 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। पटना जिले के फुलवारी थाना क्षेत्र की पुलिस ने खगौल लक से 10,000 के जाली नोट के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की विशेष खबर है, यातायात पुलिस में 35 पार उम्र के सिपाही तैनात नहीं होंगे। दैनिक जागरण ने नीट पेपर लीक मामले पर शीर्षक दिया है, संसदीय समिति ने एनटीए से पूछा, उसकी परिभाषा में किसे माना जाए पेपर लीक। दैनिक भास्कर की खास खबर है, बिहार में नीली क्रांति का महाअभियान, बेकार पड़ी चौर की जमीन को तालाब बनाकर संवारेगी सरकार। प्रभात खबर लिखता है, स्कूलों और कॉलेजों में बिना हेलमेट वाले वाहनों की होगी नो एंट्री, जल्द ही शिक्षा विभाग जारी करेगा आदेश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि आज। राजद ने सुनील कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की सूची जारी की। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, सीतामढ़ी, मधुबनी।

अररिया, किशनगंज समेत उत्तर बिहार में कई स्थानों पर आज हो सकती है बारिश। दक्षिण बिहार में मौसम रहेगा गर्म। पटना के दिलीप कुमार तथा सीवान की सोनी कुमारी ने गुजरात के अहमदाबाद में संपन्न प्रथम योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहा
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: सब दिन भरतुहार आबै छल कहियो थमहु अगला साल। हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल मालू मा।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनी आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आब रहल छी। एक क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी। नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।
1: उर्दू कार्यक्रम अंजुमन।

समीन अयाज़ झांसवी का कलाम आपने जगजीत सिंह की आवाज़ में समाप्त किया। और कहते हैं कि ज़िंदगी के जो मसाइल हैं वो जब दरपेश आते हैं ज़िंदगी गुजारने के दरमियान, तो इंसान के ऊपर दो तरह की कैफियत जाहिर होती है, या तो वो बिखरता है या तो वो निखरता है। यकीनन बिखरने वालों की तादाद कसीर है और निखरने वालों की तादाद गरचे कम है, लेकिन उनकी जो ज़िंदगी के तजुर्बात हैं वो हमारे लिए मशाले राह हैं। इसी तौर पे हम अगर कहें कि रमज़ असीम आबादी, जो कि कोहना मशहूर शायर थे, वो अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को अपनी शायरी में ढालते रहे। रमज़ का असल नाम रज़ा अली ख़ान था और वो पटना सिटी

ये महल्ला सुना टोली में पैदा हुए। घर पर ही उनकी इब्तदाई तालीम हुई और बाज़ाब्ता तालीमी सिलसिला जारी रखने का मौका नहीं मिल सका, लेकिन फिर भी खुददाद सलाहियतों के बिना पर उन्होंने लोगों को अपनी जानिब खींचा। बहुत छोटी उम्र में ही माशी मसाइल में फंसे और ज़िंदगी की तलख राहों पे सफ़र को जारी रखा। रमज़ का जो शुमार है वो अजीमाबाद के अहम तरीन शायरों में होता है। रमज़ ने एक बहुत दबी कुचली और इस्तेहसाल ज़दा ज़िंदगी गुजारी। उन्होंने मज़दूरी की, रिक्शा चलाया और जीने के लिए वो हर तरह का काम किया। आखिर में एक छोटी सी मामूली नौकरी भी की और रमज़ की शायरी जीने के उन शक्लों में हासिल होने वाले तजुर्बात और एहसासात का एक तकलीफ़देह बयान भी है। उन्होंने अपनी गज़लों और नज़मों में समाज में हर तरफ़ फैले हुए इस्तेहसाल की

0: ये वो हर तरह का काम किया, आखिर में एक छोटी सी मामूली नौकरी भी की और रम्ज़ की शायरी जीने के उन शक्लों में हासिल होने वाले तजुर्बात एहसास का एक तकलीफ़देह बयान भी है। उन्होंने अपनी गज़लों और नज़मों में समाज में हर तरफ फैले हुए इस्तेहसाल की अलग अलग शक्लों को बेनकाब किया है, और यही वजह है कि वो अपने सुनने वालों की जानिब नए बाब के साथ हाजिर होते हैं। रम्ज़ की मज़दूर शायर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने दबे कुचले लोगों की आवाज़ को अपनी शायरी में जगह दी। रम्ज़ ने 1949 के आसपास में शायरी शुरू की थी, और उनका पहला मजमूआ नगमे संग 1988 में शाया हुआ, और दूसरा मजमूआ शाखे जैतून 1998 में। रम्ज़ की गज़लों के साथ ही उनकी नज़में भी बेपनाह अहमियत की हामिल हैं। रम्ज़ की वफ़ात 15 जनवरी 1997 में कसम पुरसे की हालत में हो गई। आइए सामीन, इस गुफ्तगू के बाद हम अपने अगले पेशकश की जानिब लीजिए मुतवज्जे हुए चाहते हैं आपकी समातों के हवाले। ये महफिल सुखन स्टूडियो मुशायरा लाइजा हो।
1: शायर नासिर काज़मी ने क्या खूब कहा है कि आरजू है कि तू यहाँ आए और फिर उम्र भर न जाए कहीं। सामईन, आज के महफिल सुखन में मैं मोहम्मद एजाज हुसैन आपका खैर मकदम करता हूँ। आज की इस महफिल में जो शोरका हजरात हाजिर हैं, आइए उनका तारुफ कराते चलें। आप हैं मोइनुद्दीन अंसारी अलमारूफ मोइन ग्रेडवी, और दूसरे शायर हैं मुनव्वर हुसैन रिजवी अलमारूफ मुनव्वर दानापुरी। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है। हसरत मोहानी के इस शेर के साथ कि आरजू तेरी बरकरार रहे, दिल का क्या है रहा रहा न रहा, इसी मिसरे के साथ मैं सबसे पहले दावत सुखन देना चाहता हूँ मुनव्वर हुसैन रिजवी अलमारूफ मुनव्वर दानापुरी साहब को कि वो अपने गज़लों से सामईन को महजूज़ कराएं।
2: मुनव्वर गज़ल का मतलब अर्ज़ है, शम्सो नजूम चाहे फलक पर कमर मिले, शम्सो नजूम चाहे फलक पर कमर मिले, शम्सो नजूम चाहे फलक पर कमर मिले, क्यों कर नज़र हटाऊं जो उनसे नज़र मिले। शम्सो नजूम चाहे फलक पर कमर मिले, क्यों कर नज़र हटाऊं जो उनसे नज़र मिले। और शेर देखेंगे कि हमको फलक के उनको ज़मीं के सफ़र मिले, हमको फलक के उनको ज़मीं के सफ़र मिले, ये बात अलग है हम ही उन्हें हम सफ़र मिले।
1: वाह
3: वाह, बहुत अच्छा।
2: और उनका नज़रिया कुछ रहा मेरा नज़रिया कुछ है, उनका नज़रिया कुछ रहा मेरा नज़रिया कुछ, क्यों कर किसी से फिर मेरी फ़िक्रो नज़र मिले। उनका नज़रिया कुछ रहा मेरा नज़रिया कुछ है, उनका नज़रिया कुछ रहा मेरा नज़रिया कुछ, क्यों कर किसी से फिर मेरी फ़िक्रो नज़र मिले। और तन्हा मैं आसमान अदब पर नहीं रहा, तन्हा मैं आसमान अदब पर नहीं रहा, आसमान अदब पर नहीं रहा, मुझको किराम मेहरो नजूमो कमर मिले। तन्हा मैं आसमान अदब पर नहीं रहा, तन्हा मैं आसमान अदब पर नहीं रहा, मुझको किराम मेहरो नजूमो कमर मिले। और शेर देखेंगे कि सारे जहाँ का जुगनू बना मरकज़ निगाह, सारे जहाँ का जुगनू बना मरकज़ निगाह, मरकज़ निगाह, यूँ तो हर एक पतंगों को ही बालों पर मिले। सारे जहाँ का जुगनू बना मरकज़ निगाह, मरकज़ निगाह, यूँ तो हर एक पतंग को ही बालों पर मिले। और कोई ज़मीं खाह फलक का रहे चिराग, कोई ज़मीं खाह फलक का रहे चिराग, फलक का रहे चिराग, अहले जहाँ को रोशनी उनसे मगर मिले। कोई ज़मीं खाह फलक का रहे चिराग, फलक का रहे चिराग, अहले जहाँ को रोशनी उनसे मगर मिले। और अगला शेर इस तरह है कि हक़ है करेंगे औजे सुरैया की आरज़ू, हक़ करेंगे औजे सुरैया की आरज़ू, औजे सुरैया की आरज़ू, मर्रीख मुश्तरी पे हमें फ़तह गर मिले। हक़ करेंगे औजे सुरैया की आरज़ू, औजे सुरैया की आरज़ू, मर्रीख मुश्तरी पे हमें फ़तह गर मिले। और शेर देखेंगे कि सरतानी होती सुम्बली मीज़ानी अकरबी, सरतानी होती सुम्बली मीज़ानी अकरबी, मीज़ानी अकरबी, सब अपने बुर्ज के ज़ेर असर मिले।
3: बहुत अच्छे।
2: सरतानी होती सुम्बली मीज़ानी अकरबी, मीज़ानी अकरबी, सब अपने अपने बुर्ज के ज़ेर असर मिले। और गहराइयों में बहर के बरसों रहे हैं हम, गहराइयों में बहर के बरसों रहे हैं हम, किस्मत से जाके अब हमें लालो गुहर मिले। गहराइयों में बहर के बरसों रहे हैं हम, बरसों रहे हैं हम, किस्मत से जाके अब हमें लालो गुहर मिले। और मख्तार है के दुनिया इल्म फ़न के मुनव्वर चिराग से, دنیائے علم و فن کے منور چراغ سے، منور چراغ سے ہر دور ہر صدی کو نئے راہ بر ملے۔

0: बहुत बहुत शुक्रिया, और ये शेर समाप्त फरमाएं।
1: मैंने ठुकराया जमाने को तुम्हारी खातिर।
0: एजाज साहब जी,

0: ऐसी भी मशक सितम जान तमन्ना न करो।
1: क्या कहना भाई, बहुत खूब, बहुत अच्छे।
0: ऐसी भी मशक सितम

निदा फाजली का कलाम आप जगजीत सिंह की आवाज़ में सामीन समाप्त कर रहे थे, और इसी के साथ हमारा ये सफ़र यहीं तमाम होता है। कल फिर हमारी मुलाकात होगी। इसी वादे और इरादे के साथ हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म गुमराह से। आवाजें आशा भोसले और महेंद्र कपूर की है। गीत साहिल लुधियानवी की है और संगीत है रवि का।

पर तू अब ये सुहाना साथ में।

परिचय फिल्म से अभी आप सुन रहे थे ये गीत। आवाजें थी आनंद बख्शी और लता मंगेशकर की, गीत के बोल थे आनंद बख्शी के और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

कश्मीर की कली, इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे ये गीत। गायक कलाकार थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी। गीत के बोल थे SH बिहारी के और संगीत था OP नैयर का। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करें NewsOn AIR ऐप।

फकीरा फिल्म से अभी आप सुन रहे थे ये गीत। गायक कलाकार थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर। गीत के बोल थे इंद्रजीत सिंह के और संगीत था रविंद्र जैन का। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म नीला आकाश से। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, गीत राजा मेहदी अली खान का और संगीत है मदन मोहन का।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते

0: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
1: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
0: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
2: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है विद्यापति गीत। कलाकार हैं राम कुमार मल्लिक।

विनोद कुमार ठाकुर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये विद्यापति गीत। अगला विद्यापति गीत हम आपको सुनवाते हैं, स्वर है ममता ठाकुर का।

विद्यापति गीत अभी आप सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा से पहली सभा के कार्यक्रम। सभा को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत। आज के कलाकार हैं पंडित जसराज।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंडित जसराज का गायन। शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे और नयन पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, अपनों के बिना अधूरी लगती है।
1: बहुत सुंदर संदेश आपका, इसके लिए हमारा आभार स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखते हैं,
2: ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 4 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। इस बात की जानकारी को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बताया गया। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
1: कृष्ण कुमार गुप्ता जी आगे लिखते हैं, करगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बखान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी हासिल हुई। इस अप्रतिम प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ता है।
1: साथ ही साथ हम अन्य सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें, सिर्फ सुविचार भेजकर ही संतुष्ट न हो जाएं।
2: जी, और अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
1: लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। सोमवार से शुक्रवार तक हम रोज सुनते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी सुनते हैं
2: जी।
1: एक सुझाव है कि यदि सब्जी, फूल, फल व मोटे अनाज पर भी जानकारी सुनवाई जाए तो हम सबों को बड़ा लाभ होगा।
2: दिनांक 12 मई को भीषण गर्मी के उपाय, बचाव, नवतपा, थर्मल लैग जैसी बेहद उम्दा जानकारी हमने सुनी, परिवार के सभी को बेहद पसंद आई। अब उमंग कार्यक्रम में 17 सदस्य और जुड़ गए हैं। दिन पे दिन संख्या बढ़ रही है, कार्यक्रम की उपयोगिता सबको जोड़ती जा रही है। ये ज्ञान का भंडार है, इसलिए हम हृदय से उमंग टीम को आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से

0: अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल, अंजलि जंघेल, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
1: गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी का।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का नाम क्या था?
1: इसका उत्तर है साथियों, 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था। इसे बर्लिन वॉल कहा जाता है।
0: जी, हमारा दूसरा प्रश्न था, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
0: और अब सुनिए हमारे द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकते हैं?
1: गोबी के शीत मरुस्थल में बनाए जाने वाले मोबाइल घरों को यर्ट कहते हैं।
0: जी, और अब हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं।
1: इसका उत्तर है साथियों, लद्दाख क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ को विलोवुड ट्री कहते हैं, जिनसे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के किस गांव में पड़ता है?
1: इसका उत्तर है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के स्पीति घाटी के हिक्किम गांव में पड़ता है।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। उन सभी श्रोताओं को हमारा शुक्रिया जिन्होंने भाग लिया और उत्तर भेजे। अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है,
1: भारत की किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? श्रोताओं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आईडी यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भी।
1: प्रश्न एक बार मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप कृपया CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए।
0: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
1: एक चिर परिचित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि यदि कोई प्रशंसा करे तो हमें तुरंत प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें तथ्यों की जाँच करनी चाहिए कि कहीं प्रशंसा किसी स्वार्थ के कारण तो नहीं की जा रही है।
0: जी,
2: प्यारे बच्चों नमस्ते। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। इस कहानी में लोमड़ी एक कौवे से रोटी का टुकड़ा छीन लेती है। कैसे छीनती है? बात यूं है कि एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा उसने अपनी चोंच में दबा लिया। एक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया? नहीं भाई, आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी। तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत में।

0: कौवे को यूं बुद्धू बनाया, रोटी खोकर कौवा बड़ा ही पछताया।
1: बेचारा कौवा अपनी रोटी गंवा बैठा ना, क्यों भला? क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी मुंह से गिर गई।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
3: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
4: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम,
2: राजा रवि वर्मा।
4: ये कार्यक्रम भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और बताता है कि किस तरह से उन्होंने कैनवस पर अपने पेंट ब्रश से भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया, जिसका शाश्वत प्रभाव आज भी उसी प्रकार से बना हुआ है।

0: अरे अरे तुम लोगों ने ये क्या किया? कोचू मंगला, तुमने तो मंदिर की दीवारी गंदी कर दी। कोयले से ये क्या चील बिलाऊ बना दिए? अभी तो मंदिर सफेदी से पुतवाया था, तुमने उसे भी गंदा कर दिया। ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।
1: लगभग 150 साल पुरानी बात है। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य की राजधानी है। उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयिल्यम तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किलिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता था।
2: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई। उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था। वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। खेल खेल में कोच्चू ने कहा,
3: मंगला
4: हाँ?
3: आ देख, मैं तुझे इस सफेद दीवार पर घोड़ा बनाकर दिखाता हूँ।
4: ठीक है।
3: अच्छा देख, वो कोयले का टुकड़ा पड़ा है ना?
4: हाँ हाँ।
3: उठाकर मुझे दे।
4: अच्छा, ये लो कोयले का टुकड़ा।
3: हाँ।
4: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।
1: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।
3: ये हाँ ऐसे ये मैंने बना दी घोड़े की टांग।
4: अरे वाह।
3: और ये इसकी पूंछ।
4: अरे तुमने तो बिल्कुल सही घोड़े का चित्र बना दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
3: अच्छा ले कोयला ले, और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।
4: लेकिन मुझे तो ले, अरे मगर
3: ओ, अब बना तो सही। ले पकड़ कोयला पकड़।
4: ठीक है।
3: अब बना।
2: मंगला चित्र बनाने जा ही रही थी कि उधर से गुजरते हुए माली की निगाह उन पर पड़ गई। माली ने डांटा, तुमने दीवार खराब कर दी, और फिर राजा साहब से शिकायत करने चला गया। इस पर मंगला बोली,
4: भाई
3: हा?
4: अब क्या होगा, माली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।
3: तू चिंता मत कर। अच्छा चल, हम दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
4: ठीक है।
3: चल चल चल चल चल।
4: हाँ, हाँ,
3: हम
4: हाँ,
3: दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
4: हाँ,
3: है?
4: ठीक है,
3: चल,
4: ठीक है,
3: चल,
4: चल,
1: चल, चल, चल, चल, चल, चल। कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
5: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया है कोच्चू ने। देखो तो सही, पूछ उठाए घोड़ा कैसा भाग रहा है।
2: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।

0: कहाँ है कोची और मंगला? है
1: मालिक, मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था। आप उन पर नाराज होंगे ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

राजा साहब ने पहचान लिया कि कोच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतन भट्टा तिरपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहां रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन यह भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, मां से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया।

0: बहन अम्बा
1: जी,
0: त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया है। उन्होंने कहला भेजा है कि घराने में कोई अच्छा सा विवाह योग्य युवक हो तो उसे भी साथ लेते आए।
1: फिर
0: क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सोचता हूँ कोचू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था
1: जी,
0: सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
1: तो फिर
0: तुम कहो तो उसे त्रिवेंद्रम ले जाऊं?
1: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूँ। हाँ, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

पिता नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती। त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, वहां के विद्वानों, गुणियों और कलाकारों से उच्च शिक्षा पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि त्रिवेंद्रम के राजा का उसे आश्रय मिलेगा। और इस प्रकार कोच्चू त्रिवेंद्रम के राज दरबार में पहुंच गए।

0: राजा राजवर्मा, हमारा संदेशा पाकर आप आए, अच्छा किया जो आप आए। आपका स्वागत है। आपके यहां सब कुशल क्षेम तो है?
1: जी हाँ, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है।
0: आपके साथ ये नवयुवक कौन है?
1: महाराज, ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई, विद्वान नीलकांतन भट्टातिरुपद का बड़ा बेटा। इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज। गायन, वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
0: अरे, तब तो ये नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
1: महाराज, इसमें आगे बढ़ने की बहुत ललक है, लेकिन हम किलिमानूर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
0: इसमें क्या परेशानी है? इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यहीं करा देंगे। हमारे यहाँ

0: तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं। राज चित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।
1: आप ऐसी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
0: आप निश्चिंत हो जाएं। समझ लीजिए कि इसकी व्यवस्था हो गई।
2: राजा तिरुनाल ने दरबार में उपस्थित राज चित्रकार रामास्वामी नायकर को संबोधित करते हुए कहा,
0: नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है। इसे आप राजकीय रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें। ये हमारे राजा राजवर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है, और अब ये हमारे संरक्षण में है।
3: रामास्वामी नायकर ने देखा कि नव युवक का हाथ तो उनसे भी कहीं अधिक सधा हुआ है। ऐसे में इसे कुछ सिखाने का मतलब होगा अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं सिखाया, बल्कि उसे डांटता फटकारता रहा। तिरुनाल को पता चला कि रामास्वामी उसे कुछ नहीं सिखा रहे, तो उन्होंने रवि को रंग दिए, विदेशी चित्रकारों के चित्रों के एल्बम दिए और कहा,
0: रवि
1: जी,
0: तुम इन चित्रों को देख देख कर चित्र बनाना और रंग भरना सीखो, बराबर अभ्यास करो।
1: जी।
2: रवि वर्मा यही करने लगे। तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेनसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
0: मिस्टर जेनसन,
4: यस,
0: जब आप चित्र बना रहे हों तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
4: नहीं नहीं, ऐसा करने से मेरा ध्यान भंग होगा। मैं इसे अपने पास भी खड़ा रहने नहीं दे सकता।
0: तो फिर हमें आपसे चित्र नहीं बनवाने हैं, आप जा सकते हैं।
3: राजा तिरुनाल की ये बात सुनकर जेनसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
4: राजा साहब की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी। अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा, सिखाऊंगा उसे चित्र बनाना। ऐसा सिखाऊंगा कि उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। पर मैं राजा साहब को ना क्यों करूं?
3: इस तरह हार कर उसने राजा तिरुनाल की बात मान ली। लेकिन उसने भी यही कोशिश की कि रवि वर्मा उसे काम करता देखकर भी कुछ न सीख सके। लेकिन रवि वर्मा तो उसके कुछ ना सिखाते हुए भी बहुत कुछ सीख गए। वो बराबर चित्र बनाते रहे। उन्हीं दिनों मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने अपना एक चित्र भेजा। इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें मद्रास के गवर्नर की ओर से स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले। अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए, जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए।

0: इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम में दो हाथी तक दिए।
1: राजा रवि वर्मा ने केवल राजा महाराजाओं के चित्र ही नहीं बनाए बल्कि आम लोगों के चित्र भी बनाए और सबसे अधिक चित्र बनाए देवी देवताओं के, भागवत और पुराणों के। कवि कालिदास की कृति शाकुंतलम पर आधारित उन्होंने कई चित्र बनाए जिनमें से एक चित्र को तो विदेशों में भी खूब प्रशंसा मिली। ये चित्र था राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का। इस चित्र को अंग्रेज विद्वान सर मोनियर विलियम्स ने देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। सर मोनियर विलियम्स ने कवि कालिदास के नाटक शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वो इस चित्र को अपने अनुवाद के मुख पृष्ठ पर छापना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रवि वर्मा से अनुरोध किया कि इस चित्र को छापने की उन्हें अनुमति दें। रवि वर्मा ने अनुमति दे दी। इस चित्र के मुख पृष्ठ पर छपने से इसकी देश विदेश में खूब प्रशंसा हुई और किताब भी खूब बिकी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजा रवि वर्मा, और अब इसी के साथ हम आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग
5: NCERT उमंग। अभी आप सुन रहे थे ये प्रायोजित कार्यक्रम, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का।

ये गीत है फिल्म चंदू चैंपियन से। अरिजीत सिंह, नक्स अजीज, देव नेगी की आवाजें हैं। गीत के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। ये गीत है फिल्म आजाद से, अरिजीत सिंह और अमित त्रिवेदी की आवाजें हैं।

के अंतर्गत 1:15 से हम और गाने आपको सुनवाएंगे और नए गाने आप सुन पाएंगे दूसरी सफा में 5:40 से। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम नारी संसार, कृपया प्रतीक्षा करें।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम नारी संसार में। अभिवादन स्वीकार करें अपनी रेडियो सखी आरती का। सखी बहनों कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगी, प्रसन्न होंगी और इस समय आप अपने सारे कामकाज निपटाकर कर रही होंगी इंतजार अपने पसंदीदा कार्यक्रम नारी संसार का। तो बहनों अब आपका इंतजार हुआ ख़त्म, मैं आ गई हूँ आपसे ढेर सारी बातें करने और सुनवाएंगे आपको प्यारे प्यारे गाने। पर उससे पहले करते हैं कुछ बातें। महिलाओं के लिए योग और फिटनेस उनके समग्र स्वास्थ्य, हार्मोनल संतुलन और मानसिक शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल शारीरिक शक्ति बढ़ाता है बल्कि तनाव को भी कम करता है। योग महज एक व्यायाम से कहीं अधिक बन चुका है। ये एक ऐसा जीवन परिवर्तनकारी साधन है जिसका उपयोग महिलाएं जीवन के हर पड़ाव पर कर सकती है। जी हाँ, किशोरावस्था से लेकर के व्यस्त माताएं तक जो अपने शरीर को फिटनेस रखना चाहती हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहनों जीवन में व्यवस्था, काम, बच्चे, दोस्त और घर के कामकाज जैसी कई चीज़ एक साथ करना होता है और धीरे धीरे इतना बोझ बन जाता है कि आप खुद अपने लिए समय निकालना भूल जाती हैं। हम सब जानते हैं कि योग हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जैसे चलना, दौड़ना, तैरना और अन्य प्रकार के माध्यम से कई प्रकार के शारीरिक लाभ प्रदान करते हैं। इस आधुनिक दुनिया में अनगिनत महिलाओं को लगातार अपने करियर, पारिवारिक जिम्मेदारियों और व्यक्तिगत आकांक्षाओं के बीच उलझना पड़ता है, जिसमें आमतौर पर उनके पास अपने या अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकालना मुश्किल होता है। महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य एक और महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि कई महिलाएँ चिंता और अवसाद से ग्रस्त पाई जाती है जो अक्सर घर बाहर कार्यों के बीच दबाव होता है। मेरे कहने का मतलब है कि कई महिलाओं के लिए काम, परिवार और निजी स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाना असंभव लगता है। जी हाँ, दफ्तर में समय सीमा पूरी तरह करना, घर की जिम्मेदारियां संभालना और बच्चों की देखभाल करना, उनको पहले से बहुत सारे काम होते हैं और उनका स्वास्थ्य उनकी प्राथमिकता में सबसे कम होता है। इससे होता क्या है कि लगातार तनाव, थकावट और स्वास्थ्य समस्याएं, ये दोनों पर भारी पड़ता है, जिससे महिलाओं के लिए अपनी फिटनेस और पोषण पर ध्यान देना अति आवश्यक है। तो बहनों बातें आगे।

दोनों काम के साथ साथ खुद के लिए भी समय निकालना बहुत ज़रूरी है। एक कामकाजी महिलाओं की दिनचर्या सुबह जल्दी उठकर घर के कामकाजों से शुरुआत होती है और देर रात रसोई को समेटने से पूरी होती है। इस बीच वो दो वक्त का खाना भी सही से नहीं खा पाती है। हम महिलाओं के लिए घरों में ढेरों काम पड़ी होती है, जैसे कपड़े धोना या घर का मैनेजमेंट करना और ऑफिस का भी काम निपटाना रहता है। ऐसे में खुद का ख्याल रखने का मौका उन्हें मुश्किल से ही मिल पाता है। ये दोहरी जिम्मेदारियां महिलाओं की मानसिक सेहत पर भारी तो पड़ ही रही है, साथ ही अपनी करियर को भी नुकसान पहुंचा रही है। सखी बहनों, महिलाएं भले ही करियर के स्तर पर घर हर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है, मगर आज भी हमारे देश में ये सोच आम है। और ये भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए असल जिम्मेदारियां तो उनकी घर ही है। यही कारण है कि कामकाजी महिलाओं से आज भी ये उम्मीद की जा रही है कि वे घर की जिम्मेदारियों से जरा भी कोताही ना बरते, साथ ही घर के हर सदस्यों का ख्याल रखे। जी हाँ, यही कारण है महिलाओं का मानसिक तनाव का, यानी कि दोनों तरफ की काम और दोहरी जिम्मेदारियां, कामकाजी महिलाओं खुद के लिए समय निकालना,

सीखे। बहनों, काम के बीच में ब्रेक भी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, काम के बीच में कुछ मिनटों का समय खुद के लिए ज़रूर निकाले। सामान्य तौर पर मैं आपको बता देती हूँ कि 40 मिनट से 45 मिनट तक एक ही जगह पर लगातार काम करने के बाद 10 मिनट तक का आप ब्रेक ले सकती हैं। ब्रेक के दौरान शांत बैठकर किसी खाली जगह की ओर देखती जाए और देखने का कोण छोटा करती जाए। अब गहरी सांस लेते हुए सांस को अंदर जाते हुए महसूस करें, ऐसे ही सांस छोड़ते हुए भी महसूस करें। ऐसे करने से मन शांत रहता है, साथ ही अपना वातावरण बदले। कई बार एक ही जगह बैठकर लगातार काम करते रहने से भी थकान महसूस होने लगती है। ऐसे में ब्रेक के दौरान कुछ मिनटों के लिए अपनी सीट से उठे और थोड़ा टहल आए। इसके अलावा प्रकृति से भी जुड़ी कुछ चीज़ें अपने आसपास जरूर रखें। अगर समय मिले तो कुछ नया सीखने के भी कोशिश करें। कुछ वक्त खुद के लिए निकालकर अपनी स्किल्स पर काम करें और उन्हें बेहतर करें। इससे आपको करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसके अलावा नियमित अंतराल पर कुछ सीखने से मन में खुशी उभरने लगती है। कई बार वर्न आउट सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम एक जगह पर अटक कर रह जाते हैं और साथ वाले आगे निकल जाते हैं। ऐसे में कई बार अपने या अपने ही काम से मन हटने लगता है। तो बहनों, जिम्मेदारियां और तनाव के बीच खुद का ख्याल रखना न भूले। तो बातें तो आगे और भी करेंगे, पर उससे पहले आपको सुनवाते हैं वार्ता। तो आइए सुनते हैं एक छोटी सी वार्ता।

नमस्कार श्रोताओं, एक छोटी मुलाकात अंक में आज मैं उपस्थित हूँ आपकी रेडियो सहेली विजेता। श्रोताओं, आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ उसका संबंध सीधा हमारी आर्थिक स्थिति से जुड़ी है। जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात करेंगे छोटी छोटी बचत की आदत हमारे लिए कितनी फायदेमंद होती है। श्रोताओं, यदि हमें अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य देना है, हमारा कल सुनहरा हो, ये ध्यान रखना है, तो हमें अपने अंदर बचत की आदत को विकसित करना होगा। जी हाँ, जीवन में की गई छोटी छोटी बचत हमें बड़े बड़े लाभ देती है, जिससे कि हमारा भविष्य सुनहरा हो सके, हमारे सपने पूरे हो सके। तो बहनों, यदि आप चाहती हैं कि आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, उनका करियर अच्छा हो, पर आपकी आमदनी कम होने की वजह से आप अपनी आशाओं को दबा कर रख लेती हैं, तो ऐसा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। बस थोड़ी सी सूझबूझ के साथ चलें और अपने सपने को पूरे। अब जैसे कि हम राशन का सामान महीने भर का एक बार में ही मंगवा लें, थोड़ा थोड़ा मंगवाने से पैसे अधिक खर्च होते हैं, ऐसे में बचत की गुंजाइश नहीं होती। आमदनी जितना हो उसी में घर का सारा खर्च निकालने की कोशिश करें, हर महीने कुछ राशि जमा करने की कोशिश करें, जिससे वो हमारे बुरे वक्त में काम आ सके और हमें किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत ना पड़े। हर काम के लिए जैसे डॉक्टर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, राशन का सामान, इन सब के लिए अलग अलग जगह पैसे रखें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम उसका सही उपयोग कर सकें। जितना आमदनी हो उसका एक हिस्सा फौरन अलग करके रखें और एक तरह से उसे भूल जाएं, और ये ध्यान में रखें कि जितना पैसा हमारे पास है हमें उसी में सारा काम निकालना है। ऐसा करने से बचे हुए पैसे आड़े वक्त काम आते हैं। कपड़े खरीदना हो, सब्जी खरीदना हो, राशन का सामान खरीदना हो, तो बाज़ार में थोड़ा घूमें, जहाँ अच्छा और सस्ता दिखे वहीं से खरीदारी करें। कोई बड़ा काम यदि करना हो तो उसके लिए पहले से ही थोड़े थोड़े पैसे जुटाने शुरू कर दें, ताकि जब वो काम सामने आए तो उसे करने में जो पैसे लगेंगे वो अचानक हमें नहीं जुटाना पड़े। मतलब हर काम योजनाबद्ध तरीके से करें। प्लानिंग के साथ किया गया काम हमारे भविष्य को उज्जवल बनाता है।

0: बहनों, इस तरह की छोटी छोटी बचत हमें बड़े बड़े लाभ देती है। बचत किए गए पैसे बच्चों को अच्छा भविष्य देने के काम आती है, बीमार पड़ने पर काम आती है, शादी ब्याह के समय में काम आती है। तो बचत की आदत बहुत ही अच्छी होती है। इस आदत को, इस हुनर को हमें अपने अंदर समाहित करना चाहिए ताकि हमारा भविष्य सुनहरा हो सके, हमारे सारे सपने पूरे हो सके। तो अब हम अपने शब्दों को यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद। तो अब मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद।
1: बहनों, अभी आप सुन रही थी वार्ता। वार्ताकार थी विजेता सिन्हा और वार्ता का विषय था छोटी छोटी बचत करके करने की आदत डाले। तो बहनों, बातें आगे और भी करेंगे, पर उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा फिल्म संगीत।

बिना फिल्म संगीत के बाद आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम नारी संसार में, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी आरती। मेरे अब वक्त हो चला है हर दिन कुछ खास का। जी हाँ, दिनों दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। बता दें कि आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाने से कई तरह के इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इन दिनों खान पान पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। ऐसे में फल और सब्जियां ज़्यादा खाने की कोशिश करें जिनमें भरपूर मात्रा में पानी पाया जाता है, जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, तोरी, ये सब चीज़ खानी चाहिए। और रात के समय खिचड़ी या कढ़ी खाना भी फायदेमंद होता है। इसके अलावा खाने में भी चीज़ें बदलकर खाने की कोशिश करें जिससे शरीर को किसी भी पोषक तत्व की कमी का सामना ना करना पड़े। तो ध्यान रखें, कम खाए पर अच्छा खाए। इन दिनों छाछ पनीर ले। जी हाँ, आप मूंगफली के दाने भी उबालकर थोड़ी सी खा सकते हैं, इससे आपको काफ़ी प्रोटीन मिल जाएगी। तो बहनों, अब कार्यक्रम नारी संसार में हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी संसार, आकाशवाणी दरभंगा से ये कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा था। कुछ पलों में हम जुड़ते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचारों के लिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों ने निर्धनों और वंचितों के जीवन में आशा, अवसर और स्वावलंबन के नए अध्याय लिखे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
1: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ईरान के मिसाइल हमले पर जवाबी कार्रवाई न करने का आग्रह किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि इससे शांति समझौते तक पहुंचने के प्रयासों में बाधा आ सकती है। उन्होंने ईरान से फिर वार्ता शुरू करने का आग्रह किया है। भारतीय शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.6% की गिरावट आई। सेंसेक्स 434 अंक गिरकर 73,809 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

का ये दरभंगा केंद्र है। अब जानकारी प्राप्त करें हमारे केंद्र से प्रस्तुत होने वाले आज के मुख्य कार्यक्रमों की। देशभक्ति गीत आप सुनते हैं 1:10 से। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे आनंद मठ का गीत, जिसे स्वर दिया लता मंगेशकर ने। 1:15 समय होगा फिल्म संगीत का। 2:00 प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। 2:05 पर आप सुनेंगे इलाकाई खबरें। 2:00 आप हमारे केंद्र से सुनेंगे, समय होगा 2:10। 2:15 पर हम चुनेंगे अपने दिल्ली केंद्र से और सुनेंगे दोपहर समाचार। 2:30 समय होगा एक बार फिर से फिल्म संगीत का। 3:00 हम आपके लिए लेकर आएंगे लोकगीत। ये जानकारियां आप प्राप्त कर रहे थे पहली सभा के कार्यक्रमों की। अब एक नजर डालते हैं दूसरी सभा के कार्यक्रमों पर।

दूसरी सभा आरंभ होगा संध्या 5 बजे कार्यक्रम तरुण कुसुम के साथ। आज की चर्चा का विषय होगा समुद्र और नदियों की सुरक्षा में युवाओं की जिम्मेदारी। साथ ही साथ आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में कवि गोष्ठी। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कवि फूलचंद झा प्रवीण, कवि मोहम्मद सरवर अंसारी, कवि चंद्रमोहन पोद्दार और कवि शंभुनाथ मिश्र का ये कवि सम्मेलन होगा और संचालन करेंगे राकेश चंद्र नंदन, प्रस्तुतकर्ता होंगे असद दाऊद। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे युववाणी के अंतर्गत यानी तरुण कुसुम में संध्या 5 बजे से। फिल्म संगीत 5:40 पर प्रसारित किया जाएगा। 6 बजे हिंदी समाचार होंगे। विद्यापति गीत 6:10 पर होगा और मैथिली संवाद आप सुनेंगे 6:25।

गाम घर ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा ये कार्यक्रम होता है 6:30 से। आज आप सुनेंगे अनुभव के चश्मा सॉन्ग। चर्चा है अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम और विश्व समुद्र दिवस। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप एक प्रायोजित कार्यक्रम भी सुनेंगे जिसका नाम है बुनियाद। 7 बजे खेती गृहस्थी प्रसारित किया जाएगा। समेकित पोषक तत्व प्रबंधन, यही है आज की चर्चा का विषय खेती गृहस्थी के अंतर्गत। 7:30 से प्रादेशिक समाचार हम आप तक पहुंचाएंगे। जिले की हलचल 7:47 से। 7:52 पर प्रसारित किया जाएगा फिल्म संगीत। 8:15 से। समाचारों के बाद 9:30 पर रात को आप सुनेंगे पब्लिक स्पीक, हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। और रात्रि 10 बजे आपके फोन कॉल पर आधारित फिल्म गीतों का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। अभी आप जानकारी प्राप्त

कर रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। देशभक्ति गीत आकाशवाणी दरभंगा से प्रसारित किया जा रहा था।
1: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
0: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
0: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
1: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए। घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक ही क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। अब हम आपको लिए चलते हैं फिल्म गीतों के सफर पर, कार्यक्रम फिल्म संगीत के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं फिल्म लेकिन के इस गाने से, जिसे आवाज दी है

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा,
1: बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

किशोर कुमार को भी आप सुन रहे थे फिल्म लाबारिस में। प्रकाश मेहरा का लिखा ये गीत था कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म बॉबी से, शैलेंद्र सिंह की ये आवाज़ है।

0: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है मीडियम वेव के 231.5 मीटर पर। अब हम जुड़ते हैं पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और इलाकाई खबरों के लिए।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है। एनडीए के 9 जबकि महागठबंधन के 1 उम्मीदवार ने अपना नामांकन भरा है। भाजपा की ओर से भोजपुरी अभिनेता गायक पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित ने अपना नामांकन भरा। वहीं जदयू की ओर

से स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी ने नामांकन पर्चा भरा। एनडीए प्रत्याशियों के नामांकन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, लोजपा आर के अध्यक्ष चिराग पासवान समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इधर राजद प्रत्याशी सुनील कुमार सिंह ने भी अपना नामांकन पत्र भर दिया है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 11 जून है। आवश्यकता होने पर इन सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन शाम को मतगणना होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश में कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और डिजिटल माध्यमों से लोगों तक सीधे और पारदर्शी ढंग से सहायता पहुंच रही है। इससे लक्षित वर्ग तक अधिकतम लाभ पहुंचना सुनिश्चित हुआ है, कार्य क्षमता बढ़ी है और शासन में भरोसा बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। ये ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचनात्मक और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण है। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के दक्षिणी भाग में अगले दो दिनों तक गर्म और उमस भरा दिन रहने की संभावना है। वहीं अगले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया और किशनगंज समेत उत्तर मध्य तथा उत्तर पूर्व बिहार के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिम चंपारण जिले के बलथर और भंगहा क्षेत्र में अलग अलग कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कार पर लदे 111 क्विंटल से अधिक गांजा के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने ठगी गिरोह का खुलासा करते हुए 3 अंतर्राज्यीय ठग को गिरफ्तार किया है। औरंगाबाद जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत देव मोड़ के पास एक पर्यटक बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर में 3 पर्यटकों की मौत हो गई, वहीं 20 अन्य पर्यटक घायल हो गए। घायलों में 8 की हालत गंभीर बनी हुई है। रोहतास जिले में नोखा थाना क्षेत्र अंतर्गत 70 बिगहवा गांव के पास एक ऑटो और पिकअप वाहन की आमने सामने की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक ही परिवार के 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

रूख अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। वहीं जेडीयू की जानिब से वजीर सेहत निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जानिब से कारगुजार रियासती सदर अशरफ अंसारी ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। एनडीए उम्मीदवारों की नामजदगी में वजीर आला सम्राट चौधरी, लोजपा आर के सरबराह चिराग पासवान समेत एनडीए के कई सीनियर लीडरान शामिल हुए। इधर आरजेडी उम्मीदवार सुनील कुमार सिंह ने भी अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 11 जून है। जरूरत होने पर इन सीटों के लिए 18 जून को पोलिंग होगी और इसी दिन शाम में वोटों की गिनती होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गरीबों के मफाद में हुकूमत के 12 बरसों के तरक्याती सफर की निशानदेही की है। जनाब मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान मुल्क कई तब्दीलियों का गवाह बना और गरीब फलाह और महरूम तबके इन तब्दीलियों के फोकल प्वाइंट रहे। वजीर आजम ने कहा कि जन धन खाता, बराह रास्त फायदे की मुंतकली, शफाफ भारत मुहिम, पीएम रहायश मंसूबा, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का मकसद लोगों के लिए इज्जत वक़ार और मौके को यकीनी बनाना रहा। गरीबों की तर्ज ज़िंदगी बेहतर बनाने में टेक्नोलॉजी ने अहम किरदार निभाया है। उन्होंने कहा कि बराह रास्त फ़ायदे की मुंतकली और डिजिटल ज़राए से लोगों तक सीधे और शफाफ तरीके से इमदाद पहुँच रही है। इससे निशानजद तबके तक ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचने को यकीनी बनाया गया है। काम करने की सलाहियत में इजाफा और हुक्मरानी में एतमाद बढ़ा है। वजीर आजम ने कहा कि गरीब फलाह यात्रा, लोगों की इस्तेहकाम कारी और तरक्की याफ्ता भारत का ख्वाब शर्मिंदे ताबीर करने की इज्तमाई मुहिम बन गई है। मुल्क का काबिल एतमाद पब्लिक ब्रॉडकास्टर आकाशवाणी आज अपने 90 बरस मुकम्मल होने का जश्न मना रहा है। साल 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। ये तारीखी दिन मुल्क की सकाफती, इत्तलाती और नशरियाती तारीख में एक खास लम्हा है। पार्लियामानी और अकलियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने आकाशवाणी के फखरिया 90 बरस मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी है। रियासत के जनूबी खित्ते में आइंदा 2 दिनों तक गर्म और उमस भरा दिन रहने का इम्कान है। वहीं अगले 3 दिनों में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। मौसम साइंस सेंटर पटना के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया और किशनगंज समेत शुमाल वस्त और शुमाल मशरकी बिहार के कुछ मकामात पर हल्की से औसत दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कैमूर जिला का भभुआ रियासत का सबसे गर्म मकाम रहा, जहां का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी पटना का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मगरबी चंपारण जिला के बलथर और भंगा इलाके में अलग अलग कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कार पर लदे 111 क्विंटल से जायद गांजा के साथ 2 स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जिला के रामनगर थाना इलाके में पुलिस ने ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 बैन रियासती ठग को गिरफ्तार किया। औरंगाबाद जिला के मुफस्सिल थाना इलाके के तहत देव मोड़ के करीब एक टूरिस्ट बस और ट्रक के दरमियान जबरदस्त तसादुम में 3 सयाहों की मौत हो गई, जबकि 20 दिगर सयाह जख्मी हो गए। जख्मियों में 8 की हालत संगीन है। रोहतास जिले में नोखा थाना इलाके के तहत 70 बिगहवा गांव के करीब एक ऑटो और पिकअप गाड़ी की आमने सामने की टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक ही खानदान के 3 दिगर अफराद संगीन तौर पर जख्मी हो गए। मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर थाना इलाके से पुलिस ने 6 ग्राम स्मैक के साथ 3 स्मगलरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार जरायम पेशों के पास से 1 चार पहिया गाड़ी और 1.25 लाख रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं। अररिया जिला के आरिस थाना इलाके से पुलिस ने गाड़ी जांच के दौरान 1 चार पहिया गाड़ी से 228 लीटर बियर बरामद किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव के 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। अब सुनिए रोजगार सूचना। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिव्यू ऑफिसर आरओ, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट सीए के कुल 543 पदों के लिए रिक्तियां निकाली हैं। कुल पदों की संख्या 543 है। आवेदन शुरू होने की तिथि 1 जून 2026 थी। आवेदन की अंतिम तिथि 21 जून

2026 है। आयु सीमा है 18 वर्ष से 21 वर्ष, अधिकतम उम्र 35 वर्ष। आरओ और एओ के लिए अधिकतम उम्र 21 वर्ष है। इच्छुक अभ्यर्थी इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती परीक्षा के लिए 11,127 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। 15 मई 2026 से आवेदन शुरू हो चुकी है और 14 जून 2026 तक आप आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा 18 वर्ष से 30 वर्ष है, जिसकी गणना 1 जुलाई 2026 को आधार मानकर की जाएगी। रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा में 12,256 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदन 21 मई 2026 से शुरू है और 22 जून 2026 तक आवेदन की अंतिम तिथि है। आयु सीमा 18 वर्ष से 32 वर्ष है, जिसकी गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। इच्छुक अभ्यर्थी एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भारतीय नौसेना में 60 पदों पर नियुक्ति होनी है, जिसके लिए आवेदन आरंभ है। आवेदन की अंतिम तिथि 18 जून 2026 है। आप नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वैसे अभ्यर्थी जिनका जन्म 2 जुलाई 2007 से 1 जनवरी 2010 के बीच हुआ हो, वे आवेदन कर सकते हैं। रोजगार सूचना अब समाप्त हुई।

0: हम एक हैं। भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंध जिसके तहत नागरिक बेरोक टोक इन दोनों ही देशों के बीच आवाजाही करते हैं। सीमा क्षेत्र के रहने वाले कभी घूमने निकल पड़ते हैं एक दूसरी ओर,
1: जनकपुर जाने के लिए आए,
0: कभी खरीदारी भी करते हैं। सामाजिक ताना बाना ऐसा कि इधर के लोग उधर या फिर उधर के लोग इधर करते हैं शादियाँ।
1: मैं चाहता हूँ कि मेरा शादी भी नेपाल में हो।
0: रहते हैं एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक।
2: एम्बुलेंस को फोन करते तुरंत आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। दोनों पार के आदमी समस्या को सॉल्व करते हैं।
0: इन्हीं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आकाशवाणी दरभंगा लेकर आता है कार्यक्रम हम एक हैं। प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को रात 10:30 बजे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम।
1: अब जुड़िए आकाशवाणी दिल्ली से दोपहर समाचारों के लिए।
2: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में

0: स्थित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
3: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देश भर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और उन्हें सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
4: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर

0: में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधान मंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में CBSE द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धनशोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
2: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुँच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
1: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
3: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।

0: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9।
2: अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
4: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है, 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
3: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
5: ईरान और इसराइल के बीच हालिय सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
3: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज पर। एक बार फिर से हम हाजिर हैं फिल्म संगीत के साथ। आइए आनंद लेते हैं चंद फिल्मी नगमों का। कार्यक्रम की शुरुआत फिल्म लगान के इस गाने से, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर

ये फिल्म मिनट में आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे थे। आज के इस कार्यक्रम में आपने सुना लगान, दिल है कि मानता नहीं, मासूक, बॉर्डर और बेटा फिल्म के गाने। इन गानों के लिए आवाजें थी अलका याग्निक, कुमार सानू, सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण, लता मंगेशकर और बिपिन सचदेवा की। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है लोकगीत।

लोकगीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना शारदा सिन्हा, वीरेंद्र कुमार मिश्र, बोध नारायण सिंह और पूनम कुमारी को। लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव के 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:20 हो चुके हैं। समाप्त होती है हमारी आज की पहली सभा। दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ संध्या 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें।

0: ओहो, हाँ, इसीलिए।
1: तुम क्या सदा वही करते हो जो मुझे अच्छा लगे? तुम्हारे यहाँ मित्र आते हैं, हंसे ठट्ठे की आवाज अंदर सुनाई देती है। मैं कभी नहीं कहती कि इन लोगों का आना बंद कर दो। तुम मेरे कामों में दखलअंदाजी क्यों करते हो भला?
0: इसलिए कि मैं घर का स्वामी हूं।
1: स्वामी हूं, स्वामी हूं, तुम बाहर के स्वामी हो। यहां इस घर में मेरा अधिकार है।
0: क्यों व्यर्थ की बकबक करती हो? मुझे चिढ़ाने से क्या मिलेगा तुम्हें? हाँ?
1: अच्छी बात है, जब इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं तो मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी।

0: अब तक भ्रम में थी, आज तुमने वो भ्रम मेरा मिटा दिया। मेरा इस घर पर अधिकार कभी था ही नहीं। जिस स्त्री का पति के हृदय पर अधिकार नहीं, उसका उसकी संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं हो सकता।
1: अरे सुनो, बात का बतंगड़ क्यों बनाती हो? मेरा यह मतलब नहीं था, कुछ का कुछ समझ गई तुम तो।
0: मन की बात आदमी के मुंह से अनायास ही निकल जाती है। सावधान होकर हम अपने भावों को छिपा लेते हैं।
2: सुरेश को अपनी असज्जनता पर दुख तो हुआ, पर इस भय से कि मैं इसे जितना ही मनाऊंगा उतना ही ये और भी जली कटी सुनाएगी, उसे वहीं छोड़कर बाहर चले आए।

प्रातःकालीन ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है। चौंक पड़े, देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। घर की नौकरानियां आंचल से आंसू पोंछ रही हैं। कई नौकर आसपास खड़े हैं। सभी की आंखें सजल और मुख उदास है, मानो बहु विदा हो रही है। सुरेश समझ गए कि मंगला को कल की बात लग गई, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। ये मेरा अपमान कर रही है, मेरा सिर नीचा कर रही है। जहां चाहे जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं। यूं बिना कुछ पूछे गाछे चले जाने का अर्थ ये है कि मैं इसका कोई नहीं, फिर मैं इसे रोकने वाला कौन। वो यूं ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई, उनकी तरफ मुंह उठाकर भी नहीं ताका।

0: मंगला पांव पैदल चली जा रही थी। एक बड़े तालुकेदार की औरत के लिए ये मामूली बात न थी। हर किसी को हिम्मत न पड़ती थी कि उससे कुछ कहे। पुरुष उसकी राह छोड़कर किनारे खड़े हो जाते थे। नारियां द्वार पर खड़ी करुण कौतूहल से देखती थीं। इस गांव से निकलकर मंगला उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली,
1: मंगला बहन, जरा अंदर आकर दम ले लो। ये क्या हुआ?
2: शीतला बहन, जो भाग्य में लिखा था वही हुआ, और क्या।
1: कुंवर जी से कुछ कहा सुनी हुई क्या?
2: मुंह से कुछ न कहने पर भी तो मन की बात छिपी नहीं रहती ना।
1: अरे तो क्या अब यहां तक नौबत आ गई है?
2: चाहती तो अब भी वहीं पड़ी रहती, उसी घर में जीवन कट जाता। पर जहां प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहां अब नहीं रह सकती मैं।
1: तुम्हारा मैका कहां है?
2: मैके कौन मुंह लेकर जाऊंगी मैं भला?
1: अरे तो तब कहां जाओगी?
2: ईश्वर के दरबार में, ईश्वर के दरबार में पूछूंगी कि तुमने मुझे सुंदरता क्यों नहीं दी, बदसूरत क्यों बनाया। बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वो रूपहीन हो। शायद पहले जन्म की पिशाचिनियां ही बदसूरत औरतें होती हैं। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है।
0: ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। सोचा,
1: इसे क्या खिलाऊंगी, आज तो चूल्हा जलने की भी कोई आशा नहीं।
0: मंगला के जाने के बाद शीतला बहुत देर तक बैठी सोचती रही,
1: मैं कैसी अभागिन हूं जिस प्रेम को ना पाकर ये बेचारी जीवन को त्याग रही है। उसी प्रेम को मैंने पांव से ठुकरा दिया। इसे जेवर की

0: क्या कमी थी? क्या ये सारे जड़ाऊ जेवर इसे सुखी रख सके? इसने उन्हें पांव से ठुकरा दिया। उन्हीं आभूषणों के लिए मैंने अपना सर्वस्व खो दिया। हाँ, ना जाने वो कहाँ है, किस दशा में है।
1: अपनी लालसा को, तृष्णा को वो कितनी ही बार धिक्कार चुके थे। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई।

मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण की दूसरी कड़ी आपने सुनी। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रकर, मंगला, ममता सिंह। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। आज आपने इस कहानी की दूसरी कड़ी सुनी। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आगे कहाँ पहुँचती है जानने के लिए जरूर सुने कथा सुधा में तीसरी कड़ी अगले हफ्ते।

0: विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली
1: और हम बात करने वाले हैं धरती की धड़कन है महासागर, क्योंकि आज है विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है और महासागर वातावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सूर्य की ऊष्मा को अपने भीतर समाहित कर तापमान को नियंत्रित करते हैं। यदि महासागर ना हो तो धरती पर कहीं अत्यधिक गर्मी और कहीं असहनीय ठंड हो जाती है। वर्षा चक्र भी महासागरों के कारण ही संभव है और समुद्र से

0: में निवास करती हैं और छोटी मछलियों से लेकर विशाल वेल तक हर जीव समुद्री जीवन की अद्भुत दुनिया का हिस्सा है। करोड़ों लोगों की आजीविका भी महासागरों पर निर्भर होती है। कितने सारे लोग मछली पकड़ने जाते हैं, पूरी आजीविका उन पर टिकी होती है। आप तो यहीं मुंबई जहां विविध भारती का स्टूडियो स्थित है, यहाँ के तमाम बीच पर जाइए तो मछलियाँ सूखती रहती हैं, तो ये उनकी आजीविका का स्रोत है। और जरा उनके बारे में सोचिए कि जो मछुआरे कई कई दिन तक मछली पकड़ने के लिए अपनी छोटी सी नैया लेकर चले जाते हैं बहुत दूर तक, और कई बार तूफान आ जाता है तो उन तूफानों से लड़ते हैं। तो जब हम समंदर में सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं तो ये इन बातों का भी ख्याल रखें कि हम जब सागर हमें इतना कुछ दे रहा है तो हम भी सागर के लिए कुछ कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है, कि उसकी सुरक्षा साफ सफाई का ख्याल रख सकते हैं।
1: बिल्कुल, और मछली तो वहां पर मिलती मछली पालन भी किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे बहुत ही बहुमूल्य रत्न भी समुद्र से महासागरों से पाए जाते हैं।
0: तेल मिलता है जिससे जो बहुत बड़ा स्रोत है, हम सब
1: बिल्कुल ईंधन का साधन है, और व्यापार और पर्यटन और परिवहन जैसे अनेक कार्य समुद्रों के कारण ही चलते हैं। और इसका जो इतना महत्व होने के बावजूद भी ममता जी आज महासागर संकट में है। प्लास्टिक प्रदूषण, तेल रिसाव, अत्यधिक मछली पकड़ना और जलवायु परिवर्तन समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। समुद्र का बढ़ता जलस्तर तटीय क्षेत्रों के लिए खतरा बनता जा रहा है। यदि हम समय रहते नहीं जाग गए तो इसका प्रभाव पूरी मानव सभ्यता पर नजर आएगा।
0: बिल्कुल, हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखा है कि समंदर, नदियों और तालाब में गजब का आकर्षण छिपा है। ये सब प्रकृति के महत्वपूर्ण उपादान है। रात जब चंद्रमा बजाता है बांसुरी, समुद्र में ही नहीं नदियों तालाब और जहां जहां पानी है वहां उठती है फेनिल हिलोरें और मन की आंतरिक सतह में एक मीठा झरना गुनगुनाने लगता है। क्या बात है, रात चांदनी की जब बात कही तो चांदनी रात में समंदर के किनारे बैठना, समंदर के किनारे सैर करना बहुत सुहाता है। हालांकि रात में समंदर का शोर डराता भी है मन को, लेकिन सुखद भी लगता है।
1: ऐसा लगता है कि वो जब उसके किनारे आप टहल रहे होंगे तो लगेगा लहरें आपको पीछे से घेर लेती है, ऐसा लगता है वो दृश्य।
0: इसी तरह की बात हमारी एक और सखी लिख रही है कि आसमानी रंग को अपने तन पर समेटे हुए सुंदरता को बिखेरता हुआ नजर आता है जो मनमोहिनी का काम करता है। उसकी अपार सुंदरता बरबस ये आकर्षित करती है। दूध सी आती शुभ्र उर्मी जब पैरों से टकराती है तो ऐसा लगता है किसी ने पांव में पायल बांध दी और नूपुर बज उठते हैं। उससे निकलता संगीत मन को गहराई तक छू जाता है। क्या बात है भाई, आज तो हमारी सखियां बड़ी ललित भाषा में ये बातें लिख रही हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, शुक्रिया अदा करते हैं
1: जी। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि महासागर धरती की धड़कन की तरह है जो पूरी पृथ्वी के जीवन को संतुलित बनाए रखते हैं। विशाल और गहरे महासागर न केवल प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि जलवायु को नियंत्रित करने, वर्षा लाने और असंख्य जीवों को जीवन देने का कार्य भी करते हैं। समुद्र की लहरों की मधुर आवाज मन को शांति देती है और हमें प्रकृति की अपार शक्ति का एहसास कराती है। धरती पर जीवन का आधार माने जाने वाले महासागर मानव, पशु पक्षियों और पर्यावरण के लिए अनमोल धरोहर है। इसलिए हमें महासागरों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का संकल्प लेना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी महिमा के महत्व को समझ सके।
0: बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। और मंजरी जी, आपने समुद्र एक संदेश भी देता है, उस संदेश को कभी सुना है? जब हम बहुत ध्यान से समंदर की लहरों को उठती गिरते देखे तो एक संदेश होता है। हम सब ये महसूस करते हैं कि एक बार उठना और गिरना ये इंसान की भी फितरत होती है। तो जब बहुत ऊंचाई पर जाएं तो कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। कुछ इसी तरह की बात हमारे एक श्रोता भी लिख रहे हैं, हमारे सखा हैं ये। इन्होंने लिखा है कि समुद्र की धड़कनों से उसकी अनंत गहराई मनुष्य को जीना सिखाती है। इतनी ऊंची लहरें मन को सुकून तो देती हैं, ये कहती हैं कि जरूरत से ज्यादा, सीमा से ज्यादा ऊंचा उठना भी एक दिन वापस आना बताती है। बहुत सी चीजें हमें देती हैं, लेकिन हम सब जाएं तो वहां स्वच्छता साफ सफाई जरूर रखें। ये एक बात है कि ये कहा जाता है कि जब हम बहुत ऊंचाई तक ये उड़ते हैं लोग, मतलब ऊंचे ख्वाब देखते हैं और ये अपनी जड़ों को, जमीन को भूल जाते हैं, तब ये बात हम कहते हैं कि ज्यादा मत उड़ो, जब गिरोगे तो चोट ज्यादा लगेगी, है ना।
1: जब आप तो ये बात कह रही थी ममता जी, तो मेरी जो सोच थी वो चली गई थी आपके ऊपर कि आप जो साहित्य लिखती हैं, साहित्य की दृष्टि, आपकी जो कलम चलती है, तो उस नजरिए से आपने बहुत बड़ी बात कही थी इसमें कि लहरें ऊपर भी उठाती हैं और नीचे भी गिराती हैं।
0: शुक्रिया मंजरी जी। लेकिन ये जब हम किसी भी जगह जाते हैं
1: जी,
0: तो बजाय सिर्फ मौज

0: पी के गाना बजाना और खाना पीना करने के बजाय हम प्रकृति के उन नजारों को ध्यान से देखें, अपनी आंखों से देखें, उसे महसूस करें, आत्मसात करें, तो बहुत सारी बातें अपने आप समझ में आती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वो हम ही से जुड़ी हुई हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं। इसी तरह हमारे एक साथी भी लिखते हैं कि महासागर प्रकृति की अनमोल देन है, वे केवल पानी का विशाल विस्तार नहीं बल्कि धरती पर जीवन को बनाए रखने वाली शक्ति है। उनकी अथाह गहराई में असंख्य जीवों का संसार बसता है और उनकी लहरें प्रकृति के निरंतर प्रवाह का संदेश देती है। महासागर हमारे मौसम को संतुलित रखते हैं, वर्षा में सहायक होते हैं, मानव जीवन के लिए अनेक संसाधन प्रदान करते हैं। इनकी स्वच्छता और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। यदि महासागर स्वस्थ रहेंगे तो धरती भी स्वस्थ और जीवन से भरपूर रहेगी, और इनको स्वस्थ रखने में हम सभी को ही अपना योगदान देना चाहिए।
0: उफ, इतनी सारी टिप्पणियां हैं मंजरी जी, क्या कहें, लेकिन हम बहुत लंबी लंबी टिप्पणियां हैं तो शॉर्ट में पढ़ देते हैं। दो टिप्पणी एक साथ। महासागर को एक सखा है हमारे लिख रहे हैं, महासागर को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है और दिल की धड़कन, जो इस ग्रह के मौसम, जलवायु और जीवन को नियंत्रित करते हैं। अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो पृथ्वी के गर्भ में एक रहस्यमय धड़कन हर 26 सेकंड में सूक्ष्म कंपन का स्रोत अटलांटिक महासागर की लहरों को ही माना जाता है। महासागर एक विशाल कार्बन सिंक है जो हमारे वायुमंडल से करीब 25% कार्बन डाइऑक्साइड को अवशेषित कर लेता है। और एक हमारे श्रोता हैं, इन्होंने लिखा है कि विविध भारती के सभी को नमस्कार, और एक श्रोता ने लिखा है कि महासागर न केवल पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक हिस्से को कवर करता है बल्कि ये हमारी जलवायु को नियंत्रित करता है, हमारे ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है और ग्रह के जलचक्र को बनाए रखता है। महासागर हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और जीवन के लिए आवश्यक है, ये एक जीवन रेखा है।
1: और एक हमारे साथी और लिखते हैं कि अक्सर ये बात कही या सुनी जाती है कि दिल सागर जैसा विशाल रखिए। सागर जो हमें अपार सहनशीलता या विशाल दृष्टिकोण और निस्वार्थ प्रेम सिखाता है। इस धरती की हर गंदगी अपने में समाकर खुद खारा यानी नमकीन बन जाता है। बदले में कड़ी धूप और गर्मी सहन करते हुए जल से बादल बनाकर बरसात द्वारा हमें मीठा पानी देता है, मतलब खुद जहर पीकर हमें अमृत देता है। जैसे मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसी का जीना है जो।
0: क्या बात है, अब देखते हैं कि आनंद बख्शी साहब ने इस गाने में समंदर के बारे में क्या लिखा है। लता मंगेशकर ने स्वर दिया है और सचिन देवर्मन ने संगीत दिया। बारू

0: बारूद फिल्म का ये गाना था और समंदर के लिए आनंद बख्शी साहब ने लिखा था और सचिन देव बर्मन ने संगीत तैयार किया था।
1: देखिए ना कुछ कहने वाले अरे
0: आपने मुझे बोले ही नहीं थे, काट दिया।
1: देखो यही तो बात होती है ना कि क्या हम
0: तपाक से मतलब ये तपाक से बोलना हुआ लेकिन कई बार जरूरी बात रह जाती है ना तपाक से बोलने पर।
1: बिल्कुल सही बात है, तपाक से इसीलिए कई बार जब ऐसा बोला ना कि तपाक से बोल दिया तो उसका अंजाम भी बहुत गलत हो जाता है।
0: नहीं कई बार सही भी तो हो जाता है,
1: कई बार सही हो जाता है।
0: जैसे अभी हम तो तपाक से बोलने की बात पर हमें बतियाना था तो आपने तो सही किया लेकिन आप घबरा गई।
1: हमें लगा कहीं तपाक बोले तो कहीं वो गलत ना असर पड़ जाए, तो ऐसा कई बार हो भी जाता है कि हम ना चाहते हुए भी बोल जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। हाँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ममता जी कि मतलब वो
0: अच्छी बात बोल देते हैं, कोई जानकारी होती है और वो तपाक से बोल देते हैं कि ये नहीं ये ऐसा था।
1: बिल्कुल, और कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिना सोचे समझे, बस चार लोग खड़े हैं और वो लोग बात कर रहे हैं, मालूम पड़ा आपने बिना सोचे समझे कि उनकी बात का क्या है मतलब है, कहां हमें बोलना नहीं चाहिए कहां बोलना है, वो तपाक से बोल देते, फिर उसका असर जो तीन सुन रहे होते, चार के बीच में आपने चौथे आपने बोल दिया, जो तीन सुन रहे हैं तो उनको बड़ा लगता है अरे ये क्या बात कर दी इसने, मतलब किसी का आप कटाक्ष भी कर देते हैं तपाक से बोलने वाले। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं तो इसका नुकसान भी होता है, लोग गलत समझ सकते हैं, कभी कभी सीधी बात सामने वालों को कठोर या बहुत ही अपमानजनक लग सकती है और कभी कभी रिश्तों में तनाव भी आ जाता है और हर व्यक्ति जो है वो सच सुनने के लिए तैयार भी नहीं होता है ममता जी, और बिना सोच समझ कर कही गई बात रिश्तों में दूरी भी ला सकती है।
0: लेकिन हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है कि मुझे तो तपाक से बोलने की आदत है और मुझे पता है कि अच्छी आदत नहीं है, लेकिन क्या करूं जब कोई गलत करता है तो अपने को मैं रोक नहीं पाती, अपने बातों से चतुर बनने की कोशिश करता है कोई तो मुझसे बोले बिना रहा नहीं जाता है, मैं बोल देती हूँ। भाई कोई गलत बात कह रहा है तो आपको बोलना ही चाहिए तपाक से,
1: बिल्कुल,
0: तो सामने वाले की गलती भी उजागर हो जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है कि बड़ों ने कहा है, कुछ कहावत भी है कि कुछ भी बोलो तो पहले सोच समझ के फिर बोलो, तपाक से कुछ भी बोल जाने से हमारे मुंह से गलत निकल सकता है, किसी से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, किसी को दुख पहुंच सकता है, किसी का हम अपमान कर जाएंगे, सारी हानि हमें ही होगी, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलो, तपाक से मत बोलो।
1: और हमारे साथी लिखते हैं कि तपाक से बोले शब्द तीर बन जाते हैं जो दिलों को बर्बाद करते हैं, जबकि सोच समझ कर बोले शब्द मोती होते हैं जो कभी चुपते नहीं बल्कि सजे हार बनकर रिश्तों को खूबसूरत बनाते हैं। और इसी तरह हमारे साथी और लिखते हैं कि अत्यधिक उत्तेजना व अहंकार में सामने वाले को तपाक से ऐसा कोई आप शब्द कटु शब्द ना बोले जिससे संबंधों रिश्तों में मतभेद कड़वाहट हो जाए, पहले तोले फिर बोले, नम्रता ममता भरे भाव मधुर बोले सभी जन से जिससे प्यार स्नेह बढ़ता है, इन्होंने ये बात लिख करके।
0: और हमारी एक सखी है, इन्होंने कहा है कि कुछ कह देना अक्सर बातचीत में गलतफहमी, विवाद या सामने वाले को ठेस पहुंचाने का कारण बनता है, इसलिए इसे आमतौर पर एक अच्छी आदत नहीं मानी जाती, बिना सोचे बोले गए शब्दों में अक्सर सही संदर्भ की कमी होती है जिससे सामने वाला व्यक्ति

0: आपकी बात का गलत अर्थ निकाल सकता है।
1: और हमारे एक साथी देखिए और भी लिखते हैं कि तपाक से बोलने की आदत हमारे व्यक्ति की विशेषता होती है। जहां लोग दिल की बात बिना लाग लपेट के कह देते हैं, वहीं तपाक से बिना सोचे समझे बोली गई बात जिसमें उतावलापन, रूखापन या दूसरों की बात काटने का उद्देश्य हो, मित्रों, आपसी रिश्तों और कार्यस्थल पर मुश्किलें भी पैदा कर सकती है, लेकिन शिष्टता, संयम और सम्मान के साथ तपाक से बोली गई बात आपको सम्मान के साथ आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व को दर्शाती है।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि जल्दबाजी, अत्यधिक उत्साह या चिंता शामिल है तपाक से बोलने में। इसे एक बातूनी या वाचाल स्वभाव कहा जाता है। इस आदत को सुधारने और कम बोलने की आदत डालने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। सुनने की आदत डालें, दूसरों की बात को ध्यान से सुने और बीच में न काटें। आज तो मंजरी जी ने हमें काटा बीच से, कहा कि तपाक से बोलने के लिए, तो भाई मैं मान गई, चुप हो गई और मैंने कहा कि हाँ क्या कहना चाहती हैं। तो कई बार पते की बात कहने के लिए भी काट दिया जाता है, तो अच्छी बात है कि अगर हम घड़ी की ओर देख रहे हैं कि हमें बहुत सारी बातें करनी है, तो इसलिए एक दूसरे को काटकर अगर बोलते हैं तो वो अपनी जगह पर सही है।
1: बिल्कुल।
0: तो इनका कहना भी सही कि कुछ कहने से पहले 3-5 सेकंड का समय लें, सोच लें और उसके बाद मन को शांत करके बोलें और चिंता में और गुस्से में ना बोलें। और भी बहुत लंबी सी टिप्पणी इन्होंने लिखी है।
1: देखिए, एक बड़ा मजेदार सा संदेश मिला है मुझे। ममता जी लिखते हैं कि तपाक से बोलने की आदत कुछ मर्दों में होती है, लेकिन प्राय महिलाओं में ये आदत होती है, अच्छी तरह एक ऑटोमेटिक मशीन जैसी होती है। इन्होंने लिखा है, पड़ोसी
0: काफी विश्लेषण किया है इन्होंने।
1: देखिए ना, पड़ोसी की पति से लड़ती पड़ोसन के तपाक से बोलने की आदत को ताज्जुब करता हूँ। कभी कभी हमारी भी ऐसी करती है, अब नहीं तो कहकर सब मैं उन्हें तकलीफ क्यों पहुंचाऊं।
0: अच्छा, वैसे झगड़े के वक्त तो शब्द अपने आप फूटते हैं ना, फटाफट
1: तपाक से
0: ऐसे नॉर्मल बातचीत में कई बार लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन झगड़े के वक्त जो लोग बिल्कुल नहीं बोलते हैं, देखा है कि वो भी बहुत तेजी से और फास्ट बोलने लगते हैं।
1: सही बात
0: तो
1: है।
0: ये क्या वजह है? हमें लगता है कि
1: बड़े बैठे होते होंगे इसलिए बोल जाते होंगे।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि तपाक से बोलने या बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत अक्सर बातचीत में खटास डाल देती है। और भी कुछ कहना चाहती हैं?
1: नहीं, अब गीत सुन लेते हैं।
0: सुनते हैं।

0: है।
1: आज नहीं तो कल कह लेंगे, लेकिन आप हम
2: हमें
1: कल
2: आज ही कहना पड़ेगा
1: तुरंत कहना पड़ेगा और तपाक से जी। तो तपाक से बताइए कौन सी रेसिपी तैयार की गई है आज।
2: बस हम तैयार करने वाले हैं मथुरा की आलू की खस्ता कचौड़ी, जिसे आलू की सब्जी के साथ भी खाते हैं और चटनी के साथ भी
1: तो
2: खाते
1: ये
2: हैं।
1: रेसिपी सिर्फ बता रहे हैं, बनाया भी है कभी, बनाती भी है?
2: नहीं, वैसे तो देखिए आलू की कचौड़ी और दाल की कचौड़ी तो सब घर में बनती है, लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ की इसमें क्या खास बात है।
1: अरे आपने समझा ही नहीं, बनाने से मतलब है कि बना के खिलाया जाता है ना,
2: अभी तो
1: सिर्फ बनाया नहीं जाता है।
2: जी वो तो मैं जानती हूँ, आपके इशारे आपकी आंखों की जो चमक थी वो समझ गई थी।
1: तो कौन सा व्यंजन आप बना रही
2: हैं? आलू की खस्ता कचौड़ी बताते हैं।
1: इसकी
2: सामग्री है 2 कप मैदा, 4 बड़े चम्मच तेल या घी मोयन के लिए लेना है, 1/2 छोटा चम्मच नमक, गुनगुना पानी, आलू की ब्रावन के लिए आपको लेना है 2 या 4 उबले आलू लीजिए और हरी मिर्च बारीक कटी हुई 2, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच धनिया दरदरा लीजिए, साबुत धनिया लीजिएगा उसको दरदरा कर लीजिए, और 1/2 छोटा चम्मच हींग लेना है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच अमचूर और नमक स्वाद के अनुसार, और 4 बड़े चम्मच तेल, थोड़ा सा हरा धनिया लेना है, तलने के लिए तेल भी आपको अलग से रखना है। और इसको बनाना है कि सबसे पहले मैदे में नमक मोयन डालकर अच्छी तरह इसको मिला लीजिए, और जब आपके हाथ से दबने लगे तो समझ लीजिए कि मोयन आपका रेडी सही लगा इसमें, और पानी डालकर थोड़ा सा इसको गूंथ लीजिए नरम नरम, और करीब 20 मिनट के लिए आप रखिए। अब आप एक कढ़ाई में तेल गरम करिए, उसमें हींग सौंफ धनिया डालिए, हरी मिर्च डालिए और उबले आलू हाथ से तोड़कर डालें, सारे मसाले नमक डाल करके आप मिला लें अच्छे से, हरी धनिया भी आप इसमें डाल दीजिए, और मिश्रण सूखा और मसालेदार जब हो जाएगा तब आप उसको किनारे रख लें। अब कचौड़ी की जो आटा साना उससे लोइया बनाइए, उसमें आलू का ब्रावन भरिए और इसको आप हल्के से हाथ से दबाकर बेल लें, या फिर आप हाथ हथेली से दबाएं या बेलन से बेलें, और इसको आप सुनहरा सुनहरा धीमी आंच पर आप इसको तल लें, तो ये आपकी आलू की खस्ता कचौड़ियां तैयार हो जाएगी।
1: तो जब भी बनाना हो तो बना सकते हैं, और मंजरी जी बना के लाएंगी तो हमें जरूर खिलाएंगी, हम ये उम्मीद करते हैं। और अब तो हमने माइक्रोफोन पर कह दिया है ये बात,
2: बिल्कुल ये ताली भी नहीं जाएगी
1: अब दाल की खस्ता कचौड़ी कैसे बनाएं ये भी आप जरा सुन लीजिए हमारे सारे श्रोताओं के साथ। दाल की खस्ता कचौड़ी के लिए भरावन के लिए पहले तो सामग्री बता दें, 1/2 कप धुली उड़द की दाल 4-5 घंटे भिगोई हो जो, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच धनिया दरदरा कुटा हुआ और 1/4 छोटा चम्मच हींग, या हींग तो चुटकी भर अंदाजे से डाल सकते हैं, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला 1 छोटे चम्मच से मतलब चुटकी भर, और 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार 2 बड़े चम्मच तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अब भरावन कैसे बनाएं, भीगी उड़द की दाल का पानी निकालकर दरदरा पीस लें, कढ़ाई में तेल गरम करें, हींग सौंफ और धनिया इसमें डालें, अब दाल मध्यम आंच पर भून लें, सारे मसाले नमक डालें, मिश्रण सूखा और खुशबूदार होने तक पकाएं, ठंडा होने दें। अब कचौड़ी बेलें, आटे की छोटी लोई बनाकर बीच में दाल की भरावन भरें और धीमी आंच पर तेल में तलें, इसको आलू की पतली सब्जी और चटनी के साथ खाएं, चाय के साथ भी खा सकते हैं
2: जी।
1: और अब ये गाना सुनें।

0: कहीं दिन कहीं रात फिल्म का गाना था, महेंद्र कपूर की आवाज थी। और अब घड़ी की ओर जरा देखिए, बिल्कुल भी वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

बेचारा बेचारा में आज सेहतनामा।

0: नमस्कार दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के कार्यक्रम में दोस्तों, हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई के सुप्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और फिजिशियन डॉक्टर कुणाल मेहता से। इनसे हम बातचीत करेंगे जिसका विषय रहेगा मधुमेह, कारण और बचाव। डॉक्टर कुणाल मेहता जी, विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार श्रोताओं, मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि मैं विविध भारती के इस माध्यम द्वारा आपसे बात करने का ये मुझे सुंदर मौका मिला है। हमारी जनरेशन वो जनरेशन है जो विविध भारती सुन के ही बड़ी हुई है। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूं, जो विविध भारती सुनते ही बड़ा हुआ हूं, और अभी मुंबई में पिछले 10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं।
0: डॉक्टर साहब, ये तो आपने परिचय दे दिया कि विविध भारती सुनते सुनते हमारी जनरेशन भी बड़ी हुई है। और देखिए, इसमें एक संयोग की बात यह है कि उसी चैनल पर जब आपको बातचीत का मौका मिलता है सुनने वालों से,

0: तो अच्छा भी लगता है
1: जी, बहुत खुशी हो रही है। और ये मेरे लिए एक मीडियम है जहां से मैं इंडिया की पूरी जनता से जुड़ सकता हूं और उनको मेरे विचार पहुंचा सकता हूं और थोड़ा मैं उनको गाइड कर सकता हूं आज के विषय के बारे में।
0: जी, आज का विषय हमने सुनने वालों को बता दिया है, मधुमेह कारण और बचाव। तो डॉक्टर साहब, शुरुआत ऐसे करते हैं कि मधुमेह कई बार डरावना शब्द होता जा रहा है आज के दौर में, खासतौर से आपके पास भी जो मरीज आते होंगे उसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती। पहले होता था कि एक बड़े होने के बाद, आयु वर्ग निकलने के बाद मधुमेह एक रोग होता था, आजकल ये कॉमन सी बात हो गई है और भारत में तो इसका प्रभाव सबलता से बढ़ता जा रहा है। तो हम जानेंगे कि मधुमेह के प्रकार किस तरह से हैं और आप विस्तार से क्या कहना चाहेंगे।
1: जी, मधुमेह जो बीमारी है सबको पता है, डायबिटीज मेलिटस जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं, ये आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है और कहने में दुख होता है कि इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनते जा रहा है और यह बन गया है। मधुमेह के मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस कहते हैं, और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस जो कि एडल्ट्स में होता है, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। तो टाइप 1 जो डायबिटीज होता है उसमें ये इंसुलिन की टोटल कमी होती है, पैंक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाते, इसके लिए ये जो मरीज होते हैं ये पूरी तरह इंसुलिन पे डिपेंडेंट होते हैं और इनमें जो है टैबलेट्स हम नहीं दे सकते, इनका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन से किया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज जो है, जो कॉमनली पहले एडल्ट्स में होता था लेकिन आजकल काफी यंग लोगों में पाया जा रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जैसे इंसुलिन है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ता है, ये सब फैक्टर्स के कारण इंसुलिन जो है शरीर में उसका प्रभाव कम हो जाता है, उसका असर कम हो जाता है, जिसके कारण शुगर बढ़ने लगता है। और एक प्रकार डायबिटीज होता है जो कि हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस, जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं में पाया जाता है। महिलाएं प्रेगनेंसी के पहले उनका शुगर नॉर्मल रहता है लेकिन प्रेगनेंसी में कभी कभी हार्मोनल चेंजेस के कारण उनमें डायबिटीज शुगर बढ़ जाती है, डायबिटीज पाया जाता है, जो कि डिलीवरी के बाद 50-60% महिलाओं में उनका शुगर बिना ट्रीटमेंट के नॉर्मल हो जाता है, कुछ महिलाओं में ये शुगर आगे कंटिन्यू रहता है तो उनको डायबिटीज का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है।
0: देखिए, ये क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करके आपने समझा तो दिया कि टाइप 1, टाइप 2 और अदर प्रकार के जो मधुमेह रोग होते हैं वह किस प्रकार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये एक भ्रम सा पैदा हो गया, हम कभी देखते हैं कि बहुत ही मोटा व्यक्ति यदि हमारे समक्ष है तो हम एक एंटीसिपेशन कल्पना कर लेते हैं इसको डायबिटीज होगा या होने वाला है, ऐसा क्यों होता है?
1: सी, डायबिटीज मोटापे से बहुत रिलेटेड है, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम बोलते हैं जिसमें है ओबेसिटी, डिसलिपिडेमिया और हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा। मोटापे के कारण शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल ही मतलब चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है, ये सब के कारण इंसुलिन का सिक्रीशन जो है उस पर असर होता है और जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है मतलब जो इंसुलिन का एक्शन है वो कम हो जाता है, जिसके कारण कि शुगर कंट्रोल में तकलीफ होती है और शुगर बढ़ जाता है।
0: अगर डॉक्टर साहब ये पूछा जाए कि जो आपके यहाँ मरीज आते हैं और सबसे पहली नजरिए वाली बात होती है तो आप कैसे पहचान जाते हैं कि मधुमेह का टाइप 1 का रोगी बन चुका है?
1: टाइप 1 के जो रोगी होते हैं वो नॉर्मली छोटे बच्चे रहते हैं, जिसको हम जुवेनाइल डायबिटीज भी पहले कहते थे। ये जैसे कि मैंने कहा, इसमें इंसुलिन की पूरी डेफिशिएंसी होती है, इसलिए ये बच्चे इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं। मधुमेह के लक्षण वही है, वजन कम होना, भूख ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना, रात में पेशाब जाना पड़ता है काफ़ी बार, 4-5 बार, इन्फेक्शन होना या घाव नहीं भरना, ये सारे लक्षण हैं। और जब सीवियर हो जाते हैं, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो शरीर में केमिकल उथल पुथल होती है, जिसके कारण कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, डिहाइड्रेशन होता है, पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। और जब हम शुगर चेक करते हैं तो पता चलता है शुगर 500 एंड अबव है।
0: ओहो,
1: इतना ज्यादा शुगर होता है।
0: वैसे नॉर्मल जो यूनिट वैल्यू है वो क्या है शुगर की?
1: नॉर्मल शुगर हम बोलते हैं फास्टिंग जो है वो 100-110 के अंदर होती है, और जो पोस्ट लंच मतलब दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद की शुगर होती है वो 130 के अंदर होनी चाहिए।
0: अच्छा,
1: जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन है जिन्होंने गाइडलाइन सेट की है वो बोलते हैं कि सुबह खाली पेट 12 घंटे फास्टिंग करने के बाद का जो शुगर होता है वो 126 या उससे ज्यादा हो तो उसे हम डायबिटीज लेबल कर देंगे।
0: अच्छा, यहाँ पर एक

0: बात हम आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सारे जो हमारे लोग होते हैं उनको पता नहीं होता है वो कि ये जो बात होती है कि भाई अचानक कोई आदमी महसूस करता है कि मुझे शुगर जैसा लग रहा है या बहुत भूख लगती है फिर भी वज़न कम होता जा रहा है, तो अगर मान लीजिए कि उसे शुगर नहीं है लेकिन जांच के पहले या कुछ घंटों के पहले उसने मीठा कुछ ज़्यादा खा लिया है तो क्या जांच प्रभावित हो जाती है?
1: नॉर्मली अगर जांच के पहले कुछ मीठा खा गया है तो उसमें थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, बट जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स है या जो प्री डायबिटिक्स नहीं है उनमें इसका असर नहीं होगा। बॉडी की क्षमता ऐसी है कि वो उसको हजम कर लेगी,
0: अच्छा
1: तो इसलिए प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट याद रखिए, जब भी हम शुगर टेस्टिंग बोलते हैं फास्टिंग में, तो आपको 12 घंटा फास्टिंग रखना बहुत ज़रूरी है।
0: जी हाँ भाई, देखिए चर्चा हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर चल रही है, थोड़ा सा विराम हमें देना होगा और एक संगीतमय वातावरण को गुंजायमान करना होगा। हम चाहेंगे अपनी पसंद का कोई एक गाना बताइए आप।
1: श्रोताओं को मैं, ये मेरे दिल का बहुत ही करीबी गाना है, ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरी प्रिय वाइफ डॉक्टर प्रीति मेहता, जो कि एक रूमेटोलॉजिस्ट है और हमेशा मेरे साथ रही है मेरे इस जर्नी में, क्योंकि मैं फैमिली को बहुत कम समय दे पाता हूँ मेरी प्रैक्टिस के कारण, इमरजेंसीज के कारण, बट शी इज़ ऑलवेज देयर। सो गाने का नाम है तू मिले दिल खिले, फ्रॉम द मूवी क्रिमिनल।
0: हम सुनवा रहे हैं क्रिमिनल फिल्म का बहुत ही रोमांटिक गाना है।

0: तू मिले दिल खिले। देखिए बहुत ही उम्दा गाना सुनवाया आपने। और अब जब मरीज आपसे मिलते हैं, टाइप वन के भी मिलते हैं, टाइप टू के भी मिलते हैं, तो ये डिफरेंट या ये भिन्नता या विविधता या ये अंतर कैसे आप परीक्षण से करते हैं टाइप टू मरीज है ये?
1: जैसे कि मैंने पहले बताया, टाइप वन कॉमनली बच्चों में होता है, तो जल्दी जुवेनाइल डायबिटीज होता है, यंग बच्चों में होता है, और इसके सिम्टम्स जो डायबिटीज़ के हैं वही है, लेकिन ये बहुत बार इनको इमरजेंसी में लाया जाता है और हम चेक करते हैं तो शुगर ज़्यादा होती है, या फिर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, या इनकी जो मदर है उनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ रहा हो, तब हम सस्पेक्ट करते हैं कि बच्चे को डायबिटीज़ हो सकता है, या बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, बच्चा बहुत खा रहा है फिर भी वज़न नहीं बढ़ रहा है, रात में बार बार पेशाब उठ रहा है या पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है यंग बच्चों को, तो डायबिटीज हम सस्पेक्ट करते हैं।
0: तो ये परीक्षण तो कुछ ब्लड से ही होता है?
1: ये ब्लड से ही होता है, जिसमें कि हम फास्टिंग और पोस्ट लंच शुगर करते हैं। एक और डायबिटीज के लिए टेस्ट होती है जिसको हम HbA1c बोलते हैं। ये टेस्ट 3 मंथ्स एवरेज होता है डायबिटीज़ का, जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल में 6 या 6.5 से कम होती है इसकी मात्रा। अगर इससे ज़्यादा हो तो डेफिनेटली ये डायबिटीज़ का इंडिकेटर है, और अगर ये ज़्यादा है इसका मतलब पेशेंट को डायबिटीज़ है।
0: अच्छा, सपोज़ पहली जो परीक्षण वाली बात होती है, टेस्ट होती है, वो ब्लड टेस्ट जाहिर कर रही है कि ये डायबिटीज़ का मरीज़ है, तो अल्टरनेट इमीडिएट ट्रायल ले लेते हैं आपकी, एक बार और टेस्ट करवा लेते हैं।
1: अगर पेशेंट का क्लिनिकल कंडीशन, पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं और ब्लड रिपोर्ट्स, हम पूरा पिक्चर देखते हैं ना कि सिर्फ रिपोर्ट, तो पेशेंट के अगर सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री है और रिपोर्ट्स भी मैच हो रही है, तो हम सीधा ट्रीटमेंट पे आते हैं।
0: तो कभी कोई ऐसा मौका आपको किसी मरीज के साथ मिला कि आपने अल्टरनेट ट्रायल ली हो और बाद में पता चला हो कि डायबिटीज नहीं था?
1: जी हाँ, जब हमें क्लिनिकली मैच नहीं होता है तो, या हमें क्लिनिकली डाउट होता है कि ये रिपोर्ट पेशेंट के सिम्टम से मैच नहीं कर रही, तो जैसे कि मैंने कहा HbA1c टेस्ट होता है जो 3 महीने का, पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर हमें बताता है, तो अगर ये 3 महीने का शुगर है वो खाने पीने से अल्टर नहीं होगा, क्योंकि ये पास 3 महीने के शुगर लेवल का रिकॉर्ड है, तो अगर ये HbA1c ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये डायबिटीज़ का संकेत है। इसके अलावा 2-3 और टेस्ट होते हैं, जो कि एक सीरम इंसुलिन लेवल होता है, जो इंसुलिन की मात्रा होती है ब्लड में, उसे हम टेस्ट करते हैं, अगर वो लेवल लो है तो भी हमें डायबिटीज़ का इंडिकेटर मिलता है, और एक सी पेप्टाइड लेवल होता है जो भी हम टेस्ट करते हैं ऐसे स्पेशल कंडीशंस पे, जब हमें डाउट होता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है कि नहीं।
0: डॉक्टर साहब, ये तो आपने परीक्षण की बात बता दी और कंफर्म कर दिया कि डायबिटीज़ का मरीज़ ये रोगी है और उसका इलाज

0: आवश्यक है, तो वो इलाज के लिए मान लीजिए इमीडिएट आपकी रिपोर्ट बताती है कि हाईएस्ट शुगर है, तो आप उसको एडमिट करने की सलाह देते हैं या घर पर ही इलाज चलता है?
1: एडमिशन का जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत ही सिलेक्टिव है। अगर शुगर ज़्यादा है तो इसको इमीडिएट एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर डायबिटीज़ के कारण कुछ कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि मैंने बोला डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जिसमें कि सांस फूलता है, बॉडी में केमिकल उथल पुथल होकर एसिड का लेवल बढ़ जाता है, देर इज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये कंडीशन में एडमिशन मैंडेटरी है। बट अगर सिर्फ शुगर ज़्यादा है, पेशेंट कंफर्टेबल है, पेशेंट का बीपी बाकी वाइटल स्टेबल है, तो हम इसको ओपीडी बेसिस पे मैनेज कर सकते हैं।
0: क्या एक सामान्य आदमी जिसको डायबिटीज नहीं है, मधुमेह बिल्कुल नहीं है, लेकिन अचानक किसी कारण से कुछ खाद्य पदार्थों की वजह से अगर शुगर लेवल क्षणिक रूप से, आंशिक रूप से, त्वरित रूप से उसका बढ़ गया है और उसने टेस्ट करवा लिया है, तो वो तो माना नहीं जाएगा कि वो डायबिटीज का रोगी है, क्योंकि लक्षण उसमें नहीं है। ये आप देखते हैं, पूरा हिस्ट्री मालूम पड़ रहा है। कई मरीज ऐसे भी आते होंगे कि वो शक पैदा कर लेते हैं कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है।
1: जो मरीज मेरे पास रिपोर्ट लेके आते हैं, उनमें जैसे कि मैंने कहा, पूरा डिटेल क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं हम पहले, कि पेशेंट के सिम्टम्स मैच हो रहे हैं क्या, पेशेंट्स को तकलीफें क्या हैं, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं हम, लाइफस्टाइल डाइट का हिस्ट्री लेते हैं, साथ ही अल्कोहल स्मोकिंग कुछ आद्य उनको एडिक्शंस है इसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद हम रिपोर्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके रिपोर्ट पे आते हैं। तो जब हम पूरा पेशेंट एज अ होल देखते हैं और मुझे यदि डाउट होता है कि नहीं ये रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है या पेशेंट ने कुछ खाने पीने में परहेज नहीं किया है और तुरंत शुगर चेक किया है, इसके लिए शुगर ज़्यादा है, तो हम पेशेंट से वापस एक बार रिपोर्ट चेक करने बोलते हैं और जो HbA1c है वो टेस्ट करने को बोलते हैं, उससे हमें आइडिया होता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है कि नहीं।
0: ये बहुत ही अच्छा परीक्षण आप करते हैं ताकि भ्रम भी दूर हो जाता है और खामखा एक जो टेंशन हो जाता है,
1: राइट, पेशेंट्स को बहुत टेंशन होती है।
0: अब देखिए यहाँ पे स्थिति ऐसी बन रही है कि हमारी जो बातचीत है वो तनावपूर्ण ना हो जाए, उसको हल्का फुल्का करना होगा और एक गाने का सिलसिला शुरू करना होगा।
1: ये गाना जो है दिल चाहता है मूवी से है, इसका टाइटल सॉन्ग है, ये मेरे दोस्तों को डेडिकेट करना चाहूँगा जो मेरे MD के बैचमेट्स है, मेमोरेबल टाइम हमने बिताया है, आज भी हम मिलते हैं, ये गाना मैं उनको डेडिकेट करना चाहूँगा।
0: सुनते हैं।

0: दिल चाहता है, दिल तो बहुत चाहता है कि गाना लगातार चलता रहे, सुनते रहें, लेकिन गाने की भी एक अवधि है, हमारे कार्यक्रम की भी एक पाबंदी है। अब अगला सवाल जो आज का, दोस्तों हम बता दें कि आज की चर्चा का विषय ये है मधुमेह, कारण और बचाव। डॉक्टर साहब, मधुमेह की जो प्रकार वाली बात आपने बताई, परीक्षण वाली बात बताई, अब हम जानेंगे कि बच्चों में जो मधुमेह हो जाता है तो वो कितने उम्र के छोटे बच्चों से शुरुआत होती है और कहाँ तक इसकी सीमा होती है, और ये विस्तार से हम जानना चाहेंगे।
1: देखो, बच्चों में जो डायबिटीज होता है, कॉमनली हमने जैसे बोला कि ये टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस होता है, जिसको हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस होता है। इसकी कोई उम्र नहीं है, 3 साल में भी हो सकता है, 6 साल में भी हो सकता है, 10 साल में भी हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बोला, इसके लक्षण हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए, और अगर इन में से कुछ भी सिम्टम्स दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर को या पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। फिर वो आगे जांच करके बता सकते हैं कि मरीज को डायबिटीज़ है कि नहीं, और उसकी सही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पर यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ में हमारे पास बहुत सारी टैबलेट्स है, दवाइयाँ हैं, अनफॉर्चुनेटली टाइप 1 डायबिटीज़ में हमें सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। बहुत ही दुख होता है कि छोटे बच्चों को हमें सुई का प्रिक डेली लगाना पड़ता है, बट अनफॉर्चुनेटली आज तक, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है जिससे हम टैबलेट या गोली से इसको ठीक कर सके।
0: हाँ,
1: तो इसमें जो है इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं दिन में 2 बार या 3 बार, डिपेंडिंग कि पेशेंट की इंसुलिन वैल्यू क्या है। साथ ही खाने के परहेज करना पड़ता है, और सेहत का ध्यान रखते हुए, क्योंकि बच्चा है, बढ़ती उम्र है, तो उसका सेहत भी हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ग्रोथ हैम्पर होगी, मेमोरी हैम्पर होगी।
0: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि मेमोरी पे भी फर्क पड़ सकता है, और आपने 3 साल की जो बच्चों का उदाहरण दिया है, एक पढ़ाई की हल्की सी शुरुआत हो जाती है वहाँ पर आज के दौर में, पहले तो देर से पढ़ते थे बच्चे, तो क्या उसकी ग्रोथ रेट में कुछ ऐसा फर्क पड़ता है कि जैसे जैसे इसका विकास हो रहा है तो डायबिटीज़ की वजह से उसमें कहीं कुछ कमी आती है?
1: देखो, डायबिटीज़ की वजह से शरीर में बहुत सारे प्रभाव पड़ सकते हैं, ग्रोथ हैम्पर होती है। जनरली ये बच्चे थिन बिल्ड होते हैं, इनका वज़न बराबर नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं, इनको रेगुलर इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, और इन्फेक्शंस ये बच्चे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं अगर इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो। डायबिटीज़ इट्सेल्फ कैन कॉज लो इम्यूनिटी, और अगर पोषण और सही न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दिया जाए, क्योंकि डायबिटीज़ में खाने में काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस आती है, मीठा नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, जूस नहीं पीना है, फ्रूट्स में भी रेस्ट्रिक्शंस है, मिठाई नहीं खानी है, तो इनकी जो ग्रोथ पे है, अगर हम न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दें तो उसके कारण यस डेफिनेटली ग्रोथ हैम्पर हो सकती है, जिसके कारण मेमोरी पे भी असर पड़ सकता है।
0: ये बात तो आपने बड़ी गंभीरता से इसको महसूस किया है, कई आपके पास भी ऐसे बच्चे आते होंगे और आपने इलाज किया होगा, जाहिर है।

0: लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि 3 से लेके जब शुरुआत होती है तो क्या इसकी जो नींव है या फाउंडेशन गर्भावस्था में ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बच्चे में डायबिटीज आ जाता है?
1: जरूरी नहीं है कि बच्चे को एट बर्थ डायबिटीज हो। जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जेनेटिक, एनवायरमेंटल, बट यदि उनके पेरेंट्स या फैमिली में डायबिटीज का हिस्ट्री है तो काफ़ी चांस है कि बच्चे में डायबिटीज़ आ सकता है, बट ज़रूरी नहीं है 100% बच्चे को डायबिटीज़ होगा। तो जब भी बच्चे को लक्षण आए तभी चेक किया जाए, या ऑब्वियसली अगर दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो बच्चे का टेस्टिंग करना चाहिए।
0: अच्छा, परीक्षण के बाद यदि पता चलता है कि बच्चे को टाइप 1 नहीं है और कुछ ऐसे डायबिटीज़ के लक्षण हैं जो सामान्य होते हैं शुरुआत, तो क्या गोलियों से काम नहीं चल सकता है?
1: टाइप 1 डायबिटीज़ में हम गोलियां नहीं दे सकते। अगर उसके लिए मैंने जैसे बोला, हम लोग टेस्टिंग करेंगे, इंसुलिन लेवल्स देखेंगे, सी पेप्टाइड लेवल्स देखेंगे, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे बच्चे को डायबिटीज़ है कि नहीं। बट अगर बच्चा है, उसको टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन है। हम कोई दवा टैबलेट बच्चों में नहीं दे सकते। एडल्ट्स में जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, उसमें इंसुलिन इज़ द लास्ट ऑप्शन। बहुत बेहतरीन दवाइयाँ मार्केट में हैं, एलोपैथी ऑब्वियसली, बट जिससे हम डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है।
0: डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ है और इंसुलिन एक आवश्यक स्रोत बन जाता है कि ये लेना ही है उसको, तो ये तो फिर जीवन भर के लिए उसके साथ रहेगा।
1: जी, सही बात है। इसी बात का हमें दुख होता है कि इंसुलिन जो है लाइफ लॉन्ग बच्चों को लेना पड़ेगा। बड़े होते हैं तभी भी उनको इंसुलिन ही लेना पड़ेगा, बिकॉज उनके शरीर में इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी है एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन। दैट्स व्हाई इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं।
0: लेकिन युवा अवस्था तक अगर वो बच्चा आता है, शादी ब्याह की बात होती है, मेल हो या फीमेल हो, तो उसमें कुछ डिसफंक्शन की बात रहती है, कुछ कमी सी लगती है, दुर्बलता आती है?
1: डायबिटीज़ में सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, बट अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें, सही न्यूट्रिशन रखें, तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, आपकी फर्टिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा।
0: अच्छा, ऐसे कोई मरीज आपके पास आते हैं जिसकी आयु 15 से 20 साल हो, युवावस्था कही जा सकती, किशोरावस्था, टीनेजर, उनको डायबिटीज़ हुआ हो अपनी लाइफस्टाइल बिगड़ने के कारण, तो क्या वो, और मान लीजिए फैमिली हिस्ट्री में किसी को नहीं है, तो वो क्योरेबल है?
1: डायबिटीज़ जो है इसका कोई क्योर नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। हाँ, प्री डायबिटिक कंडीशन होती है जिसको हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं, मतलब उनका शुगर जस्ट नॉर्मल रेंज के बाहर है, या ये वो पेशेंट्स है जिसको हम अगर सही लाइफस्टाइल दे, उनका डाइट कंट्रोल करें, उनको फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करें वो पेशेंट्स, तो उनका शुगर कंट्रोल में रह सकता है, उनको कोई दवा की आवश्यकता नहीं है। आजकल जो हम देख रहे हैं अर्बनाइजेशन, ये बहुत ही भयानक बीमारी है बच्चों के लिए, बिकॉज बच्चे काउच पोटैटोज बन रहे हैं, सोफा पे बैठ के टीवी देखना, घंटों मोबाइल में घुसे रहते हैं। हमारे जब हम छोटे थे तब हम बाहर खेलने जाते थे, मैदानों में आउटडोर गेम्स खेलते थे, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, खोखो हो, ये सब खेलते हुए हम बड़े हुए। लेकिन आज के अगर हम यंग जनरेशन देखें तो वो कंटिन्यूसली मोबाइल में घुसे रहते हैं, या फिर प्ले स्टेशन है, टीवी है, इंटरनेट है, तो इसके कारण उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। आउटडोर जो गेम्स रहते हैं आजकल बहुत कम खेलते हैं, जिसके कारण ओबेसिटी इज ऑन द राइज। बहुत सारे यंग बच्चे हैं जिनको जो ओबेसिटी के शिकार है, जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, वजन, मोटापा जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत बढ़ रहा है, और ये सब का असर डायबिटीज़ की तरफ उनको ले जा रहा है। उनको युवा अवस्था में 20, 25, 30 साल में डायबिटीज़ हो रहा है, इसके कारण डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस भी आगे बढ़ के उनको होने वाली है।
0: ये बहुत एक चेतावनी भरी बात आपने कही है, कॉम्प्लिकेशंस। इस बिंदु को लेकर हम प्रश्न आपसे पूछेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपकी पसंद का एक गाना सुनना चाहेंगे यहाँ पर।
1: ये जो गाना है ये दिल के बहुत करीब है, और ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरे पेरेंट्स को। तो तारे ज़मीं पर का ये बहुत ही उम्दा सॉन्ग है माँ, ये मैं मेरी माँ को डेडिकेट करना चाहूँगा।
0: बहुत ही इसमें डिफाइन करने वाली बात नहीं है, सिर्फ एहसास मात्र है। आइए सुनते हैं तारे जमीन पर फिल्म का ये गाना।

0: गाना तो आपने बहुत ही इमोशनल सुनवा दिया। ये देखिए, ममत्व से बढ़कर कोई एहसास नहीं और कोई इमोशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब किसी को मधुमेह हो जाता है, वो आपके पास आता है, तो एक तारतम्य आपका जुड़ जाता है, एक सिंपैथी सी हो जाती है कि इतनी कम उम्र में बच्चों को हो गया। लेकिन जब बड़ों को डायबिटीज़ हो जाता है या वो उसके शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे मरीजों के बारे में क्या कारण आप समझते हैं कि हो जाता है?
1: इसके कारण मल्टीफैक्टोरियल है, बहुत सारे कारण हैं। एक है जेनेटिक, जो फैमिली से आता है। आपकी फैमिली में अगर हिस्ट्री है तो आप डायबिटीज़ के लिए प्रोन है। ज़रूरी नहीं कि फैमिली में हिस्ट्री है तो आपको डायबिटीज़ होगा, बट यस, आप नॉर्मल आदमी जिसके पेरेंट्स को डायबिटीज़ नहीं है या जिसके जीन्स में डायबिटीज़ नहीं है, उससे आप रिस्क पे है, उससे ज़्यादा रिस्क आपको है डायबिटीज़ होने की। आजकल जो उससे ज़्यादा बीमारी जो है आजकल, वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम ओबेसिटी। डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ ओबेस पेशेंट्स में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। जो पेशेंट फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जो काउच पोटैटोज है, जिनकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, और जो अल्कोहल या स्मोकिंग के आदि है, ये पेशेंट्स में डायबिटीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज डायबिटीज़ जो है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, स्पेशली जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो इसके कारण अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, अगर आप सही टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी या कोई भी प्रकार का एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, या आप स्ट्रेस ले रहे हैं, मुंबई की लाइफ में स्ट्रेस तो होना ही है, बट आजकल गांव में भी हम देख रहे हैं जो युवा है, आज की जनरेशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, छोटी छोटी बातों पे टेंशन आ जाता है उन्हें, तो ये सब डायबिटीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं। आगे जाके ये पेशेंट्स, ये मरीज़ को डायबिटीज़ हो सकता है।
0: डॉक्टर साहब, एक फैमिली हिस्ट्री की बात आपने की, अनुवांशिकता की बात की, जो हेरिडिटी कैरेक्टर होता है, तो ये आपके पास इस तरह के भी मरीज देखने को मिलते होंगे आपको, कि पिता को था लेकिन 3 भाई या बहन हैं, उसमें से केवल एक को ही हुआ है, 2 को नहीं हुआ है।
1: डायबिटीज़ में फैमिली हिस्ट्री डेफिनेटली होती है, बट ज़रूरी नहीं है कि फादर या मदर को या दोनों को डायबिटीज़ है तो सभी बच्चों को डायबिटीज़ होगा। ये उस इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल और जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, रेगुलर एक्सरसाइज करे, बैलेंस डाइट रखे और स्मोकिंग अल्कोहल से दूर रहे, तो चांस है कि उसको डायबिटीज़ नहीं हो।
0: ये बात तो आपने बड़ी सुधार की कही है कि कभी अच्छा, इसमें एक सेंटेंस आपने कहा था, स्ट्रेस या तनाव या अवसाद, इसको अलग अलग रूप में लेते हैं लोग, वो हर किसी को है।

0: आपको है और मुझे भी है, कहीं ना कहीं हम इससे बचे नहीं हैं, लेकिन उसकी मात्रा पे डिपेंड करता है कि वो आप कितना गहराई से उसको महसूस करते हैं,
1: सही
0: तभी
1: बात,
0: इसके शिकार बनते हैं। कितना सहमत हैं आप?
1: ये एक बिल्कुल सही बात बोली। देखो जैसे कि मैंने कहा, अर्बनाइजेशन जो आजकल हमारी लाइफस्टाइल है, भागदौड़ वाली मुंबई में जो हम भागदौड़ करते हैं, यहाँ से वहाँ ऑफिस जाओ, यहाँ आओ, इधर जाना है उधर जाना है, तो लाइफस्टाइल जो हमारी है पूरी तनावपूर्ण है। ऑफिस में वर्क है, घर पे स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, कि जो युवा है गाँव में भी, जो रूरल एरियाज है वहाँ पर भी स्टडीज है जो बताती हैं कि गाँव में भी जो स्ट्रेस है वो लेवल काफ़ी बढ़ गया है युवाओं में। स्ट्रेस से बचना नामुमकिन है, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो आदमी कितना स्ट्रेस ले कितना नहीं ले। मैं तो मेरे पेशेंट्स को हमेशा यही कहता हूँ, भगवान ने हमको दो कान दिए हैं, एक कान से सुनो दूसरे से बाहर लो, बीच में जो दिमाग है उसको बेचारे को टेंशन मत दो, उसको छोड़ दो।
0: जी
1: क्योंकि टेंशन से ना सिर्फ डायबिटीज के और हम बढ़ावा दे सकते हैं, इससे और भी सारी काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एसिडिटी है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है।
0: ये आपने इतना गंभीर स्रोत बताया है कि मुझे एक प्रश्न यहाँ करना पड़ेगा सुनने वालों की ओर से, कि आप इतना इलाज करते हैं और एक जो प्रौढ़ व्यक्ति है उसका अगर मधुमेह नियंत्रण में न आया, तो न आने के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताइए
1: जी। डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और डायबिटीज को कंट्रोल में नहीं रखे तो काफ़ी सारे शरीर के जो पुर्जे हैं उन पे नुकसान हो सकता है। डायबिटीज को हम इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंट किलर
0: जी,
1: ये अंदर ही अंदर शरीर को खोखला कर देता है, और जब 10 साल 15 साल आदमी को डायबिटीज़ होता है, कंट्रोल में नहीं रहता है, तब इसके कॉम्प्लिकेशंस आना शुरुआत होती है। लेकिन जब कॉम्प्लिकेशंस सेट इन हो जाते हैं तो काफ़ी देर हो चुकी होती है, काफ़ी इसके कारण मोर्टैलिटी और मॉर्बिडिटी होती है। डायबिटीज़ जो कॉम्प्लिकेशंस है ये माइक्रोवैस्कुलर और मैक्रोवैस्कुलर बोलते हैं। सरल भाषा में कहा जाऊँ तो शरीर के सभी अवयवों पे इसका असर होता है, बुरा असर। आंखों में हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, जिसमें जो आंख का पर्दा है जहाँ पे इमेज बनती है उसे डैमेज होता है, पेशेंट्स को आगे जाके दिखना बंद हो सकता है। डायबिटिक पेशेंट्स में कैटरैक्ट्स बहुत जल्दी होते हैं, जिसको हम मोती बिंदु कहते हैं, तो ये पेशेंट्स को कम उम्र में कैटरैक्ट होता है, ऑपरेशन से ये सही हो सकता है, बट अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी बढ़ गया तो इसके कारण उनको दिखना बंद हो सकता है। फिर डायबिटीज से किडनी पे प्रभाव पड़ सकता है, जिसे हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, जिससे कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है, किडनी खराब हो सकती है, और आगे जाके ये पेशेंट्स डायलिसिस पे भी लैंड अप हो सकते हैं, इतना गंभीर रूप से डायबिटीज़ का असर होता है। तीसरा असर डायबिटीज़ का होता है हार्ट पे, जिसमें हार्ट अटैक जो है ये हो सकता है लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ में। स्पेशली हार्ट अटैक उन पेशेंट्स में होता है जिनको ओबेसिटी है, जिनको फैमिली हिस्ट्री है, जिनका कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी की मात्रा ज़्यादा है। तो हम पेशेंट्स को, जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है, साथ में ब्लड प्रेशर है और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी है, ये पेशेंट्स बहुत ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिनको हार्ट अटैक आ सकता है। इसके अलावा डायबिटीज़ का ब्रेन पे भी असर हो सकता है, बिकॉज डायबिटीज़ एंड कोलेस्ट्रॉल हैंड इन हैंड चलते हैं, तो ये पेशेंट्स को लकवा यानी पैरालिसिस भी हो सकता है। डायबिटीज़ में न्यूरोपैथी होती है, जिसमें हम हाथों में पैरों में झंझनाहट होती है और आगे जाके तलियों में और हाथ के जो पंजे हैं उसमें जलन होती है, ये जलन बहुत सीवियर हो सकती है और इसके कारण पेशेंट्स को बहुत तकलीफ होती है, रात की नींद भी डिस्टर्ब होती है।
0: हमने ये भी मरीजों में देखा है, पाया है, कि आपने हाथों की जो जलन बताई है, पैरों की पगतलियों में जो ऐसा होता है कि ऑपरेशन तक करना पड़ता है।
1: डायबिटीज़ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट। जैसे कि मैंने बताया, न्यूरोपैथी में क्या होता है कि इनकी जो नर्व्स है वो कमज़ोर हो जाती है, इनके सेंसेशन जो है वो चले जाते हैं, इसलिए ये पेशेंट्स को पैरों में सेंसेशंस नहीं होता है। काफ़ी बार ये होता है कि पैरों में ज़ख्म हो गई, लेकिन पेशेंट्स को पैरों में सेंसेशन नहीं होने के कारण ये ज़ख्म बढ़ता जाता है, और डायबिटीज़ के जो मरीज़ है ये काफ़ी बार अपने फुट चेक नहीं करते हैं। इसलिए हम हमेशा मेरे पेशेंट्स को मैं इंस्ट्रक्शंस देता हूं कि डेली बेसिस पे एक बार एटलीस्ट दिन में अपना फुट इंस्पेक्ट करना चाहिए, और फुट वेयर जो है वो प्रॉपर फुट वेयर होनी चाहिए और फुट इंस्पेक्शंस होना चाहिए। तो ये जो डायबिटिक फुट है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस होके इन्फेक्शन हो सकता है, और ये इन्फेक्शन स्प्रेड होके हमें काफ़ी बार एम्पिटेशन

0: भी करना पड़ता है, मतलब पैर को काटना पड़ता है। वो लेवल हम डिसाइड करते हैं कि इन्फेक्शन कहाँ तक फैला है, बिलो नी होता है, बिलो एंकल, अबव एंकल होता है, तो डिपेंडिंग, या कभी कभी सिर्फ एक उंगली काटनी पड़ सकती है। तो इतना भयानक ये कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट।
1: लेकिन यहाँ आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उसमें मटेरियलिस्टिक ढंग से देखें, तो प्लास्टिक का चप्पलों का उपयोग कर सकते हैं या पूरा जूता और मोजा बंद करके पहनते हैं तो मॉइस्चराइजेशन होता है, तो उस पैर की अवस्था को कैसे रखा जाना चाहिए?
0: नहीं, डायबिटिक फुट केयर में यही है कि आप अपने फुट क्लीन और ड्राई रखें। यू कैन वेयर सॉफ्ट चप्पल्स, आजकल मार्केट में भी स्पेशल डायबिटीज़ फुटवेयर आती है जो आप पहन सकते हैं। जो पेशेंट्स में डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन है या डायबिटिक फुट है या कभी कभी फ्लैट फुट होता है, उनके लिए स्पेशल फुटवेयर भी आते हैं। न्यूरोपैथी पेशेंट्स के लिए भी स्पेशल फुटवेयर है। लेकिन जो आम जनता है जिनको डायबिटीज़ नहीं है, उनको हम ये सलाह देते हैं कि आप कंफर्टेबल फुटवेयर पहने, ज़्यादा टाइट शूज़ नहीं पहने, और घर पे आते ही पैरों को खुला रखें, उनको हमेशा डेली बेसिस पे इंस्पेक्ट करें।
1: इसका मतलब थोड़े समय के लिए जब बहुत सारी बंदिश हो जाती है तो उसको आपको थोड़ा हवा के रूप में रखना चाहिए, थोड़ा खुला रखना चाहिए, मोजे वगैरह ना पहने उस समय के लिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने, लेकिन यहाँ पर हम चाहेंगे कि हमारी चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और हम गति से आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जो संगीत वाली बात है वो कौन सी है?
0: ये गाना है, ये मैं अपने श्रोताओं को सुनाना चाहूँगा।

0: हमें जो गीत आपने सुनवाया, उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि सुनने वालों को बहुत अच्छा लगा होगा। और अब हम जो सवाल आपसे पूछेंगे उसमें तमाम सुनने वाले भी इसमें शामिल हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि डायबिटीज़ ना हो इसके लिए क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या बचाव के तरीके अपनाने चाहिए।
1: डायबिटीज़ ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, हम डेफिनेटली इससे बच सकते हैं और इसको हम डिले कर सकते हैं अगर फैमिली हिस्ट्री है तो भी। हमारी लाइफस्टाइल सही रखे, हम एक बैलेंस डाइट

फॉलो करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें तो डायबिटीज़ के भयानक बीमारी से बचा जा सकता है। तो मैं मेरे पेशेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि आप डेली एक्सरसाइज करें। आजकल के युवा और एडल्ट्स में फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही कम होगी। घर से निकलते हैं, बाइक है, कार है, वहाँ से ऑफिस जाते हैं या बस पकड़ के ऑफिस जाते हैं, फिर ऑफिस से घर आते हैं, घर बैठते ही टीवी के सामने बैठ जाएंगे, थके हुए टीवी के सामने ही खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी जो है ये आजकल कॉमन पब्लिक है, इनमें बहुत ही कम होती जा रही है। स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसके कारण भी लोग खाना लेट खा रहे हैं, टाइम पे खाना नहीं खाते हैं कि नहीं मैं पहले काम करूंगा, ये सर पे बैठा है, बॉस सर पे बैठा है, मैं पहले काम ख़त्म करता हूँ फिर खाना। मेरा ये सुझाव है और मेरे श्रोताओं से ये कहना है कि आप खाना जो है टाइम पे लीजिए, हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए। आजकल जंक फूड का क्रेज़ है। मैं ये नहीं कहता कि आपको टेस्टी फूड या जंक फूड नहीं खाना चाहिए, इसको आप संडे को एंजॉय कीजिए, बट बाकी 6 दिन जो है हफ्ते के, उस दिन आप एक बैलेंस डाइट लीजिए। डाइट के बारे में बताना चाहूँगा कि हमें जो है बैलेंस डाइट लेना चाहिए। डाइट में सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट,

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज पर। न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप के माध्यम से आप हमें अपने स्मार्टफोन पर भी सुन पा रहे हैं। इस समय शाम के 5 बज चुके हैं। आरंभ होती है आज की हमारी ये सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में युवाओं के लिए सुनिए हमारा ये कार्यक्रम तरुण कुसुम।

तरुण कुसुम इस कार्यक्रम के आज के इस अंक को सुनने वाले आप तमाम युवा दोस्तों को आपके इस रेडियो हम सफर संजीव कुमार सुधाकर का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं युवा दोस्तों? इन दिनों लगातार बढ़ती गर्मी ने थोड़ा परेशान कर रखा होगा आप सबको। अब देखिए, ये मौसम का मिजाज है। अगर गर्मी में गर्मी ना लगे, जाड़े के दिनों में अगर ठंड महसूस ना हो, बरसात के दिनों में अगर हम भींगे नहीं, तो फिर मौसम का मज़ा ही कहाँ रह जाता है। हाँ, थोड़ा ज़्यादा हो जाने पर यह हमें परेशानी उत्पन्न करती है, ज़िंदगी में कठिनाइयाँ शुरू हो जाती है। श्रोताओं, भले ही गर्मी का ये मौसम है, तेज धूप और चलन भरी ये गर्मी है, लेकिन आकाशवाणी दरभंगा से आप तक ठंडी ठंडी ताज़ी ताज़ी हवा के झोंकों की तरह आपका ये कार्यक्रम हम आप तक पहुँचाते हैं, इस उम्मीद में कि ये आपको इस मौसम में थोड़ी राहत जरूर देगी। हर दिन की तरह आज भी हम इस कार्यक्रम में आपके लिए ढेर सारी चीजें लेकर आए हैं। सबसे पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे युवा दोस्तों, ये जो गर्मी का जो प्रकोप हम झेल रहे हैं ना, ये जो हमें परेशान कर रही है ना, इसे थोड़ा सा कम करने में हम कैसे सहयोगी हो सकते हैं, कैसे देश दुनिया के लिए मददगार हो सकते हैं, इस पर भी थोड़ी चर्चा होगी। और चर्चा का विषय है आज समुद्र और नदियों की सुरक्षा में आप युवाओं की जिम्मेदारी। साथ ही साथ माटी की सौंधी खुशबू लिए प्यारे प्यारे लोकगीत भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और दोस्तों, सबसे पहले आप तमाम सुनने वालों को आज आकाशवाणी के स्थापना दिवस, जी हाँ, आज आकाशवाणी ने अपने 90 वर्ष पूरे कर लिए, आप सभी सुनने वालों को इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज है 8 जून। आज ही के दिन सन 1936 में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी। आज जन जन तक इसकी ये पहुंच, आपका ये प्यार, आपका ये अपनापन, ये साबित करता है कि भले ही 90 वर्ष हो गए हो, लेकिन ये आज भी हमारी आपकी जिंदगी में उतना ही महत्व रखता है जितना तब जब शुरुआती दौर में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं, आकाशवाणी का भारत का ये सबसे बड़ा और विश्वसनीय लोक प्रसारक है।

जिसके आज 8 जून 2026 को ये आज अपना 90 गौरवशाली वर्ष पूरे कर रहा है। दोस्तों, 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। बाद में सन 1956 में ऑल इंडिया रेडियो को आधिकारिक तौर पर आकाशवाणी नाम दिया गया, जिसका अर्थ है आकाश से आने वाली आवाज। जी हां, हमारी ये आवाज आप तक कैसे पहुंच रही है? ध्वनि तरंगों के माध्यम से आकाशवाणी अपने नाम को सार्थक करता है। इसका मूल मंत्र ही है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये देश के हर वर्ग तक उनकी बातों को उन्हीं की भाषा उन्हीं की बोली में पहुंचाता है। अब देखिए ना, आपका ये कार्यक्रम युवाओं के लिए है। इसमें बातें होती हैं युवाओं की जिंदगी को जो बेहतर करने वाली बातें होती हैं, युवाओं को लक्ष्य के प्राप्ति के लिए जो सहायक चीजें हैं वो सारी बातें इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं। इसी तरह गांव घर कार्यक्रम होता है, उसमें आप किसान भाइयों के लिए जरूरी बातें सुनते हैं। उसी तरह लोकगीतों का कार्यक्रम होता है, जो हमारी गृहणियाँ होती है जो काम करके थक जाती हैं, उनके मनोरंजन का हम ख्याल रखते हैं, उनके स्वास्थ्य और उनके ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातों को उन तक पहुँचाते हैं। बात शिक्षा की हो, सूचना की हो, साहित्य की हो या मनोरंजन के, हर विषय को हम आप तक आपकी भाषा और आपकी बोली में पहुँचाते हैं। तभी तो हम अपने मूल मंत्र को सार्थक करते हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। श्रोताओं, बातचीत और भी है आपके साथ। आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे ना, नदियों और समुद्र को सुरक्षित रखने में आप युवाओं ने क्या अपनी भूमिका निभाई है, आप क्या जिम्मेदारियां हैं। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है तो थोड़ी सी माटी की सौंधी खुशबू भी आप तक पहुंचनी चाहिए, है ना। ये प्यारा सा लोकगीत आपको सुनवाते हैं, अरविंद कुमार झा का गाया हुआ।

अरविंद कुमार झा का गाया ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। युवा श्रोताओं के लिए आप सुन रहे हैं हमारे ये कार्यक्रम तरुण कुसुम। युवा दोस्तों, आज हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपको बताया है कि आज आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष भी पूरे हो चुके हैं। आज ही के दिन यानी 8 जून सन 1936 को इसकी स्थापना हुई थी और आज 8 जून 2026 यानी गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हुए। श्रोताओं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं नदियों और समुद्र के संरक्षण में जो जरूरी है। देखिए, जल जो होता है वो जीवन का आधार है, प्रकृति और सारी व्यवस्था उसी पर निर्भर होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है आप युवाओं को कि जल संरक्षण में आप जिम्मेदारीपूर्ण अपनी भूमिका निभाएं। नदियों में प्लास्टिक के कचरों को ना फेंके और वैसे लोगों को भी मना करें जो प्लास्टिक के कचरे फेंकते हैं। समुद्र में भी ढेर सारे कल कारखानों के जो कचरे और अपशिष्ट पदार्थ छोड़ दिए जाते हैं उन पर रोक लगाना है, उनके प्रति एक जागरूकता अभियान चलाना जो वास्तव में आप युवाओं से ही संभव है। श्रोता, हमने बताया कि आज आकाशवाणी अपने गौरवशाली 90 वर्ष पूरे कर रहा है, तो इसी अवसर पर आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष के उपलक्ष्य में कवि गोष्ठी। भाग लेने वाले कवि हैं इस कवि गोष्ठी में, कवि फूलचंद्र झा प्रवीण, कवि मोहम्मद सरवर अंसारी, कवि चंद्र मोहन पौददार, कवि शंभुनाथ मिश्र और इस कवि गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं राकेश चंद्र नंदन। प्रस्तुत करता है असद दाऊद। आइए सुनते हैं ये कवि गोष्ठी।

0: श्रोतागण नमस्कार। आई 8 जून अछि आ आजुक दिन हमरा सब लेल एक गोट विशेष दिन बनि गेल अछि। विशेष एहि लेल किया तऽ आई आकाशवाणी संपूर्ण राष्ट्र आ विश्व धरि अपन आवाज पहुँचेबाक 90 गौरवशाली वर्ष पूरा कऽ रहल अछि। 8 जून 1936 कऽ तत्कालीन भारतीय राज्य प्रसारण सेवाक नाम बदलि कऽ ऑल इंडिया रेडियो राखल गेल छल। अपन स्थापनाक बादसँ आइ धरि आकाशवाणी लगातार अपन दायित्वक निर्वहन करैत आबि रहल अछि। आजुक डिजिटल युगमे सेहो आकाशवाणी अपन मूल रूप आ स्थानीय भाषा सभक माध्यमे देशक दूर सुदूर क्षेत्रक संग संग प्रत्येक देशवासी लोकनिसँ जुड़ल अछि। बदलैत समयक संग आकाशवाणी विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ न्यूज ऑन AIR ऐपक माध्यमसँ ग्लोबल श्रोता धरि पहुँचि रहल अछि। आकाशवाणीक एहि उपलब्धिक उत्सव मनेबा लेल आइ आकाशवाणी दरभंगाक स्टूडियोमे कवि गोष्ठीक आयोजन कयल गेल अछि। हम पहिने आमंत्रित कवि लोकनिक परिचय करबा दैत छी। मैथिलीमे हमरा सब संग छथि वरिष्ठ कवि फूलचंद्र झा प्रवीण, संगहि शंभुनाथ मिश्र आशी सेहो। हिंदीमे हमरा सभक संग छथि चंद्रमोहन पोद्दार आ उर्दूमे सरवर पंडौलवी। आओ एहि कवि गोष्ठीक आरंभ वरिष्ठ मैथिली कवि फूलचंद्र झा प्रवीण केर एहि काव्य पाठ सँ करैत छी।
1: शीर्षक हमर आकाशवाणी। नवम दशक पूरा कऽ रहलै।

बहुत मन मोहक कार्यक्रम अनमोल, फुलबारी में बाल गीत संग नैना।

आपति विपति जखन जे परलै सब ठा दई अछि संग फार बानी को ठाढ़ रहै अछि देखबै।

इस पर बना भरोसा जनता का। आजादी से पहले ही यह खबरों को फैलाता था, आजादी के बाद भी इस पर बना भरोसा जनता का। सच्ची खबरों से भारत के मन

0: की भाषा है, हर प्रदेश की भाषा बोली से लोगों को आशा है। संविधान सम्मत निष्ठा से जन सरोकार निभाता है, संविधान सम्मत निष्ठा से जन सरोकार निभाता है। ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन जन संपर्क बढ़ाता है, 90 साल से है स्थापित जन संवाद बनाता है। ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन जन संपर्क बढ़ाता है।
1: वाह वाह वाह, ए सुन्नर कविता खन हमरा लोकनि सुनलो। निश्चित रूप से आकाशवाणी जन संपर्क बढ़ेबाक काज निरंतर करैत जा रहल अछि। कवि गोष्ठी में औने आब मैथिली कवि शंभुनाथ मिश्र आशी के आमंत्रित करै छियनि।
2: 1887 के हेनरिच हर्ज़क मन में चिंतन। 1887 के हेनरी हर्ज़क मन में चिंतन, ध्वनि तरंगलो जगदीश चंद्र कैलन ध्वनि परिवर्तन। सन 1936 में भारत भू पर प्रथम प्रवेश। सन 1936 में भारत भू पर प्रथम प्रवेश, ISBS नामकरण से देल प्रथम संदेश। सन 1956 ईस्वी में आकाशवाणी का पदार्पण। सन 1956 ईस्वी में आकाशवाणी का पदार्पण, 90 बरखक भेल आई कैने पूर्ण समर्पण। समाचार विश्वासी सदिखन, समाचार विश्वासी सदिखन, कृषि संग गाम विकास, जागरूक शिक्षा प्रतिसदी, सस्ता सुलभ प्रयास। सांस्कृतिक संरक्षक बनी ठाढ़ बनल स्तंभ, सांस्कृतिक संरक्षक बनी ठाढ़ बनल स्तंभ, नाटक गीत खेल रुचि आनल समरसता के संग। सतत भेल संरक्षक भाषा, सतत भेल संरक्षक भाषा, द्रुत गति सदि संदेश, सकल सुलभ सस्ता उत्पादन, घर घर कैल प्रवेश। ननपन में लखी अचरज लागे, ननपन में लखी अचरज लागे, डिब्बा बाजे बोल। ननपन में लखी अचरज लागे, डिब्बा बाजे बोल, गीत नाद के धुनि खन बाजे, करे सगर अनुघोल। आकाशवाणी के खबर सुन सत्यता का आभास, आकाशवाणी के खबर सुन सत्यता का आभास, सुन सिरोन के चित्रहार सो अंतस होय उल्लास। लोहा सिंह नाटक छल रुचिगर, लोहा सिंह नाटक छल रुचिगर, चिन्हल गायक नाम, बिनु लखने जीवंत समक्ष खेल सबक मैदान। जागरूक जनमानस विश्वक पावि सकल पहचान, एक बंद डिब्बा सो देखल जानल सकल जहान। बड़ उपकारी जनहितकारी मंच विश्व के एक, समरसता सौजन्य भाव हित करे इस काज अनेक। बिरुदावली सौ करी आरती, बिरुदावली सौ करी आरती, आनल विश्व समक्ष आकाशवाणी के श्रम सौ जन के आयल पूनम पक्ष। विसर सके ऐसी जग की कखनो देल एकर अवदान, विसर सके ऐसी जग की कखनो देल एकर अवदान। संचारक सेवा में सदिखन तत्पर एकर प्रमाण, संचारक सेवा में सदिखन
1: तत्पर। निश्चित रूप से आकाशवाणी अपन योगदान निरंतर दैत जा रहल अछि। अब हम आमंत्रित करै छियनि सरवर पंडोलवी जी के।
3: सामईन आदाब, मैं मीम सरवर पंडोलवी, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चंद पंक्तियां। ये आकाशवाणी है, ये आकाशवाणी है, अब आप अशोक वाजपेयी से समाचार सुनिए।

0: अब आप अशोक वाजपेयी से समाचार सुनिए या अब जाहिद अली खान से खबरें सुनिए। यम आकाशवाणी, ई आकाशवाणी छे। अब पेश है उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी नगमे। गुज़श्ता नौ दहाइयों से ऐसी आवाज़ें, गुज़श्ता नौ दहाइयों से ऐसी आवाज़ें हमारे कानों में, घड़ों में, चौपालों में रस घोलती रही हैं। गुज़श्ता नौ दहाइयों से ऐसी आवाज़ें हमारे कानों में, घड़ों में, चौपालों में रस घोलती रही हैं। कितना सुकून मिलता था जहनों और कानों को, कितना सुकून मिलता था जहनों और कानों को, मगर अब जदीद टेक्नोलॉजी ने जिस तरह किताबों को चाट लिया है, मगर अब जिस तरह जदीद टेक्नोलॉजी ने किताबों को चाट लिया है, कहीं खो गई हैं वो आवाज़ें, नई ईजादात में दबती जा रही हैं मन की बातें भी। हम अपने जड़ों से कितने कटते जा रहे हैं, हम अपने जड़ों से कितने कटते जा रहे हैं।
1: एक दिस जड़ी से कटवाक गप कर रहल छला है सरवर पंडोलवी जी, तो दूसर दिस आकाशवाणी ई निरंतर सिद्ध करैत रहल अछि जे हमरा लोकनि अपन जड़ी से जुड़ल रहलहुँ अछि। नेनपने से आकाशवाणीक विभिन्न रूप हमरा लोकनि देखैत आबि रहल छी। हाँ, पहिने कहलहुँ जे एहि डिजिटल युगमे हमरा लोकनि आब स्वयंके सेहो परिवर्तित कऽ रहलहुँ अछि, माने आइ विदेशमे बैसल लोक सब सेहो डिजिटल रूपसँ आकाशवाणी दरभंगाके सुनि पाबि रहल छथि, अपन मैथिली कार्यक्रमकेँ सुनि पाबि रहल छथि। एक बेर फेर आब हम आमन्त्रित कऽ रहल छियनि कवि फूलचंद्र झा प्रवीणकेँ।
2: विपरीत बसात ताकि रहलै अमावस में चान, लोक सब अकान भौ गेलै जकरा पोसै में देलक परान, वह तो आन भौ गेलै ताकि रहलै अमावस में चान, लोक सब अकान भौ गेलै।

की जिंदगी किरकतवा बसंत बीत गेलै जिंदगी किरकतवा बसंत बीत गेलै तैयो एखन धरी ने लोक चिन्ह पेलै तैयो एखन धरी ने लोक चिन्ह पेलै जकरा बूझल नहि कहियो वीरान शत्रुक समान भ गेलै जकरा बूझल नहि कहियो वीरान मुद्दई समान भ गेलै आस बान्हि जकरे पर सब किछु लुटौलक आस बान्हि जकरे पर सब किछु लुटौलक बेर जखन परलै तौ किछुओ न पौलक बेर जखन परलै तौ किछुओ न पौलक जेना उजरल सन खेत खरिहान महलो मसान भ गेलै जेना उजरल सन

0: बहुत खूब
1: परिवर्तनक जे गप सरवर पंडोलवी जी कह रहल छलाह ओकरे आगा बढ़ा रहल छलाह फूलचंद झा प्रवीण सर। अब हम आमंत्रित करै छियनि अपन कविताक संग चंद्रमोहन पोद्दार के।
2: शीर्षक है सफलता। कड़ी लगन मेहनत ही हमको सफल बनाते हैं, कड़ी लगन मेहनत ही हमको सफल बनाते हैं, संघर्षों से ही मन चाहे फल मिल जाते हैं। कड़ी लगन मेहनत ही हमको सफल बनाते हैं, संघर्षों से ही मन चाहे फल मिल जाते हैं। सुख सुविधा को नहीं सदा मंजिल को ही देखो, सुख सुविधा को नहीं सदा मंजिल को ही देखो, जो पाना है तुमको उस हासिल को ही देखो। कठिन साधना ही हमको तो कुशल बनाते हैं, कठिन साधना ही हमको तो

डालो। सदा सीखते रहने की आदत खुद में डालो। गुरुजनों से सीखो अपना लक्ष्य बर

लोगों की संगत मत रखना, जो उलझन में डाले उनकी बिल्कुल मत सुनना, आगे बढ़ने वाले पर

0: संघर्षों से ही मन चाहे फल मिल जाते हैं।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
2: परिवर्तन निक ला हुआ है, एहने सन कामना चंद्रमोहन पोद्दार जी के एहि काव्यक माध्यम सँ हमरा लोकनि सुन रहल छलहुँ। आब आमंत्रित करै छियनि मैथिली कवि शंभुनाथ मिश्र आशी के अपन कविताक संग।
3: हमर कविताक शीर्षक अछि मिथिला के गाम। मिथिला के से गाम न रहले जै पर छले गुमान, देख ही होइ अछि छूर जमान। मिथिला के से गाम न रहले जै पर छले गुमान, देख ही होइ अछि छूर जमान। नहीं छै भीत खौर सँ छाड़ल, नहीं छै चार खौर सँ छाड़ल, नहीं खरिहान में मेह छै गारल, उजरल उपटल बारी झारी, नहीं छै कतो मचान, देख ही होइ छै झूर जमान। नहीं छै भीत खौर सँ छाड़ल, नहीं खरिहान मेह छै गारल, उजरल उपटल बारी झारी, नहीं छै कतो मचान, देख ही होइ छै झूर जमान। बनी गेल अछि महल अटारी, बनी गेल अछि महल अटारी, बटि गेल घर घर भैयारी, बास समेट बीत भरे रहले, नहि बाबाक दलान, देख ही होइ अछि झूर जमान। गाछी उपटि खेत बनि गेलै, गाछी उपटि खेत बनि गेलै, पोखरि झाँखरि से भरि गेलै, बाट घाट अलकतरा पोतल, नहि खेलक मैदान, देखि मन होइ अछि झूर जमान। गाछी उपटि खेत बनि गेलै, पोखरि झाँखरि से भरि गेलै, बाट घाट अलकतरा पोतल, नहि खेलक मैदान, देखि

0: देखी मन होइए छ झूर जम। गाछी उपटी खेत बन गेलै, पोखरि झांकरि से भरि गेलै, बाट घाट अलकतरा पोतल नहीं खेलक मैदान, देख ये होइए छ झूर जमान। नहीं साबिक सन छै चौघारा, नहीं साबिक सन छै चौघारा, नहीं आंगन में भेटे ओसारा, आब हवेली टुकड़ी भ के बनलै छोट मकान, देख ये होइए छ झूर जमान, देख ये होइए छ झूर जमान। अंत में आब न देखी हंसी ठट्ठा, आब न देखी हंसी ठट्ठा, कतौ सहोदर भेल इकट्ठा, ठकुर सुहाती अपन भेल छै, अपन बनलै आन, देख हि होइए छ झूर जमान, देख हि होइए झूर जमान, देख हि
1: देख हि होइए छ झूर जमान। से ठीक है, साबिक केर वस्तु सब आब कहाँ देखना जाइत अछि, मुदा आकाशवाणी अपन पुरना जे सब गप सब ओकरा एखनहु ओही रूपे मोन राखि रहल अछि। अंत में अब हम आमंत्रित करै छियनि सरवर पंडोलवी जी के।
2: एक मतलब और एक शेर से बात अपनी शुरू करता हूँ। देखिएगा, शाद मेरा दिले नादान कहाँ होता है, शाद मेरा दिले नादान कहाँ होता है, अब उसे देख के हिजान कहाँ होता है, आईना तंग है इतना मेरे दोहरेपन से, आईना तंग है इतना मेरे दोहरेपन से, अब मुझे देख के हैरान कहाँ होता है, अब मुझे देख के हैरान कहाँ होता है। दो शेर सुनिए। मैंने मिल्लत की बात क्या कह दी, मैंने मिल्लत की बात क्या कह दी, चुभ गया सबको मशवरा मेरा, मैंने मिल्लत की बात क्या कह दी, चुभ गया सबको मशवरा मेरा, खून जिसने मेरा बहाया है, खून जिसने मेरा बहाया है, उससे रिश्ता है खून का मेरा, उससे रिश्ता है खून का मेरा। एक गजल के चंद अशआर कोई

अभी। ये शेर देखिएगा, मेरे ये बच्चे मेरी मुफलिसी से वाकिफ हैं, मुफलिसी निर्धनता। मेरे ये बच्चे मेरी मुफलिसी से वाकिफ हैं, मुफलिसी से वाकिफ हैं। खरीद पाता नहीं उनका।

उदास लगता है घर का हर एक कोना भी। मक्ता पेश है। कभी तो झूठ ही सर वर कहे कोई नाकिद। आलोचक

0: भी। वाह वाह,
1: बहुत बहुत धन्यवाद सरवर पंडोलवी जी। देखू ने बेर भ रहा है कवि गोष्ठी समेटबाक, तो यही आशाक संग जे अपने लोकनिक जुड़ाव आकाशवाणी संग अहिना बनल रहत। आई आकाशवाणी अपन गौरवशाली 90 बरख पूरा कर रहा है, अपने सबक संग यात्रा अहिना चलत रहत, अपने लोकनिक स्नेह अहिना हमरा सबके भेटत रहत। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: तरुण कुसुम इस कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आप सुन रहे थे ये कवि गोष्ठी। युवा मित्रों, तरुण कुसुम इस कार्यक्रम का समय अब और ज्यादा देर हमें आपके साथ बने रहने की इजाजत नहीं दे रहा, तो यह कार्यक्रम अब यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।

युवा श्रोताओं के लिए आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम तरुण कुसुम, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आप सुन रहे हैं आज की हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। इस समय शाम के 5:40 हो चुके हैं और आकाशवाणी दरभंगा से ये समय है चंद गीत और गजलों का।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़, साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर आप सुन रहे हैं चंद गीत और गजलें।

0: आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे थे चंद गजलें। कलाकार थे गुलाम अली, चंदन दास और हरिहरन। इस समय शाम के 6 होने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे।
1: टीम को दुश्मनों पर हावी होने के लिए एक सुविधाजनक स्थान पर पहुंचाया। सशस्त्र कैडरों से भिड़ते हुए उन्होंने जैसे ही कैडर को रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर के साथ लैस खतरे को देखा तो वे रेंगते हुए आगे बढ़े और कैडर को मार गिराया। असाधारण वीरता एवं अद्वितीय नेतृत्व के लिए

0: में केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता को मुक्त है।
0: भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर खेद व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं।

0: आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायालय की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। बम्बई शेयर बाजार का समिति सूचकांक आज 719 अंक गिरकर 73,524 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 244 अंक की गिरावट के साथ 23,123 पर आ गया। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्डिफ में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 180 रन का लक्ष्य दिया है। वेस्टइंडीज ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 75 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़। साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर आप सुन रहे हैं आज की हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। सूचना शिक्षा और मनोरंजन एक साथ। आज आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आप सभी सुनने वालों को आकाशवाणी दरभंगा की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रोताओं, जानकारी प्राप्त कीजिए। आज हमारी सभा में आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों के विषय में आज की हमारी सभा में आपसे थोड़ी देर बाद यानी शाम 6:10 पर आप सुनेंगे हमारे महाकवि की रचनाएं विद्यापति गीत। गांव घर कार्यक्रम होगा ग्रामीण भाइयों के लिए अपने निर्धारित समय शाम 6:30 पर। गांव घर कार्यक्रम में आज श्रोता सुनेंगे चर्चा विश्व समुद्र दिवस इस विषय पर। साथ ही इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। खेती गृहस्थी का समय होगा शाम 7:00। कार्यक्रम में आज किसान श्रोता सुनेंगे चर्चा समेकित पोषक तत्व प्रबंधन। साथ ही मौसम संबंधी जानकारियां भी किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं खेती गृहस्थी हमारे इस कार्यक्रम में। समय याद रखें शाम 7:00। कुछ सदाबहार फिल्मी गाने हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:52 पर फिल्म संगीत के हमारे कार्यक्रम में। मैथिली में हमारा कार्यक्रम होगा सिंगरहार अपने निर्धारित समय रात 8:15 से। श्रोताओं, आज है सोमवार और आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे पब्लिक स्पीक। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। समय याद रखें रात 9:30। और आज रात 10:00 अपनी पसंद के पुरानी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम। जी हाँ, जीवंत फोन इन कार्यक्रम आप सुनेंगे हेलो आकाशवाणी। इस कार्यक्रम में अपनी पसंद के पुरानी फिल्मी गानों को सुनने के लिए आप हमारे ये मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 9430029353 यानी 9430029353।

29353। हेलो आकाशवाणी, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात 10 बजे से 11 बजे के बीच। श्रोता जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज हमारी सभा में प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, आप सुन रहे हैं आज की हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट का प्रयोग चालान से बचने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी को सुरक्षित करने के लिए अवश्य करें। यातायात नियमों का पालन करने से जहां हम स्वयं सुरक्षित रहते हैं, वहीं ये सड़क पर चलने वाले अन्य राहगीरों की जान को भी बचाता है।

इस समय शाम के 6:10 हुए हैं। आकाशवाणी दरभंगा से समय है महाकवि की रचनाओं का। सुनिए विद्यापति गीत।

0: माधव कते तुरा करब बराई। महाकवि की ये रचनाएं आप सुन रहे थे विद्यापति गीत। आज कलाकार थे गौतम मिश्र और विनय कुमार झा। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी रजनीकांत चौधरी। विधान परिषदक 9 सीट लेल होबय वला द्विवार्षिक चुनाव आ 1 सीट लेल होबय वला उपचुनाव लेल आइ नामांकनक अंतिम दिन छल। NDAक 9 जखनकि महागठबंधनक 1 उम्मीदवार अपन नामांकनक पर्चा भरलनि। भाजपा दिस सँ भोजपुरी अभिनेता आ गायक पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर आ शीला पंडित अपन नामांकन भरलनि। ओतहि जदयू दिस सँ स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति आ ललन प्रसाद नामांकन पत्र दाखिल कयलनि। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलासक दिस सँ कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी नामांकन पर्चा भरलनि। NDA प्रत्याशी सभक नामांकन मे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, लोजपा आरक अध्यक्ष चिराग पासवान समेत NDAक कतेको वरिष्ठ नेता सम्मिलित भेलाह। दोसर दिस राजद प्रत्याशी सुनील कुमार सिंह सेहो अपन नामांकन पत्र भरलनि। नामांकन वापस लेबाक अंतिम तिथि 11 जून अछि। एहि मध्य राष्ट्रीय जनता दलक वरिष्ठ नेता आ पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम पार्टी मे अपन पद सँ त्याग पत्र दऽ देलनि। ओ राजद द्वारा विधान परिषद लेल उम्मीदवार नहि बनाओल गेला पर अपन त्याग पत्र देलनि। मधुबनी जिला खजौली थाना क्षेत्रक ठाहर गाम मे काल्हि बिहार सरकारक मंत्री अरुण शंकर प्रसादक काफिला पर भेल हमलाक मामला मे पुलिस मुख्य साजिशकर्ता सुनील कुमार सिंह समेत 7 आरोपी के गिरफ्तार कयलक अछि। एहि मे 3 महिला सेहो छथि। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार जनौलनि जे एहि मामला मे खजौली थाना अध्यक्ष आ चौकीदार के निलंबित कऽ देल गेल अछि। विदित अछि जे काल्हि ठाहर गाम मे भेल एक दुर्घटना मे एक युवकक मृत्युक बाद बिहार सरकारक श्रम संसाधन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद पीड़ित परिवार के सांत्वना देबाक लेल गेल छलाह। एहि क्रम मे किछु असामाजिक लोक सभ मंत्रीक काफिला पर हमला कऽ देलक, जाहि मे एक गाड़ी सेहो क्षतिग्रस्त भेल। पुलिस पदाधिकारी लोकनि के पहुंचला पर मामला के शांत कराओल गेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब सभक हित में सरकारक 12 वर्षक विकास यात्रा के रेखांकित कयलनि अछि। श्री मोदी आई सोशल मीडिया पोस्ट में कहलनि जे एहि क्रम में देश कतेको बदलावक साक्षी बनल आ गरीब कल्याण तथा वंचित वर्ग एहि बदलावक केंद्र बिंदु में रहल। प्रधानमंत्री कहलनि जे जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, PM आवास योजना, जल जीवन मिशन आ आयुष्मान भारत एहन पहलक उद्देश्य लोक लेल गरिमा आ अवसर सुनिश्चित कऽ रहल अछि। निर्धन सभक जीवन स्तर नीक बनेबा मे प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभौलक अछि। ओ कहलनि जे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण आ डिजिटल माध्यम सँ लोक सभ धरि सीधा आ पारदर्शी ढंग सँ सहायता पहुँच रहल अछि। एहि सँ लक्षित वर्ग धरि अधिकतम लाभ पहुँचब सुनिश्चित भेल, कार्य क्षमता बढ़ल आ शासन मे भरोसा बढ़ल अछि। प्रधानमंत्री कहलनि जे गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण आ विकसित भारत

0: स्वप्न साकार करबाक सामूहिक अभियान बनि गेल अछि। देशक विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आइ अपन 90 वर्ष पूरा हेबाक उत्सव मना रहल अछि। वर्ष 1936 के अजुके दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विसक नाम बदलि कऽ ऑल इंडिया रेडियो कऽ देल गेल छल। ई ऐतिहासिक दिन देशक सांस्कृतिक, सूचनात्मक आ प्रसारण इतिहास मे एक विशेष क्षण अछि। संसदीय आ अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू आकाशवाणीक गौरवपूर्ण 90 वर्ष पूरा हेबा पर बधाई देलनि अछि। दरभंगा जिलाक पैकटोल छुरिया मार्ग पर कमला नदी पर निर्मित होबय वला पुलक शिलान्यास दरभंगा ग्रामीणक विधायक राजेश कुमार उर्फ ईश्वर मंडल कयलनि। शिलान्यास समारोह के संबोधित करैत ओ कहलनि जे पैघ काल सँ जनता द्वारा एहि पुलक निर्माण करबाक मांग होइत छल। एहि पुलक निर्माण पर 2,87,00,000 टाका खर्च होयत। प्रदेश में लगातार उमस भरल गर्मी पड़ रहा अछि। पछिला 24 घंटा में कैमूरक भभुआ 40.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमानक संग प्रदेशक सब सँ गर्म स्थान रहल। राज्य में एक दू ठाम आंशिक बरखा सेहो भेल अछि। मौसम विज्ञान केंद्र पटनाक अनुसार उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य आ दक्षिण पूर्व जिलाक एक दू स्थान पर 40-50 किलोमीटर प्रति घंटाक गति सँ धुक्कर उठबाक देशा बनल अछि आ संगहि बरखा हेबाक संभावना सेहो बनल अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। समय हो चला है ग्रामीण भाइयों के लिए हमारे इस कार्यक्रम गांव घर का।

0: कार्यक्रम गाम घर सुन्निहार समस्त स्नेही श्रोता लोकन के देवू भाईक नमस्कार, संगी उगना भाई अहों के नमस्कार।
1: नमस्कार देवू भाई। देवू भाई, आय सोम दिन है आ आजुक दिन हमरा लोकन लबन स्नेही बुजुर्ग श्रोता लोकनिक लेल हुनक साप्ताहिक कार्यक्रम अनुभव के चश्मा से अह कार्यक्रम अंतर्गत आई एकटा प्रायोजित कार्यक्रम लयल छन बुनियाद। एकर संगे गीत नादक आनंद से हो ले, मुदा अह सब से पहिने किछु दू टप्पी को ले।
0: हाँ हाँ, कि एखने उगना भाई देखियो गप सप कैला से होइ छै कि उगना भाई कि कोनो तरहक जे अहाँ के मानसिक तनाव रहे या ना तो बुझू जे खत्म भऽ जाइ छै। तो गप सप तऽ दलान पर आयल छी उगना भाई, तऽ हेबे कर माने हेबे के चाही।
1: ठीके कहलौ देवू भाई, आइ हमरा लोकनि एकटा विशेष दिवस मना रहल छी।
0: हाँ, अहाँ तऽ मनक बात बुझैत रहै छियै उगना भाई। तऽ आइ हमरा लोकनि मना रहल छी अल्पसंख्यक लोकनि के लेल, पर
1: आइ हमरा लोकनि विश्व महासागर दिवस मना रहल छी। आ ई दिवस के मनेबाक मुख्य उद्देश्य अछि जे महासागर समुद्र जे अछि ओकर कोना हमरा लोकनि रक्षा करी। जलीय जीव जे महासागर में पाओल जाइत अछि ओकर कोना संरक्षण करी। विशेष रूप से प्रदूषण जे अछि जल प्रदूषण, अहि से सेहो त्रस्त भऽ रहल अछि महासागर, तऽ अहि सब से कोना हमरा लोकनि से एकरा बचाबी। अहि के उद्देश्य से अहि दृष्टि से आम जन के जागरूक करबाक हेतु ई विश्व महासागर दिवस सब वर्ष 8 जून का मनाओल जाते।
0: हाँ हाँ, बहुत ठीक कहले हैं उगना भाई। जी हमरा लोकन जो छे विश्व समुद्र दिवस जे आई हमरा लोकन मना रहल छी, आ ई जो दिवस है ई दिवस है जे सब गोटे के आई लेल जो छे जागरूक हेबाक चाही। कारण जे देखिए रहल छे जे अखन जे पर्यावरण प्रदूषित भऽ रहल अछि, चाहे जलीय जीव जलीय जीव

जन्तु जे छै पानि लऽ कऽ प्रदूषित भऽ रहल अछि, तऽ हमरा लोकनि जा धरि सतर्क नहि रहब, जा धरि जागरूक नहि रहब, ता धरि बुझू जे ई पर्यावरणके हमरा लोकनि जे शुद्ध नहि कऽ सकै छी, आवश्यकता अछि जागरूकताके। ओनाहियो जे देख रहल छी जे हमरा लोकनिके जे छै अनेको तरहक जे कैरी बैग होइए प्लास्टिक, ओहोपर हमरा लोकनिके जे छै जे देखै छी जे नाला नालीमे फेंक दै छी, ओहिसँ जे छै पानि जाम भऽ जाइ छै, आ पानि जखने जाम होइ छै तऽ अनेको तरहक जे जलीय जीव जन्तुपर ओकर तऽ प्रभाव पड़ते अछि। सङ्ग सङ्ग जखने पानि रुकत उगना भाइ, तखने बुझू जे अनेको तरहक रोग व्याधिके फैलाव सेहो होइ लगैत अछि। आ जहन बरखा बूंदी जे होइए तऽ ओ नाला नालीके जे जितना कचरा छै ओ नदीमे जाइ छै आ नदीके द्वारा समुद्रमे जाइ छै, जकर परिणाम जे छै सुनामीके हमरा लोकनि बिसरलहुँ हँ। सुनामीमे जे भेल रहै, जे अंधर तूफान जो आयल रहै, जे कतेक मानवके मनुखके जे छै बुझू जे ओ कालके जे है मुँहमे समा गेल रहै। तऽ ईसब जो ईसब प्राकृतिक जो अभिशाप अछि ओकरासँ कोना हमरा लोकनिके जे छै बचाबी, एहि लेल

0: लोकनिक जो छै जे देखै छी जे नाला नाली मे फेंक दै छी ओहिसे जो छै पानि जाम भऽ जाइ छै आ पानि जखने जाम होइ छै तऽ अनेको तरहक जो जलीय जीव जन्तु पर ओकर प्रभाव पड़ते अछि। संग संग जखने पानि रुकत उगना भाई तखने बुझू जे अनेको तरहक रोग व्याधि के फैलाव सेहो होय लगत अछि। आ जहन बरखा बूंदी जे होइया तऽ ओ नाला नाली के जे जितना कचरा छै ओ नदी मे जाइ छै आ नदी के द्वारा समुद्र में जाइ छै, जकर परिणाम जे छै सुनामी के हमरा लोकन बिसरल रहे न। सुनामी में जे भेल रहे जे अंधर तूफान जो आयल रहे जे कते मानव के मनुख के जो छै बुझू जे ओ काल के जे है मुँह में समा गेल रहे। तो सब जो अभी सब प्राकृतिक जो अभिशाप है ओकरा से कोना हमरा लोकन के जो छै बचाबी, एहि लेल हमरा लोकन के आवश्यकता है जागरूकता के।
1: ठीके कहलो। आ आब हमरा लोकन सुनै छी एकटा लोकगीत तो सुनल जाए।

0: वाह, बहुत सुंदर। पुना भाई अखन हमार लोकन विभा सिन्हा के स्वर में ये झूमर सुन रहे छलो, खूब निक लागल। आशा करे छियन श्रोता लोकन के सेहो निक लागल हेतन। आब हमार लोकन के फेन आगू बढ़ू, कार्यक्रम के आगे फेन बढ़ाबी।
1: देवू भाई, अल्पसंख्यक लोकनिक कल्याणक लेल एकटा कार्यक्रम चलाओल जा रहल अछि, प्रधानमंत्री 15 सूत्री अल्पसंख्यक कार्यक्रम। एहि कार्यक्रम अंतर्गत आइ हमरा लोकनि शिक्षा के विषय में गप कऽ रहल छी। एहि कार्यक्रम अंतर्गत अल्पसंख्यक लोकनि के शिक्षा के क्षेत्र में विकासक लेल आगू बढ़ेबाक लेल योजना चलाओल जाइत अछि, जाहि माध्यम में हिनका लोकनि के से आगू बढ़बाक अवसर भेट सकनि।
0: हाँ हाँ, उगना भाई बहुत नीक गप कहलहुँ हैं कि देखियौ, हमर सभक जो देश अछि ना उगना भाई, अनेकता में एकता के देश अछि।
1: अछिए,
0: और हमर भाई लोकनि जे अल्पसंख्यक भाई लोकन जो छे, तो हुनका लोकन कोना आगू बढ़थिन, कोना डेग से डेग आगू मिला के हमरा लोकन चलब, तखने ना सफलता भेटत। जखन सब कोई मिलजुल कर जहन डेग से डेग मिला के आगू बढ़ब, तखने हमर देश आगू बढ़ सकत है जुगना भाई। तै ओकरा लेल आवश्यकता है जे समस्त क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हुए, सामाजिक क्षेत्र हुए, सब ठाम जो हुनका जो छे आगे बढ़ेबाक अछि, तखने जाके जो छे हमर गाम समाज राष्ट्र जे छे मजबूत भ सकत अछि।
1: तो एखन हमरा लोकन जे शिक्षा के क्षेत्र, ताहि प्रसंग देवू भाई गप कर रहल छी, तो शिक्षा के क्षेत्र में हिनका लोकन के लेल छात्रवृत्ति योजना चलाओल जा रहल अछि। जे विद्यार्थी पढ़ चाहे जे छात्र शिक्षा के क्षेत्र में आगू बढ़ चाहे हुनका लोकन के जो आर्थिक रूप से अपना के ओ सक्षम नहीं बुझ रहल छथि, तो हुनका लोकन के अ माध्यम से सहायता देल जतन, आर्थिक सहायता छात्रवृत्ति के रूप में, आ तखन ओ लोकन शिक्षा के क्षेत्र में आगू बढ़त। ई एकटा अवसर प्रदान कयल जाते थे।
0: हाँ हाँ, ठीक है कहलो।
1: एकर संग हिनका लोकन के उच्च शिक्षा के लेल सेहो छात्रवृत्ति देल जाय छन। एकर संग कतेको प्रकार के प्रशिक्षण देल जाय छन, जाहिसँ ई लोकन आगू बढ़ सकत।
0: हाँ हाँ ना भाई, ताहि दुआरे हमरा लोकन के जो छे ओहन छात्र के जे हर दृष्टि से प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक कम मीन्स छात्रवृत्ति जहाँ कहबे कलो हैं कि लागू केनाई अछि, तो जो एहि तरह जो उ लोग आगू जखने बढ़ता, तखने बुझू जो हमर सबक गाम समाज के जो छै विकास हैत, मजबूत हैत, आ तखने हमरा लोकनि एकटा समस्त जे हमर सबक जे राष्ट्र अछि ओ आगू बढ़त रहत।
1: ठीक है कहलहुँ। आ देवू भाई, आइ हमरा लोकनि बुजुर्ग लोकनिक लेल

0: जे ई कार्यक्रम अनुभव के चश्मा ताहि अंतर्गत हिनका लोकनिक जे स्वास्थ्य ताहू पर हमरा लोकन के ध्यान देबाक चाही। विशेष रूप से मधुमेह जकरा डायबिटीज कहै छी आ बीपी जकरा रक्तचाप कहै छी, अइ दुनू बीमारी के नियंत्रण में रखबाक प्रयास करबाक चाही। कारण ई ओना बुझबा मे नहि अबैत अछि मुदा ई बेर पर बड़ खतरनाक आ जानलेवा भऽ सकैत अछि। तैं ई दुनू बीमारी के नियंत्रण में रखबाक प्रयास करबाक चाही। आ देवू भाई, आब हमरा लोकनि सुनैत छी ई प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद तो सुनल जाए।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से आप सबों के घर आंगन में आ गया। जैसा कि जानते हैं आप कि आज है सोमवार का दिन और आज के दिन हम कार्यक्रम लेकर आते हैं पूरे बिहार और झारखंड के एक बहुत बड़े हिस्से में युवा साथियों के लिए बुनियाद। बुनियाद हम चाहते हैं कि टेक्निकल पढ़ाई से उनकी बुनियाद इतनी मजबूत हो जाए जीवन की ऊंचाइयों को वो आसानी से छू सकें। भैया आज तो टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, अपनी मर्जी का क्षेत्र चुनने का समय है, क्षेत्र भी बहुत ज्यादा है। हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। अगर आपने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है तो बहुत सारे ऑप्शन है, मेडिकल है, एग्रीकल्चर है, पैरामेडिकल है, नर्सिंग है, फार्मेसी है। ओह माय गॉड, कितने कितने रास्ते खुल जाते हैं। इसके अलावे टेक्निकल पढ़ाई में आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, लॉ कर सकते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हैं। ढेर सारे क्षेत्र हैं जहां आप अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकते हैं। और बिहार में जिनकी तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, हमने कहा गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार, जी हाँ ये विश्वविद्यालय है जहाँ टेक्निकल पढ़ाई कराई जाती है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि तीन नए कोर्स आए हैं, खास करके जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है, उसमें पहला कोर्स है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी। दूसरा कोर्स है बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, हमने कहा बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। और तीसरा है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। लगातार आने वाले एपिसोड्स में इसकी जानकारी देंगे और सीट बहुत कम है। आपको अगर इसमें दाखिला लेना है तो तेजी दिखानी होगी। अपना नंबर यानी गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का नंबर हम बता रहे हैं, हाँ आप जो है चाहे तो इस पर बातचीत कर सकते हैं। नोट कीजिए नंबर, नंबर है 9431899002, 9431899002। और दूसरा नंबर है 1800121001, 1800121001। ये नंबर है, इन दोनों नंबरों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल चलते हैं, आज हमने बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी पर एक बार चर्चा की थी और वायदा किया था कि अगर इस विषय पर आपके कोई सवाल आएंगे तो हम फिर से हाँ इस पर जानकारियां दिलवाएंगे। ढेर सारे सवाल आए हैं इस विषय को लेकर, इस बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी को लेकर। आइए हम इस पर फिर से आपको जानकारी दिलवाते हैं। और हमारे साथ बैठे हैं इस विभाग बीएससी

0: कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी पर बातचीत करने के लिए प्रोफेसर साहब क्या हैं यहाँ गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में, बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में क्या जानकारियां देंगे। आइए सबसे पहले उनका परिचय लेते हैं और फिर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं।
1: मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार है, मैं नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज का डायरेक्टर हूँ।
0: सर जी, सबसे पहले आप इसके विषय में बताइए, बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: जी, ये बीएससी इन कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी ये एक अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज का एक कोर्स है, स्पेशल कोर्स है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा एक नेशनल कमीशन बना था सेंट्रल लेवल पे, उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज को उन्होंने हाईलाइट किया है, जिसके अंदर एक हमारा यह कोर्स भी है, बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी। यह एक 4 साल का कोर्स है जिसमें 3 साल की पढ़ाई और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। इस कोर्स के जो बच्चे इस कोर्स को करने के बाद वो जैसे आजकल जैसे आपको पता है कि बहुत सारे हार्ट की समस्या हो रही है, ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उससे रिलेटेड सर्जरीज भी बढ़ रहे हैं, तो उन सारे सर्जरी में ऑपरेशन के दौरान उनको असिस्ट करना सर्जन को, ये इनका रोल है। और साथ ही साथ उनको उसकी टेस्टिंग करनी, काइंड ऑफ हार्ट में या लंग ब्लड वेसल्स में कोई अगर परेशानी है उसको जांच करना, यह भी इनका पार्ट आ जाता है।
0: नीरज जी, मुझे जहां तक समझ में आया तो ये बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी ये जो कोर्स है, मैं इतना समझ पा रहा हूं कि जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, जब वो ऑपरेशन करते हैं या किसी पेशेंट के साथ होते हैं, तो ये बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी किए हुए जो बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, वो उनको असिस्ट करते हैं। जैसे ऑप्थल्मोलॉजी में आई सर्जन को जो लोग असिस्ट करते हैं तो वो पढ़ाई किए हुए होते हैं। आप अपनी तरफ से बताइए तो ज्यादा हमें समझ में आएगा और लोगों को समझ में आएगा, क्या यही सच है?
1: ये बिल्कुल, क्योंकि आजकल आपको जैसे पता है ये बहुत सारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और आप हर गली नुक्कड़ पे देखेंगे तो कार्डियक सर्जरी के पेशेंट्स आपको बहुत मिल रहे हैं। कार्डियक नर्सिंग होम्स भी खुले हुए हैं जहां कार्डियक सर्जरी हो रही है, तो ऐसे केसेस में इनकी डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हुई है, ताकि उनको ड्यूरिंग देयर ऑपरेशन ऑफ द पेशेंट्स दे कैन असिस्ट द सर्जन।
0: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, जी हाँ, बुनियाद कार्यक्रम है। युवा साथियों, टेक्निकल पढ़ाई के विषय में जानकारी इस कार्यक्रम में हम देते हैं और आज इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ जिन्होंने किया है उनके लिए जानकारियां हैं बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में। जी हाँ, नंबर नोट करें, अगर कार्यक्रम के बाद आपको ऐसा लगे कि हमें जानकारी लेनी चाहिए तो आप ये नंबर डायल करें 9431899002 9431899002 और दूसरा नंबर है 1800121001 ये नंबर है। अच्छा नीरज जी, एक बात बताइए, ये जो है बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, क्या आप ऐसा समझते हैं कि इसको कर लेने के बाद रोजगार की अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी या रोजगार है, ऐसा आपका मानना है? आप बताइए पहले, क्योंकि रोजगार मिलना पढ़ाई के लिए पहला ऑप्शन होता है। एंड ऑफ द डे हमें क्या मिला ये जरूर हम देखते हैं।
1: जी, क्योंकि जैसे पहले बताया है कि बहुत ही ज्यादा प्राइवेट नर्सिंग होम्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में इनकी डिमांड तो है ही, साथ ही साथ सरकारी अस्पतालों में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। और जो बच्चा ये कोर्स करने के बाद अगर विदेश में अपना करियर का ऑप्शन ढूंढ रहा है, उनके लिए भी बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होती है, क्योंकि विदेशों में भी इसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड।
0: बहुत खूब। एंड ऑफ द डे रोजगार है कि नहीं, यही जानना चाहते हैं लोग। हाँ, लोग में माता पिता, छोटे भाई बहन और युवा जिन्हें पढ़ना है उन्हें तो जानना ही है। कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, मैं हूँ राजेश और इस वक्त बातचीत चल रही है बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में। कार्डियक सर्जन के साथ इनकी बहुत आवश्यकता होती है और बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में आया है ये। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का नंबर हम बता रहे हैं 9431899002 और दूसरा नंबर है 1800121001। नीरज जी, एक सवाल सहज, ये लोग भी पूछते रहे हैं कि क्या गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में तरह तरह के कोर्स को इनोवेट किया जाता है, जैसे अभी

0: बीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई शुरू हुई है और बहुत ही उम्दा कोर्स है वो भी। और अब तीन तरीके के ये जो कोर्स हैं आज चर्चा हो रही है, बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी पर दूसरा कोर्स है हमारा यहाँ जो अभी आया है बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडी पर, और तीसरा है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी पर। तो क्या आपको नहीं लगता है कि गोपाल नारायण सिंह लगातार ये यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट के बिहाफ में, स्टूडेंट के लिए कुछ न कुछ करते रहती है?
1: सर बात यह है कि बहुत सारे कोर्सेस ऐसे भी हैं, रोजगार वाले रोजगार परक कोर्सेस ऐसे हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं होती है, और उस वैसे वैसे कोर्सेस को हमारे मैनेजमेंट वो हमारे को वैसे वैसे कोर्सेस लाकर हमारे को बोलते हैं कि दिस काइंड ऑफ कोर्सेस वी कैन स्टार्ट विच अदर पीपल्स डू नॉट नो। और ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है कि हमें अपने मैनेजमेंट को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ ये सारे कोर्सेज भी हैं जिसको कि हमें स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑलरेडी कन्विंस्ड कि उनको पता है ये सारे कोर्सेज की बहुत ही ज्यादा डिमांड है हमारे यहाँ।
0: ये तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, और खास करके हेल्थ सेक्टर में तो गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, दूसरे सेक्टर में भी, लेकिन यहाँ तो अपना जो हॉस्पिटल है ना उनमें इन बच्चों के लिए भी क्या स्कोप होता है क्या, या अपॉर्चुनिटी मिलती है?
1: हमारे पास अपना एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए हमारे बच्चों को कहीं और भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो जितने भी कोर्सेज रिलेटेड टू मेडिकल एंड अलाइड हैं वो सब अगर हमें स्टार्ट करते हैं तो हमारे बच्चों को कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, साथ ही साथ उनको सीखने को सब कुछ मिल रहा है प्रैक्टिकल, और करियर अपॉर्चुनिटीज उनकी डबल हो जाएगी,
0: करियर अपॉर्चुनिटी दूसरे जगह की तुलना में दुगनी हो जाएगी गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में। जी हाँ, बात चल रही है टेक्निकल पढ़ाई की इस कार्यक्रम बुनियाद में, और हमेशा से सालों से बुनियाद कार्यक्रम आ रहा है, और इसे सुनकर न जाने कितने युवाओं ने टेक्निकल पढ़ाई चुना है, चाहे वो गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में या बाहर। हाँ, हम ये कभी नहीं कहते हैं कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटी में ये है ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं, आपको कहते हैं कि ये नंबर है जो हमारा 9431899002 और 1800120051 डायल करें, या गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जो है जमुहार सासाराम रोहतास बिहार में है वहां आए, देखें, पढ़ें, समझें और फिर दाखिला लें, हम ये कहते हैं। लेकिन एक बात तो एकदम डंके की चोट पर कहता है राजेश, और आज नहीं वर्षों से कहता रहा है, बीसियों साल से, हाँ, कि युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप टेक्निकल पढ़ाई कीजिए, जिंदगी आराम से आगे बढ़ेगी। चलिए आगे बातचीत का सिलसिला नीरज जी से जारी रखते हैं। प्रोफेसर साहब, ये बातें तो हो रही हैं, लेकिन हम लोग युवाओं को कहते हैं, ढेर सारी बातें होती हैं कि कहीं भी अगर जो आप एडमिशन लेने जा रहे हो, हाँ, तो दो तीन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। पहली ये कि वो कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, इसको जरूर देखना चाहिए। तो इसका जवाब तो मिल गया कि अपना गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय खुद का। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हाँ, जहां पढ़ाई होगी। और तीसरा कि टीचर्स यानी प्रोफेसर शिक्षक गण के विषय में जानकारी जरूर ले लेनी चाहिए, क्या कहेंगे आप?
1: सर, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वेल इक्विप्ड है, और फैकल्टी जो हमारे हैं अपने जो प्रोफेशनल है कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी के, उसके अलावा मेडिकल कॉलेज के हमारे जो प्रोफेशनल फिजिशियन हैं वो भी हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इसलिए हमारे को अपने फैकल्टी के साथ साथ एडवांटेज है मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी का भी, जो हमारे बच्चों की क्लासेस लेंगे।
0: नीरज जी, समय भागता चला जा रहा है और मेरी निगाहें स्टूडियो के घड़ी पर हैं, ज्यादा वक्त नहीं है। एक नया कोर्स जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी की, इसके विषय में अभी जानकारी आज हमने विस्तार से आपके साथ दी है। अगला एपिसोड भी आप ही के साथ बातचीत होगी जो लोग हमें सुन रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे सवाल आएंगे, खास करके कि एक बार फिर बताया जाए कि कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी होती क्या है, और ये सारी चीजें, तमाम चीजें, हाँ, हमारे युवा साथी उनके गार्जियन जरूर पूछेंगे। ये भी पूछेंगे कि रोजगार की क्या संभावनाएं, हालांकि आपने अभी जवाब दिया है बीते मिनट्स के अंदर, लेकिन हम एक बार चलते चलते एक बार फिर से कहेंगे कि रोजगार की क्या संभावनाएं हैं, जवाब दे दें, क्योंकि लोग इसके विषय में ज्यादा चिंतित होते

0: जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सरकारी में भी इसकी वैकेंसी निकल रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो चाहिए ही चाहिए इनको, बहुत सारे छोटे छोटे नर्सिंग होम भी हैं जो कार्डियक सर्जरी कर रहे हैं, वहां भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है। और कई दफा तो ये लोग इस कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स को ऑन कॉल भी बुलाते हैं, लाइक दे कैन अटैच विद मोर देन 10 or 20 हॉस्पिटल्स एंड ऑन कॉल दे कैन गो देयर एंड डू देयर ड्यूटीज। और इसके अलावा बाहर भी विदेशों में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। और अगर ये एकेडमिक्स में आना चाहते हैं तो दे हैव द स्कोप टू गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन MSc करके फिर दे कैन कम इन टू एकेडमिक्स।
1: थैंक यू नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से कार्डियो वेस्कुलर टेक्नोलॉजी BSc इन कार्डियो वेस्कुलर टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। चलने से पहले हम नंबर बता दें, 9431899002, 9431899002, तो राजेश को दें इजाजत, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
3: देवू भाई, एखन हमरा लोकन सुनलो इस प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद एकर संग अनुभव के चश्मा से कार्यक्रम के बेर आब संपन्न भ रहल अछि। हमरा लोकन फेर अगला सोम दिन अही दलान पर इस कार्यक्रम लकर आब आ आब खेती गृहस्थी में स्नेही किसान श्रोता भाई बहन लोकन के स्वागत करै छियनि।
4: हमहू करै छियनि, समस्त किसान श्रोता लोकन स्वागत करै छियनि, नमस्कार करै छियनि। आ चलै छी तनी उगना भाई तनी बाधबंदिस तऽ देखे रहल छियै कि ओना जो अखनका जे खेत में जे की छै जे हमरा लोकन जे नमी तऽ बनि गेल हँ, आब आवश्यकता अछि जे हमरा लोकन के जो छै जे खेत पथार के कोना तैयार करी, फसल के लेल बिया बाल कोना खसाबी, एहि पर आइ हमरा लोकन इहे से संबंधित आइ हमरा लोकन गपशप करब। गपशप के विषय अछि समेकित पोषक तत्व प्रबंधन।
3: देवू भाई, फसल जे हमरा लोकन उपजाबै छी तऽ ओकरा लेल हमरा लोकन के पोषक तत्व उचित भेटै फसल के व्यवस्था करय पड़ैत अछि। ताहि लेल हमरा लोकन खाद उर्वरक के व्यवहार करै छी तऽ ओहिमे रासायनिक खादक सेहो व्यवहार करै छी, संग संग जैविक खाद के सेहो व्यवहार करबाक चाही। कारण जैविक खादक व्यवहार कयला सँ रासायनिक खादक हमरा लोकन के बचत होइत अछि। जेना जो नील हरित शैवाल के व्यवहार करै छी जैविक खाद के रूप में तो नेत्रजन के मात्रा के बचत होइत अछि। तो अही प्रकारे अन्यान फास्फोरस अछि, स्फूर अछि, अन्यान पोषक तत्व सब अछि, तो ओकरो व्यवहार हमरा लोकन जो करै छी तो जैविक खाद आ रासायनिक खाद दुनू के उचित मात्रा में व्यवहार करै छी तो बेसी लाभ होइत अछि आ अर्थक बचत सेहो होइत अछि। जीवाणु खाद के व्यवहार करै छी तो
4: ठीक है कहलो है उगना भाई, जो उपजा बाड़ी में वृद्धि सेहो होइत अछि। समेकित पोषक तत्व प्रबंधन में केवल जैविक खाद का व्यवहार नहीं होते है, कारण जो ओई में पोषक तत्व के मात्रा कम होते है। किसान श्रोता लोकन रासायनिक उर्वरक के व्यवहार से पौध के केवल 1 से 2 पोषक तत्व प्राप्त होते है। समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के व्यवहार से फसल के संतुलित मात्रा में पोषक तत्व भेटते है आ रासायनिक उर्वरक 10 टन प्रति हेक्टेयर, जैविक खाद आ नील हरित शैवाल के मात्रा 1/4 कम कैल जा सकत अछि। जेना फास्फेट के बचत जैविक खाद के व्यवहार से कैल जा सकत अछि, ओना ही उगना भाई जे 10 टन बायोगैस सलरी कंपोस्ट बा जलकुंभी कंपोस्ट का व्यवहार से धानक आ गेहूँ में 30 किलोग्राम फास्फेट प्रति हेक्टेयर के व्यवहार से आन पोषक तत्व के

0: बचत सेहो कयल जा सकैत अछि।
1: ठीक है कहलो तो ई जे हमरा लोकन जे स्लरी के व्यवहार करै छी तो फास्फेट के सेहो बचत कयल जा सकैत अछि। तो ई रासायनिक उर्वरक अछि तो ओकर बचत भेल आ ओ जैविक खाद भेल।
0: जैविक खाद के संग ना भाई, जैविक खाद के संग फास्फेट क घुलनशील बनेबा वाला फास्को बैक्टीरिया जीवाणु के संग व्यवहार कयला सँ चूना युक्त आ अम्लीय माटि मे प्राप्त फास्फोरस के मात्रा के बढ़ाबैत अछि। 10 टन केला धर आ पात सँ बनल कंपोस्ट के व्यवहार सँ 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटास के बचत प्रत्येक धान आ गेहूँ फसिल में कयल जा सकत अछि। जँ एहि तरहे जो हमरा लोकनि जो समेकित पोषक तत्व के व्यवहार जो खेत पथार में करै छी तो ओकर जे छै जे उर्वरा शक्ति जो छै उगना भाई
1: माटि के अवश्य बढ़त
0: बनल रहत
1: आ फसलक गुणवत्ता सेहो बनल रहत। तो गपशप करब मुदा आब की विचार
0: बुझि रहल छी, खाली गपे सप होतै कि श्रोता लोकन के किछु रमन चमन सेहो न सुनेबनि। तब हमरा लोकन सुनै छी एकटा ई लोकगीत,
1: तो सुनल जाए।

0: एखन हमरा लोकनि सुनलहुँ ई नचारी दिवाकर सिंहके गाओल आ आब हमरा लोकनि भेंट वार्ता सुनै छी। बिखै अछि गर्मीमे पशुओं की देखभाल, भेंट वार्ताकार छथि संजय कुमार यादव आ हिनकासँ गप कऽ रहल छथि देवनारायण यादव। तऽ सुनल जाए दुनू गोटाके बीच भेल ई गपशप जे गर्मी मासमे पशुके कोना राखल जाए।
1: कार्यक्रम खेती गृहस्थीके अन्तर्गत आइ हम आयल छी कबीरचक गाम। ई गाम सदर प्रखंड के अन्तर्गत आबैत अछि। एतौके किसान के जो देख रहल छी बहुत ही कर्मठ छथि, मेहनती छथि आ जुझारू सेहो छथि। तऽ आउ एहि क्रम मे एतौके किसान से गपशप करी। श्रीमान अपने के की नाम भेल?
2: संजय कुमार यादव।
1: संजय कुमार यादव जी अपने की करै छियै?
2: अपने माल जाल रखै छी, खेती गृहस्थी करै छी।
1: वाह, बहुत सुन्दर काज करै छी संजय जी। अच्छा संजय जी, भारतीय अर्थव्यवस्था मे खेती के आ पशु के दुनू के एक दूसर के पूरक मानल गेलै। तऽ अहाँ के जे देख रहल छी बथान पर जे बहुत ही नीक नीक नस्ल के जो छै अहाँ गाय सेहो पालने छी, तऽ ई गर्मी मास मे संजय जी अपने माल मवेशी के कोना देख रेख करै छी?
2: देखियौ, गर्मी मास मे जे छै से 7 से 8 बजे तक माल जाल के सबके अंडर, ओकरा बाद में एक बेरा स्नान कऽ देलहुँ सवेरे में, आ ओकरा बाद जे छै से पंखा सेलिंग से लगा देने छियै और खान पान बढ़िया राखै छियै।
1: खान पान में अहाँ की सब दै छियै?
2: खान पान में वह भूसा छै, चोकर दै छियै, गहूम के दर्रा दै छियै, मकई के दर्रा देलहुँ ठंडा के लिए।
1: अच्छा संजय जी, तो बहुत खान पान के सेहो ध्यान रखै छियै, संग संग जो छै गर्मी मास में जे देखे रहल छै जे बाहर नीक जकाँ सावधानी सेहो रखने छियै। तो संजय जी, ई जो माल जाल जो अपने जो रखने छियै तो एकरा लेल जो छै देखै छियै कखनो काल के माल मवेशी के जे जेना आदमी के देखै छियै कि कखनो काल के मन अस्वस्थ भऽ जाइ छै, तऽ मान लिया जे माल माल जाल के कोनो तरह जे मान ले मन अस्वस्थ भऽ गेल तऽ ओकरा पहचान अहाँ केना करै छियै?
2: माल जाल जे है से जुगाली केना जे है से कम कऽ देलक, मन अस्वस्थ रहल, मन उगर देखलिए सुस्त टाइप के, भोजन नहीं केलक ठीक से,
1: तो मान ये सब लक्षण देख के हाँ बुझ जाए तबियत जो छे मन अस्वस्थ है। अच्छा, तो आई लेल जो छे अपने उपचार जो छे अपने करे छे या कोई पशु चिकित्सक से सेहो सलाह ले छे?
2: पशु चिकित्सक से सलाह ले छे।
1: अच्छा, पशु चिकित्सक से सलाह ले लो आ जे निर्देश दिलक ओकरा अनुसार अपने जो छे ओकरा दवा दारू कैलो। अच्छा, कखनो काल के जे देखै छियै कि ओकरा थनैला रोग भऽ जाइ छै, तऽ थनैला रोग भेला पर जे छै संजय जी जे दूध दै दूध माल जाल के दूध पर सेहो असर पड़ै छै, तऽ थनैला रोग जो होइ छै तऽ एकरा लेल जे छै की सब अहाँ करै छै बचाव के लेल? जे छै
2: ओहिसँ बचाव के लेल पहिले घरेलू उपचार करै छी, जेना धनिया के पत्ता होइ छै ओ सब दै छियै, सुसुम पानी से ओकरा थन के धोलहुँ, ओकरा बाद जे छै से साफ सुथरा में रखलहुँ आ नहि ओकर बाद भेल तऽ डॉक्टर से परामर्श लेलहुँ।
1: हाँ हाँ, डॉक्टर से परामर्श सेहो लेलहुँ। अच्छा, कखनो काल के देखै छै माल मवेशी के खुरहा रोग भऽ जाइ छै, मुँह पक्का रोग भऽ जाइ छै, तऽ एकरा लेल तऽ सेहो माने सावधानी कहबी तो छै सतर्कता गेल आ दुर्घटना भेल, तऽ एहि लेल जे छै अहाँ तऽ सावधानी तऽ देखिए रहल छी, साफ सफाइ बहुत जरूरी छै। ओनाहियो माल मवेशी जतौ स्थान रहैत अछि ओतौ के जो स्थान अछि स्वच्छ रहबाक चाही, वातावरण जो छै जे हवादार हेबाक चाही, पशु के जतौ बान्हल जाइ छै ओ स्थान जो है हवादार हेबाक चाही। तऽ अपने जो छै खुरहा रोग आ मुँहपका लेल तऽ छै सेहो एकटा बीमारी छै, एहि लेल बचाव लेल सेहो अहाँ की करै छी?
2: एहिसे एहिके लेल तऽ हम पहिले घरेलू उपचार केलहुँ, नीम के छाल गरम पानी में उबाइल कऽ कऽ ओकरा सुबह शाम धोलहुँ बढ़िया से, ओकरा बाद जे है से फिनाइल से सेहो धोलहुँ, ओकरा बाद फिर डॉक्टर से परामर्श लेलहुँ।
1: बहुत ही नीक विचार अछि जे अपन सबसे पहले तो अपने घरेलू उपचार कयलहुँ।

0: निलोपचार कऽ कऽ जे छै तहन माल मवेशी के सेहो जे छै अपने जे एकरा दिशा निर्देश लऽ कऽ तहन माने इलाज एकरा कराबै छियै। अच्छा संजय जी, अपने जे छै जे देखै छी जे अखनका समय मे जे छै खान पान मे जे अहाँ जो कहबे कयलहुँ हैं संग संग छै हरा चारा के सेहो व्यवस्था अहाँ करैत होबै, हरा चारा के व्यवस्था केना की करै छियै, अपने लाबै छियै या कोई माने बाधवन मे चढ़ाबै छियै?
1: नहि नहि, काटि कऽ अपने से बाप केलहुँ, सुजान केलहुँ, जनेर केलहुँ, ओकरा बाद काटि कऽ लेलहुँ, सानी मे खियेलहुँ।
0: ओ सानी मे मिला कऽ खिलेलहुँ, ताहि दुआरे अहाँके देख रहल छी जे माल जाल बहुत ही नीक मतलब देखमे आबि रहल छै, माने खान पान पर विशेष रूपसँ अहाँ ध्यान रखै छी। संजय जी, अपने से माल मवेशी विषय पर गप शप कऽ कऽ बहुत नीक लागल, एहि लेल अपने के बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: एखन हमरा लोकनि सुनलहुँ ई भेंट वार्ता, बिखे छल गर्मीमे पशुओं की देखभाल। भेंट वार्ताकार छला संजय कुमार यादव आ हिनका से गप कऽ रहल छला देव नारायण यादव। तऽ दुनू गोटे के बीच भेल ई गप सब सुनलहुँ जे पशु के कोना नीक जकाँ गर्मी मास में रखबाक चाही, संगे किछु जे संक्रामक बीमारी होइत अछि ओकरा लेल निश्चित रूप से ध्यान रखबाक चाही, जे एकटा उपाय अछि टीकाकरण, खुरपका मुँहपका एहि सबसे बचबाक लेल टीकाकरण करेबाक चाही। एकर संग संग गर्मी मास में जे एकरा हमरा लोकनि आहार दै छी ताहू पर ध्यान रखबाक चाही। तो बड़ नीक जकाँ बुझा कऽ संजय यादव जी हमरा लोकनि के जनतब देलन। आ देवू भाई,
3: हाँ हाँ,
2: आब स्नेही किसान श्रोता भाई बहिन लोकनि के मौसम संबंधी जे हमरा लोकनि के कृषि में बड़ ओकर मोल अछि, तऽ ओहि पर आधारित जे समसामयिक कृषि कार्य अछि ताहि प्रसंग में हमरा लोकनि किछु गपशप कऽ लैत छी। जेना एखन खेत में उपयुक्त नमी आ पूर्वानुमानित अवधि में शुष्क मौसम के देखैत खरीफ मकई के बाग हेतु खेत के तैयारी कऽ लेबाक चाही आ एकरा बाउ सेहो कऽ लेबाक चाही। अंतिम जोतक बेर में 100 से 150 क्विंटल सरल गोबरक खाद संग संग 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस आ 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के दर से व्यवहार कऽ सकै छी। खरीफ मकई के उन्नत प्रभेद अछि शक्तिमान 2, शक्तिमान 3, शक्तिमान 6, राजेंद्र शंकर मक्का 3, इसब एकर अनुशंसित प्रभेद अछि, तऽ एकरा बाउग करबाक चाही। जे किसान भाई बहिन लोकनि लग पटौनीक सुविधा उपलब्ध होइन ओ लोकनि बेसी दिन धरि वला जो धान लगबा चाहैत छथि तऽ लगा सकैत छथि। ओकर उन्नत प्रभेद अछि राजश्री, राजेंद्र मसूरी, स्वर्णा, स्वर्णा सर 1, PPT 5204 आदि, ई सब प्रभेद अनुशंसित अछि जे 10 जून धरि एकर बीया बीज स्थली में खसेबाक हमरा लोकनि के प्रयास करबाक चाही। जतेक क्षेत्र में धान के हमरा लोकनि के रोपबाक हो ओकर दशांश हिस्सा में बीया के नर्सरी हेत खसाबी। बीया के खसेबा से पहिने 1.5 ग्राम वेबिस्टीन दवाई से प्रति किलोग्राम बीया के उपचारित कऽ दिए, तखन एकरा बीज स्थली में खसाबी।
3: बहुत नीक गप कहलहुँ उगना भाई, जे हमरा लोकनिके जे छै खेती बाड़ी

0: के समयो अखन जो छे उपयुक्त अछि, किएक तऽ हमरा लोकनि के जो छे कहबितो छे समय से पहले चेत किसान, तऽ अखन जो बेर अछि खरीफ धान के बिया के खसेबाक उपयुक्त समय थी। आ ओनाहियो देखिए रहल छी जे खेत पथार में जो छे जो नमी सेहो भऽ गेल अछि, तऽ नमी भेला से किसान श्रोता लोकनि माने बीज स्थली में धानक बिया खसा सकै छथि। संग संग खेती बाड़ी के संग संग हमरा लोकनि के जो छे उगना भाई जे मौसम के देखत आ तापमान के देखत जे हमरा लोकन के दुधारू पशु का सेहो ध्यान रखबाक चाही, कारण जे ज्यादे बेसी धूप में दुधारू पशु के छोड़ला से जे ओकर दूध पर असर सेहो पड़े लगत अछि। तें समय से पहले जे छायादार आ हवादार स्थान पर रखबाक चाही। संग संग मवेशी के प्रतिदिन 50 ग्राम नमक, 50 ग्राम खनिज मिश्रण आ 50 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट देबाक चाही। बेसी दूध देवे वाला गाय के बाईपास फैट आ बाईपास प्रोटीन खुएबाक चाही। आ फ्रिजियन संकर गाय के दिन में 4 से 5 बेर नहेबाक चाही। मूंग आर उड़द के तैयार फली के तोड़ के हरियर खाद लेल मूंग आ उड़द पौध के माट पलटे वाला हल से जमीन में गाड़ देबाक चाही। जो एहि तरह जे हमरा लोकनि जो छे जे हरियर खाद में जो ओकर व्यवहार करै छी उगना भाई, तो ओकर पोषक तत्व बुझू जे खेतक जो पोषक तत्व या ओ बुझू जे बनल रहैत अछि।
1: ठीके कहलहुँ। खरीफ प्याज के खेती के लेल नर्सरी के तैयारी कऽ सकै छी बीज स्थली के। स्वस्थ पौध के लेल नर्सरी में गोबरक खाद अवश्य दिए। खरीफ प्याज के लेल N53 एग्रीफाउंड डार्क रेड अर्का कल्याण भीमा सुपर ई सब अनुशंसित प्रभेद अछि। प्याज के बिया के हमरा लोकन के प्रमाणित स्रोत से लेबाक चाही। बिया के बीज स्थली में खसेबा से पहिने एकरा उपचारित कऽ लियैक। बिया के दर 810 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर धरि आवश्यकता पड़ सकैत अछि। हरदि के बाग हमरा लोकनि के कऽ लेबाक चाही। हरदि के उन्नत आ अनुशंसित प्रभेद अछि राजेंद्र सोनिया, राजेंद्र सोनाली। ई उत्तर बिहारक लेल बड़ नीक प्रभेद मानल गेल अछि जे अनुशंसित अछि। बाग से 25 से 30 दिन पहिने प्रति हेक्टेयर 25 से 30 टन गोबरक सरल खाद खेत में दे दिए आ अंतिम जुताई में नेत्रजन 60 से 75 किलोग्राम, स्फुर 50 से 60 किलोग्राम, पोटास 100 से 120 किलोग्राम दिए।
0: अहाँ हरद के गप कहलहुँ हैं उगना भाई, संग संग जो छे हमरा लोकन के जो छे बाड़ी झाड़ी में जो तीमन तरकारी लगेने छी ओहो पर हमरा लोकन के विशेष कऽ कऽ ध्यान राखे पड़त, कारण जे देखबे करै छिए कि जखने जे माने लत्ती फत्ती जहाँ मूरी उठाबे लगै छै कि अनोखो तरह कीट व्याधि के समस्या उत्पन्न होय लगैत अछि। तऽ सबसे पहले तऽ हमरा लोकन के जो छै जे घरेलू उपचार जे होइ छै जेना राख भेल, घरक जो राख होइया छार होइया, तो भिनसर काल का जो छै ओहि काल में जो छै हमरा लोकन के जे लत्ती फत्ती पर जे छिटला सँ जो कीट व्याधि से सेहो बचाव भऽ सकैत अछि। ओकर उपरान्त जो छै हमरा लोकन जो छै विशेष प्रभाव पड़ला पर हमरा लोकन कृषि विज्ञानी से सलाह लऽ कऽ सेहो ओकर उपचार हमरा लोकन खेतीबाड़ी में कऽ सकै छी।
1: ठीके कहलहुँ। आ देवू भाई, कीटनाशक के जे हमरा लोकन छिड़काव करै छी तऽ ताहू में सावधानी रखबा।
0: हाँ हाँ, अहाँ तऽ एकदम मनक बात कहलहुँ उगना भाई।
1: एहि दुआरे जे जो सावधानी नहि राखब तऽ ओकर देह पर विपरीत प्रभाव पड़ैत अछि। विशेष रूपसँ जखन हवा चलैत रहए तऽ कीटनाशकके छिड़काव नहि करबाक चाही, कारण ओ विपरीत दिशामे हवाके कारणे उड़त तऽ फेर आँखि नाक देह पर पड़बाक सम्भावना रहैत अछि। आ दवाइ हवा में जतय देबऽ चाहब ओतय नहि पड़ि कऽ उड़ि जायत। तऽ अहू पर ध्यान राखी जे हवा जो चलए तऽ कीटना

0: तक दवाई के छिड़काव नहीं करवा।
1: मैंने कहबा तात्पर्य भिनसर काल का जो जखन बसात नहीं बहे वही काल में हमारा लोकन के कीटनाशी दवा के छिड़काव करवा चाहिए।
0: अहिक संग आब आजुक खेती गृहस्थी के बेर सम्पन्न भ रहल अछि तो स्नेही किसान श्रोता भाई बहन लोकन से चलबाक आज्ञा लै छियनि।
1: नमस्कार उगना भाई।
0: नमस्कार देवू भाई।

किसान भाइयों के लिए आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम खेती गृहस्थी। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में।

0: आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कुछ ही देर बाद अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के,
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
6: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
7: हर लेन देन अब है आसान।
8: बाढ़ से बचने के उपाय, आपातकालीन किट हमेशा अपने पास रखें, जिसमें एक छोटी रेडियो, टॉर्च, बैटरी, मजबूत रस्सी, माचिस, मोमबत्ती, पानी, सूखा भोजन, खाद्य सामग्री आदि साथ हो। घर के सभी सदस्यों को नजदीकी सुरक्षित आश्रय का पता हो। बच्चों को बाढ़ के पानी में खेलने से रोकें, सांपों एवं अन्य जहरीले जंतुओं से बचकर रहें। चेतावनी व सुझाव के लिए रेडियो सुने या टीवी देखें, अफवाह पर ध्यान न दें और न ही घबराएं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
9: जिस ऊंचाई पर तिरंगा होता है वहाँ लापरवाही नहीं पहुँचनी चाहिए। भारतीय ध्वज न सजावट है, न परिधान और न प्रचार का माध्यम।
10: भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार तिरंगे का आकार, रंग और स्वरूप पूरी गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त ध्वज कभी नहीं फहराया जाना चाहिए। और याद रखिए, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत कानूनी अपराध है। ये नियम डराने के लिए नहीं, सम्मान सिखाने के लिए है।
9: क्योंकि तिरंगे का सम्मान देश का सम्मान। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
11: नमस्कार, मैं दीपक प्रकाश, मंत्री पंचायती राज विभाग। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबों के सामाजिक जीवन में, देश के राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में और साथ ही साथ जो हमारा देश का इतिहास है, उन सबों में आकाशवाणी का एक विशेष रोल रहा है। आजादी की लड़ाई हो या विभिन्न कालखंडों में जन आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने का काम हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने कमेंडेबल काम किया है। हम सबों के बचपन की यादें भी आकाशवाणी से जुड़ी हैं। क्रिकेट की कमेंट्री आकाशवाणी पे सुननी हो, पुराने गाने आकाशवाणी पे सुनने हो, या सभी विद्यार्थियों के लिए टॉक शोज के माध्यम से ज्ञानवर्धन करने की बात हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने काम किया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ आकाशवाणी ने अपने को बदलने का भी काम किया है। एनालॉग से डिजिटल तक का सफर आकाशवाणी का विशेष रूप से कमेंडेबल है। आज के इस चकाचौंध और दिखावटी मीडिया के दौर में आकाशवाणी का एक विशेष स्थान है, जो कि हमें अपने जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। आकाशवाणी का विशेष रूप से हम धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहेंगे, आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबों के बीच किया जाने वाला मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है। एक बार पुनः आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे करने के लिए बधाई देते हुए, और आकाशवाणी हम लोगों के बीच

0: जीवन का और हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, आज के युवा आकाशवाणी से जुड़े, इस बात की शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आकाशवाणी 90 वर्ष का हो रहा है, 8 जून 2026 को आकाशवाणी की आयु 90 वर्ष पूरी हो रही है और इसके लिए हम आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं को और आकाशवाणी से जुड़े तमाम पदाधिकारियों कर्मियों को हम बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि यह आकाशवाणी वह एक माध्यम है कि गांव का एक गरीब भी देश की स्थिति परिस्थिति से वाकिफ होता है। और हम सब बचपन में रेडियो सुनते थे और यही रेडियो हमको देश और प्रदेश की सारी खबरें सुनाता। आज टेलीविजन के दौर शुरू हो गए हैं और आज भी टेलीविजन के दौर होने के बावजूद आकाशवाणी के खबरों की प्रासंगिकता उतनी ही है। इसलिए 90 वर्ष पूरे होने पर मैं आकाशवाणी परिवार को अपनी ओर से और अपनी सरकार की ओर से बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। आप सभी को बहुत बधाई।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में गरीब कल्याण और समावेशी विकास को मिली नई गति। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी। जी राम जी योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मिली स्वीकृति। विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए एनडीए के 9 और महागठबंधन के 1 उम्मीदवार ने नामांकन किया। और आकाशवाणी लोक प्रसारण सेवा के गौरवशाली 90 वर्ष आज पूरे, देश भर से मिली शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्षों की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का सपना साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी,
3: देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे,
4: ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
5: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: इधर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज हुई बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में विकसित भारत, रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन, ग्रामीण जी रामजी योजना को स्वीकृति दी गई। ये योजना आगामी 1 जुलाई से राज्य में लागू होगी। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 के रबी मौसम से राज्य में पुनः लागू करने की मंजूरी दी। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत बिहार शरीफ, हाजीपुर, बेगूसराय और सहरसा में जलापूर्ति तथा सीवरेज परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा जल जीवन मिशन 2.0 के क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की सैद्धांतिक सहमति भी दी गई। बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को मई, जून और जुलाई महीने की पेंशन राशि के भुगतान के लिए 3,662 करोड़ रुपए से अधिक की अग्र

0: स्वीकृति भी दी गई। विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है। एक रिपोर्ट।
1: नामांकन के अंतिम दिन आज प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज रहीं। विधानसभा परिसर में दिन भर नेताओं और समर्थकों की आवाजाही बनी रही। सत्तारूढ़ एनडीए के 9 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। जनता दल यूनाइटेड की ओर से मंत्री निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई सीट के उपचुनाव के लिए ललन प्रसाद ने नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भोजपुरी फिल्म अभिनेता से नेता बने पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित ने नामांकन पत्र दाखिल किया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अशरफ अंसारी ने भी पर्चा भरा, जबकि महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने नामांकन दाखिल किया। राज्य मंत्रिमंडल में शामिल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता दीपक प्रकाश ने नामांकन दाखिल नहीं किया। एनडीए उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय

0: रामविलास के अशरफ अंसारी ने भी पर्चा भरा, जबकि महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने नामांकन दाखिल किया। राज्य मंत्रिमंडल में शामिल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता दीपक प्रकाश ने नामांकन दाखिल नहीं किया। एनडीए उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी सहित कई मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद रहे। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 11 जून है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
1: लोक जनशक्ति पार्टी आर के उम्मीदवार अशरफ अंसारी ने नामांकन भरने के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए पार्टी के प्रति आभार जताया और कहा कि वे पार्टी के उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे।
2: ये हमारे जीवन के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। हमारी पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का विश्वास, उसका ये नतीजा है हम जैसे मामूली कार्यकर्ता के लिए। और हम प्रयास करेंगे कि आगे भी उन सभी लोगों के प्रयास और विश्वास पर खरे उतर सके।
1: पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि संगठन के हर सदस्य को आगे बढ़ने का समान अवसर प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है।
3: ये बड़ा दिन है, पार्टी ने अपने पुराने ईमानदार कार्यकर्ता को मौका देने का काम किया जो कहीं ना कहीं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को मजबूती देने का काम करती है।
1: इधर जदयू उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने अपने ऊपर भरोसा जताने के लिए पार्टी को धन्यवाद दिया।
4: पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास किया है, भरोसा किया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जो भी विश्वास पार्टी ने किया है उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। जो भी दायित्व मुझे मिली है जिसे मैं ईमानदारी से, निष्ठा से निभाऊंगा। और मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार जी ने जो विकसित बिहार, समृद्ध बिहार का सपना देखा उसे पूरा करूंगा।
1: पार्टी उम्मीदवार भारती मेहता ने कहा कि वे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदर्शों पर चलते हुए नारी सशक्तिकरण के प्रयास को और सुदृढ़ करेंगी।
5: आदरणीय नीतीश कुमार जी के नीति और सिद्धांत को धरातल पर उतारना, जिस तरह उन्होंने बेटियों को सशक्त किया है, वो किसी भी स्थिति में बिहार में आगे बढ़ता जाए, वो धारा चलती रहे, वो धारा आगे बढ़ती रहेगी। हर राजनीतिक दल ने अपने अपने उम्मीदवारों पे विश्वास किया है और सबको शुभकामना है।
1: इधर राजद से विधान परिषद सीट के उम्मीदवार सुनील कुमार सिंह ने कहा है कि पार्टी की संख्या बल भले कम हो, हम पार्टी के झंडे को नहीं झुकने देंगे।
6: इसके लिए ने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी और जो हमारे नेता हैं आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनके प्रति भी हम आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने पुनः मेरे ऊपर विश्वास किया है। राष्ट्रीय जनता दल का जो मेरा झंडा है, चाहे मेरी संख्या कितना भी हो सदन में, झुकने नहीं देंगे। और जिस कारण मुझे पुनः सदन में भेजा है, 100% मैं खरा उतरूंगा।
7: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने उन अटकलों को खारिज किया है जिसमें उनके पुत्र दीपक प्रकाश को विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं बनाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करने की बात कही गई थी।
1: नाराजगी का क्या सवाल, बाकी उसके लिए क्या है, फिर नहीं मिली मिलेगी।
2: अरे मंत्री जब तक एनडीए के नेता सब लोगों ने मिलकर बनाया है, जब तक के लिए बनाया है बने रहेगा। सदन की सदस्यता जब आवश्यकता होगी हो जाएगी, उसके लिए क्या चिंता है।
0: आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिसे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।

0: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को शुभकामनाएं दी हैं।
2: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
1: भारतीय जनता पार्टी के विधायक और बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक डॉक्टर संजीव चौरसिया ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर शुभकामनाएं दी हैं।
3: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी के सभी परिवारों को बहुत बहुत शुभकामना है। आकाशवाणी अपने आप में ये जन जन की आवाज और आगाज है। आकाशवाणी की जो प्रामाणिकता थी न्यूज के संदर्भ में, यानी कि हर लोगों की जुबा पे आकाशवाणी की ही आवाज की इंतजार रहती थी। 90 वर्ष विश्वास का वर्ष, एक अपने आगाज और आवाज का वर्ष। इस 90 वर्ष के लिए आकाशवाणी को इस यात्रा तय करने के लिए बहुत बहुत शुभकामना, बधाई।
1: आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने इसे आवास क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव बताया, जिससे लाखों गरीब परिवारों के लिए सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में समावेशी विकास को नई गति मिली है और गरीब कल्याण योजना पूरे विश्व के लिए उदाहरण बन गई। प्रदेश में उमस भरी गर्मी का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ 40.5 डिग्री सेल्सियस के अधिकतम तापमान के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। इस दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर हल्की बारिश भी दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने प्रदेश के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व के कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई है।
4: दिनांक 9 जून राज्य के समस्त उत्तर एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 48 घंटे के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।
1: पश्चिम चंपारण जिले के बलथर और भंगहा क्षेत्र में अलग अलग कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कार पर लदे 111 क्विंटल से अधिक गांजा के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने ठगी गिरोह का खुलासा करते हुए 3 अंतर्राज्यीय ठग को गिरफ्तार किया है। औरंगाबाद जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत देवमोड़ के पास एक पर्यटक बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर में 3 पर्यटकों की मौत हो गई, वहीं 20 अन्य पर्यटक घायल हो गए। घायलों में 8 की हालत गंभीर बनी हुई है। रोहतास जिले में नोखा थाना क्षेत्र अंतर्गत 70 बिगहवा गांव के पास एक ऑटो और पिकअप वाहन की आमने सामने की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक ही परिवार के 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 6 ग्राम स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक 4-पहिया वाहन और 1.25 लाख रुपए नकद भी बरामद किया है। अररिया जिले के आरएस थाना क्षेत्र से पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक 4-पहिया वाहन से 228 लीटर बियर बरामद किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में गरीब कल्याण और

0: समावेशी विकास को मिली नई गति। राज्य मंत्री परिषद की बैठक में 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी। जी राम जी योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मिली स्वीकृति। विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए एनडीए के 9 और महागठबंधन से एक उम्मीदवार ने नामांकन किया। और आकाशवाणी लोक प्रसारण सेवा के गौरवशाली 90 वर्ष आज पूरी। देश भर से मिली शुभकामनाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पूर्वी चंपारण जिले की हलचल। आलेख हमारे संवाददाता आलोक कुमार का है। इसे प्रस्तुत कर रही हैं अंशु अवस्थी। पूर्वी चंपारण जिले में तीसरे चरण के सहयोग शिविर का आयोजन आगामी 16 जून को किया जाएगा। शिविर को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने बताया कि पदाधिकारियों को प्रखंड एवं पंचायत आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1100 पर सुबह 8 से शाम 8 तक जानकारी प्राप्त कर सकता है। डीएम ने कहा कि परिवाद दर्ज के 30 दिनों के भीतर आवेदन का निष्पादन कर दिया जाएगा। इससे पूर्व जिले के विभिन्न स्थानों पर आयोजित सहयोग शिविर में बड़ी संख्या में आम लोगों ने भाग लिया। ईख विकास के उपनिदेशक द्वारा बीते दिनों एक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के अंतर्गत भुगतान की स्थिति, गन्ना सर्वे, गन्ना यंत्रीकरण, क्षेत्र विस्तार योजना तथा ईख मूल्य भुगतान की गहन समीक्षा की गई। बैठक में परिक्षेत्र की चीनी मिलों एचपीसीएल सुगौली, एचपीसीएल लौरिया, मंझौलिया चीनी मिल, न्यू स्वदेशी चीनी मिल, नरकटियागंज, हरिनगर चीनी मिल और भारत चीनी मिल सिंगवलिया के महाप्रबंधक एवं संबंधित प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जिले में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से मेगा कृषि ऋण जन संपर्क शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जिले भर से जीविका समूह की सदस्याओं एवं किसानों ने भाग लिया। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा 2026 जीविका समूह की सदस्याओं के बीच 51 करोड़ रूपए का ऋण वितरित किया गया। इधर 10 जून को होने वाली बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की अधिनायक लिपिक परीक्षा को कदाचार मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। अपर समाहर्ता मुकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 7896 परीक्षार्थी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा के स्वच्छ एवं निष्पक्ष संचालन के लिए एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। अब प्रस्तुत है पश्चिम चंपारण जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष कुमार।
7: पश्चिम चंपारण जिले के आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बीते दिनों राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन ने जिले के 3 प्रखंडों में आयोजित सहयोग शिविर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद बेतिया सर्किट हाउस में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं का पंचायत स्तर पर ही त्वरित गति से समाधान किया जाएगा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निर्धन किसान, मजदूर, महिलाओं एवं जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इधर केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने बीते दिनों बगहा पुलिस जिला के रामनगर स्थित खटौरी गांव में एक निजी हाईटेक हैचरी प्लांट का शुभारंभ किया। यह अत्याधुनिक यूनिट प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत स्थापित की गई है, जिसका संचालन क्षेत्र के युवा उद्यमी रवि शंकर नाथ तिवारी द्वारा किया गया है। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि यह परियोजना

0: न केवल व्यवसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि क्षेत्र के युवाओं के लिए आधुनिक पशुपालन एवं उद्यमिता का प्रशिक्षण केंद्र भी बनेगी। जिले में मखाना की खेती एवं मखाना व्यवसाय को लेकर किसानों के बीच उत्साह तेजी से बढ़ रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री के रोजगार लेने वाला नहीं रोजगार देने वाला बनो के संदेश से प्रेरित होकर बैरिया निवासी युवा किसान रंजीत कुमार चौधरी ने बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी नौकरी छोड़कर मखाना उत्पादन एवं मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अपनी अहम पहचान बनाई है। रंजीत कुमार चौधरी ने दरभंगा से मखाना व्यवसाय की शुरुआत की। शुरुआत में वे दरभंगा से कच्चा मखाना लाकर बैरिया में उसका प्रोसेसिंग एवं मैन्युफैक्चरिंग कार्य करने लगे। धीरे धीरे उनका कारोबार बढ़ता गया और आज उनके द्वारा तैयार मखाना देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ विदेशों तक भी भेजा जा रहा है। बगहा SSB 65वीं बटालियन के ग्राउंड में 227 पुलिस जवानों का पासिंग आउट परेड का आयोजित किया गया। वहीं नरकटियागंज स्थित SSB के 44वीं बटालियन के ग्राउंड में 152 पुलिस जवानों का पासिंग आउट परेड संपन्न हुआ। बगहा के परेड में IG ट्रेनिंग अनुसुईया रण सिंह साहू शामिल हुई, जबकि नरकटियागंज में IPS महानिरीक्षक सशस्त्र सीमा बल निशांत कुमार उज्ज्वल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। महानिरीक्षक ने सभी प्रशिक्षुओं से अपने दायित्वों का पूर्ण समर्पण के साथ निर्वहन करने का आह्वान किया। बीते दिनों पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार सांसद चले गांव की ओर कार्यक्रम के तहत अपने क्षेत्र में निकले। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क पुल और जल निकासी से जुड़ी समस्याएं उठाई। जमीनी हकीकत से रूबरू होते हुए सांसद ने समस्याओं के शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया।
1: अभी आप सुन रहे थे पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण जिले की हलचल।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं गजल। कलाकार हैं हरिहरन।

हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़, साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर आप सुन रहे हैं आज की हमारी सांतकालीन सभा के कार्यक्रम। श्रोताओ, समय हो चला है फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम की शुरुआत बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा के इस गीत से। शब्द समीर के हैं, गायक कलाकार बप्पी लहरी।

बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में बनी ये फिल्म थी प्रेम प्रतिज्ञा। श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्म का वो गीत जिसे गाया था बप्पी लहरी और आशा भोसले ने। कुछ प्यार भरे फिल्मी गाने आप सुन रहे हैं। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत आपको सुनवाते हैं आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म बेताबी से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार।

सूचना शिक्षा और मनोरंजन एक साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। आप सभी सुनने वालों को आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर ढेर सारी बधाइयां। जी हां श्रोताओं, आज है 8 जुलाई। आज ही के दिन 8 जुलाई सन 1936 को ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना हुआ, जो बाद में सन 1956 में आकाशवाणी के नाम से आपके बीच जानी जाती है। कुछ प्यार भरे फिल्मी गाने हम आपको सुनवा रहे हैं। अपने सुनने वालों को याद दिला दें, आज ही रात 10 बजे से आप सुन सकेंगे अपनी पसंद के पुरानी फिल्मी गीतों का हमारा जीवंत फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारा ये नंबर याद रखें, 9430029353। हेलो आकाशवाणी, इस कार्यक्रम का समय याद रखें आज ही रात 10 बजे से 11 बजे के बीच। आइए ना इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत फिल्म नगीना से।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में बनी ये फिल्म थी नगीना। गीत रचना जावेद अख्तर की थी, गायक कलाकार थी अनुराधा पौडवाल। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं आज की हमारी दूसरी सभा के कार्यक्रम। इस समय रात के 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारा ये मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।

श्रोतागण नमस्कार। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहारक आजुक अंकक संग हम नीतू। आ सबसे पहिने सब गोटे के हार्दिक शुभकामना जे आई 8 जून अछि, तऽ आजुक दिन बड्ड विशेष अछि, किएक तऽ आई 90 वर्ष अपन सभक आकाशवाणी जे अछि से पूरा कऽ गेल। आ एहि पूरा ई सफर जे अछि, पूरा जे यात्रा अछि, एहि यात्रामे सब गोटेके सहभागिता, सभक सहयोगसँ ई यात्रा पूर्ण भेल अछि। आ पूर्णताके के कहैए, कोनो चीज अपूर्णे रहैत अछि। एहि लऽ कऽ कि हमसभ जीवनके जे यात्रा अछि, कहै छै ने, जा धरि साँस अछि ता धरि आस अछि। तऽ हमसभ निरन्तर अपन जे श्रोता छथि हुनका सङ्ग जुड़ल रही, कार्यक्रमके जखन ओ प्रोत्साहित करै छथि, अपन सुझाव प्रतिक्रिया पठबै छथि, तऽ एहिसँ की होइए, आर बेसी सम्बन्ध जे छै से प्रगाढ़ होइत जाइए। आ कहल गेल अछि ने, जे कोनो काज करै छी तऽ केओ कहि दै छथि ने एक बेर जे आहा बड्ड नीक भेल, तऽ मात्र शब्द अछि, मुदा ओ शब्द जे छै से ओ भीतर तक हमरा सभके हृदयके छू जाइए, ओ स्पर्श कऽ जाइए। ओहि स्पर्शसँ हमसभ बुझाइए जे हम जीव गेलहुँ, आओर काज करबाक जे उत्साह अछि से अतेक बढ़ि जाइए जे होइए जे हम कतेक भऽ सकै, जतेक भऽ सकै 100 गुना एहिमे, 100% एहिमे दऽ दी जे ई नीक भऽ सकै। आ अहाँसभ सदिखन कार्यक्रमसँ जुड़ल रही, तऽ आधा घंटा धरि अहाँ सभक बीच रहब। आ की होइए जे कार्यक्रम एहन माध्यम अछि जे अपन सभक गप जे छै से एक दोसरके बीच स्थापित होइए, आ जखन संवाद स्थापित होइए तखन सम्बन्ध कहि सकै छी स्थापित होइए। विचारके आदान प्रदानेसँ एक दोसराके नीकसँ बुझि पबै छी। आ अपन सभक जे मिथिला क्षेत्र अछि, ओ मिठगर बोली आ स्वादिष्ट भोजन लेल प्रसिद्ध रहल अछि। कहै छियै ने जे कतौ अगर अहाँके नहि भेटत, अहाँ मिथिला चलि जाउ, ओतुका जे सचार अहाँके भेटत, अतेक अहाँके स्वादिष्ट भोजन भेटत, विन्यास भेटत, अचारके जे सचार अहाँ देखब तऽ अहाँ गिन नहि सकब, तते तरहके अचारे बनैए मिथिलामे। तऽ एतुका जतेक अहाँ वर्णन करब, जतेक अहाँ जतेक ठाम जाएब, मुदा मिथिलाके कखनो नहि बिसरि सकब, किएक तऽ अपनासभ कतौ जाइ छी, कतौ घूमै लए जाइ छी तऽ तकैत रहै छी कतौ नीक भोजन भेटत, नीक खेनाइ भेटत, तखने जाकऽ मोन एकदमसँ तृप्त होइत अछि। आ मुदा एखुनका जे ऋतु अछि ने, से स्वादिष्ट भोजन तऽ मंगैए, होइए जे खूब स्वादिष्ट भोजन करी, मुदा जे स्वास्थ्यके लेल हितकर अछि, स्वास्थ्यवर्धक अछि, वएह खेनाइ खायब आवश्यक अछि। एखुनका रौद जतबे अप्रिय लगैत अछि, ओतबे जाड़मे ई बड्ड प्रिय लगैए। रौदक प्रकोपसँ प्रकृति जे अछि से एखन दग्ध भऽ गेल अछि, एकदम तपा गेल अछि, पैर जे धरब से नहि राखल होइए, होइए जे केना जाउ बाहर, एकदम सोचऽ पड़ैए, होइए कखन बरखाके बुन्न पड़त, आ कतौसँ मोन एकदमसँ तृप्त होयत। आकाशक मात्र आस अछि जे बरखाके बुन्न पड़िते भूख प्यास सबटा ई मेटा देत। आ बुझै छियै जखन मौसम ऋतु जेहन ठीक रहैए तखने आनो नीक लगैए, ओना आनो अहाँके कतबो अहाँ स्वादिष्ट भोजन सचार लगा लिअ, मुदा अहाँके नीक नहि लागत। आ तखन सभटा काज जे छै से

ओ तखने उसरैए जखन अहाँके ऋतु सङ्ग देत, ऋतु नीक रहत। देखै छियै ने जाहि दिन एकदम ऋतु ठण्डायल रहै छै ओहि दिन हैत जे कोन काज जल्दीसँ कऽ ली, मतलब नीक लागत भीतरसँ, बुझाए जेना जे आइ एकदम सभ काज हम कऽ सकै छी। ओहिमे लिखबाक काज तऽ एकदमे नहि उसरत, किएक तऽ जखन लिखऽ लगै छी तऽ पूरा हाथमे जे छै से पूरा पसीने पसीने भऽ जाइए। तऽ एहि मासमे बुझू जे एकटा एक तरहसँ चुनौतिए होइ छै, केना ई मासके हमसभ नीकसँ झेल सकब, एकरा कऽ सकब एहिमे, मुदा की करब, ऋतुके हिसाबे अपना सभके ढालऽ पड़ैए। जे से जे नहि ढालब तऽ ऋतुओके तऽ अपन अपन महत्व होइ छै। आ इहो कहब जे श्रोतागण जे किछु एहन महान व्यक्तित्वसभ भेलै जे प्रतिकूलो परिस्थितिमे अपन कार्य क्षमताके सिद्ध कयलनि अछि। ई नहि छै जे एखन ई गर्मी छै, ई रौद छै, बरखा बुन्नी छै तऽ कोना करब। एहिमे कतेको एहन विद्वान आ विदुषी लोकनि भेली जे साहित्य दिस अपन महत्वपूर्ण योगदान देलनि अछि। मिथिलाके जे नारी छलीह एखनो छथि जे महानताके कारणे स्वरूप जे छनि हुनकर ओ प्रेरणाके स्रोत सदिखनसँ सर्वदासँ रहल छथि। आ अपन आध्यात्मिक गरिमाके कारणे जे छै से विश्वक दर्शनकेँ छै से गौरवान्वित करबाक सङ्ग महिमा मण्डित हेबाक सौभाग्य पाबि चुकल छथि। नारी समाजक चित्रण मैथिलीक विभिन्न विधामे देखल जाइत अछि। ओ महाकाव्य हुए, कथा हुए, उपन्यास हुए, कविता हुए आ कि नाटक हुए, स्त्रीक भूमिका सब रूपमे देखब तऽ ओ सराहनीय अछि, प्रेरणा स्रोत रहलनि अछि। अपन दृढ़ संकल्प आ दृढ़ निश्चयसँ असंभव कार्यके ओ सम्भव कयलनि अछि। जेना गार्गी भेली, मैत्रेयी भेली, भारती भेली, लक्ष्मा भेली, विद्योत्तमा भेली, अपन वैदुषक लेल ओ सुविख्यात छथि। नारी संवेदनाक पारखी आ नारी मनोवैज्ञानिक अनुभवी लोकनिके दृष्टिमे नारी पात्रक सामाजिक स्थिति बड्ड मनोहारी होइत अछि। समकालीन मैथिली लेखनमे प्रायः स्त्री जीवनक ओहि पक्षपर विशेष जोर देल गेल अछि जतय आशा, आकांक्षा, निराशा, भय, कुंठा से जे त्रस्त छथि हुनकामे बहुत किछु करबाक उत्कंठा छनि, मुदा किछु कारणवश जखन ओ नहि कऽ पबै छथि तऽ कते तरहक मोनमे हुनकर जे विकार छनि ओ रहिए जाइ छनि। ओहिमे लेखिका लोकनि अपन लेखनीके माध्यमसँ जनमानसके जगेबाक प्रयास कयलनि अछि। स्त्री लेखनके स्थिति पहिनेसँ बेसी बढ़ि रहल अछि। आत्मनिर्भरता आ आत्मविश्वासक सङ्ग हुनक लेखन क्षमतामे निरन्तर मुखरित भऽ रहल अछि, प्रखर भऽ रहल अछि आ विकास दिस बढ़ि रहल अछि। तऽ कार्यक्रमक जे शोभा अछि ओ मैथिली लोकगीत सेहो अछि। ओहोमे जखन कोनो अपनासभ शुभ कार्य करै छी तऽ देवी भगवतीक आराधना करै छी, जाहिसँ कि ई भावना रहैए जे एहिसँ जीवनमे मंगले मंगल हैत, सभटा नीके नीक हैत। कोनो तरहके जे मोनमे आशा अछि, अभिलाषा अछि, कुबला अछि, ओ पूर्ण रूपसँ, निश्चित रूपसँ ओ पूर्ण होइत अछि। तऽ जे गीत सुनलापर अपनासभ बेर बेर एकर प्रशंसा अपनासभ करैत अयलहुँ हैं, एतबे नहि ओहि गीतके अपनासभ ठोरपर सदिखन ओकरा गबैत रहै छी, दोहरबैत रहै छी, तऽ कार्यक्रममे सभगोटे सुनी ई भगवती गीत।

0: तो श्रोतागण अखन अपना सभी भगवती गीत सुनलो संवेद स्वर में, तो वास्तव में एकदम स्वभाव भक्ति में रेम गेल छलूँ हैं। जखन माँ भगवती के आराधना अपना सब करै छी तो अपना आप के समर्पित कर दे छी। होइत रहैत अछि जे माँ भगवती कोना प्रसन्न हेती, हुनकर प्रसन्नता के लेल जत्ते तरहक हमरा सब के उपाय करय पड़े हम सब करैत छी। सदिखन अपन कर्म में लागल रहै छी, जब कर्म नहीं करब तो भक्तियों के कोनो अर्थ नहीं, किएक तो कर्मे से हमर सबक जे व्यक्तित्व बनैत अछि। कोनो काज करै छी निष्ठा से करै छी तो पहिने तो पूजा पाठक ओरियान करै छी, तखन पूजा में सबटा ओरियान करै छी, सब चीज व्यवस्था करै छी, तो पहिने तो हमर सबके कर्म अबैए, तकर बाद किछु अबैए, तकर बाद आस्था अबैए, भक्ति अबैत अछि। तो जो अपना सब निश्चित रूप से कर्म करैत रहब तो सफलता भेटबे टा करत। बट पहिने से आजादी से लऽ कऽ एखन धरि स्त्री के जे भूमिका होइत अछि ओ सराहनीय अछि। अदो काले से स्त्री अपन शक्ति के परिचय दैत आबि रही अछि। असुर के नष्ट करै लेल माँ भगवती के आवाहन कयल गेल, देवी शक्ति के आश्रय लेल गेल, तखन जाकर ओ असुर के नाश भेल। तो अदोकाल से ई होइत रहले जे स्त्री जे छथि से सृष्टि के रचना कैलथि है, सृष्टिये छथि। जो स्त्री के शक्ति छैन हुनका लग तो ओ शक्ति के सदुपयोग अपना जतेक अपन सबके जे स्त्री लोकनि छथि, जतेक हुनकर भूमिका छैन, हुनक स्वरूप के वर्णन करब ओतेक कम अछि, किएक तऽ जतय अहाँ देखू सब रूप में ओ व्याप्त छथि। आ हुनकर जे योगदान अछि ओ योगदान कोनो क्षेत्र में अहाँ देख लिअ कतौ ओ पाछू नहि छथि। कतेको एहन वीरांगना भेली जिनकर वीरता के बखान लेखिका अपन लेखन सँ समाजक सोझा रखलनि। ओहिसँ बहुत गोटे के ओहिसँ प्रेरणा भेटलनि, जे सबहक लेल प्रेरणा स्रोत रहल अछि। एहन दिस नजर देलनि जतय सबहक ध्यान नहि गेल हुए। श्रोतागण आप कार्यक्रम में एक गोट एहन वार्ता सुनी जेकरा सुनि कऽ बहुत रास जनता भेटत, आ जेकरा सँ अनभिज्ञ छी ओहिसँ जनता भेटत आ सब किछु बुझि सकब फेर छा कऽ। तऽ वार्ताकार छथि रागिनी कुमारी, तऽ सुनै छी ई वार्ता।
1: लीली रे मैथिली साहित्य वा मैथिल समाज में पारंपरिक मिथक तोड़ नव परंपरा स्थापित करबाक लेल जानल जायत छथि। जगत जननी सीता जे अपन व्यवहार सँ नारीक लेल लोक मर्यादा, कर्म निष्ठा, रीति नीति, कर्तव्य आ उत्तरदायित्वक निर्धारण कयने रहथि, ओ नारी समुदायक लेल एकटा परंपरा बनि गेल छल। ओहि परंपरा के ओढ़ में पुरुष वर्चस्ववादी समाज नारी पर कतेको अमर्यादित व्यवहार, शोषण, उत्पीड़न आ दमनात्मक काज करैत रहल, मुदा नारी सीताक सम्मान में कुंठित भ सहैत रहली। लीली रे ओहि रूढ़िगत व्यवस्था के नकारि देलनि जे नारी दयाक पात्र नहि अछि, अपन आत्मसम्मानक लेल दुर्गा, चंडी, काली बनि सकैत अछि, ओ अपन आत्मसम्मानक रक्षा स्वयं कऽ सकै छथि। लीली रे कथा उपन्यास जतेक साहित्यिक रचना कयलनि ओकर मूल भाव नारी उत्थान अछि। ओ नारी उत्थानक लेल नारी शिक्षा, स्वास्थ्य आ रोजगारक बात कयलनि। हुनक नारी पात्र आत्मनिर्भर भ समाजक लेल आदर्श बनली, किएक तँ आत्मनिर्भरता सबलताक सूचक अछि। दया आ कृपा सँ मानव आत्मनिर्भर नहि भऽ सकै छै। मिथिलाक महिला लोकनि पितृ सत्तात्मक व्यवस्थाक दास्ता सँ पराभूत छल, मुदा लीली रे अपन तेजस्विता सँ ओहि दास्ता के बेरी तोड़बा मे सफल भेलीह। ओ अपन साहित्यिक रचना में मैथिल समाज में व्याप्त रूढ़िगत समस्या के उजागर कयलनि। लीली रे जखन 12 वर्षक छलीह तखन अपन माय सँ गाम में चंडी खेलैबाक घटना सुनलथि, ओकरा बढ़ाय चढ़ाय के हास्यक रूप द कथाक रूप देलनि आ चंडी कथा लिखलनि।

मुदा ओ प्रकाशित नहि भऽ सकल। स्वतंत्रता प्राप्तिक बाद आधुनिक मैथिली साहित्यमे नवधाराक प्रस्फुटन भेल। एहि धाराक केंद्र छल दरभंगासँ प्रकाशित वैदेही पत्रिका। लिली रेक पहिल कथा रोगिणी वैदेही पत्रिकाक जुलाई 1955 ईस्वीक अंकमे छपल। गाम घरमे खूब चर्चा भेलनि। जखन हिनक कथा रंगीन पर्दा 1956 ईस्वीमे वैदेहीमे छपल तऽ मैथिल समाजमे हरहोरि मचि गेल। सभक जिज्ञासा भेल जे कल्पना शरण के छथि। 1978 हुनक एकटा दीर्घ कथा अंतराल प्रकाशित भेल, मुदा एहि बेर छद्म नामक उपयोग नहि कए कथा लेखिका रूपमे लिली रे छपल। संगहि मिहिरक सम्पादकीय टिप्पणीमे एहि तथ्यकेँ स्पष्ट कयल गेल छल जे रंगीन पर्दाक लेखिका कल्पना शरणक मूल नाम लिली रे छनि। इएह छथि रंगीन पर्दाक लेखिका। तकर बाद मैथिली जगतमे लिली रे विख्यात भऽ गेलीह। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तिक उपरान्त

जखन हिनक कथा रंगीन पर्दा 1956 ईस्वी में वैदेही में छपल त मैथिल समाज में हरहोर मचि गेल। सभक जिज्ञासा भेल जे कल्पना शरण के छथि। 1978 में हुनक एकटा दीर्घ कथा अंतराल प्रकाशित भेल, मुदा एहि बेर छद्म नामक उपयोग नहि कए कथा लेखिका रूप में लीली रे छपल। संगहि मिहिरक संपादकीय टिप्पणी में एहि तथ्यकें स्पष्ट कयल गेल छल जे रंगीन पर्दाक लेखिका कल्पना शरणक मूल नाम लीली रे छनि। यह छथि रंगीन पर्दाक लेखिका। तकर बाद मैथिली जगत में लीली रे विख्यात भऽ गेलीह। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तिक उपरांत हिनक कलम आरो धारदार भऽ गेलनि। ओ लाली गुरांस, विशाखन, नीक लोक आदि कथाक संग्रह, 3 उपन्यास, मरीचिका, पट्टाक्षेप, उपसंहार आ 1 बड़ पुरान गप, आत्मकथा समय के धंगई तक रचना कयलनि। लीली रेक पहिल कथा रोगिणी सँ अंतिम कथा नीक लोक धरि कथाक विवेचन आ विश्लेषण सँ ई स्पष्ट होइत अछि जे हिनक कथाक नारी पात्र जे सब छथि ओ शिक्षित वा अशिक्षित, कुशल वा अकुशल रहितहुँ काजुल, खटनिहार, स्वाभिमानी आ आत्मनिर्भर छथि। अपन उत्तरदायित्वक बोध करबैत छथि। अपने सब कष्ट सहितो दोसरक प्रति सहानुभूति राखि अधलाह नहि सोचैत अछि, मुदा जखनहि अवहेलना, दुर्व्यवहार, अत्याचार, शोषणक पानि माथसँ बढ़य लगैत अछि तऽ ओ निर्मोही भऽ सब सम्बन्ध बन्धके एकहि झटकामे तोड़ि मुक्त भऽ जाइत छथि। आ जकरा प्रति ओ समर्पित छलीह तत्काल कहि दैत छथि, हम नीक लोक नहि छी, अर्थात सब अत्याचार, अपमान आ दुर्वचन चुपचाप सहयवाली नहि छी। लीली रेक कथा समाजमे व्याप्त आम समस्याके उजागर करैत अछि, मुदा हिनक नारी पात्र समाजक समक्ष आदर्शक काज करैत अछि। समाजमे आम धारणा अछि जँ कोनो कन्या वा नारी सँ जघन अपराध होइत अछि तऽ ओ कन्या वा नारी आत्मग्लानीसँ जहर माहुर खा लैत छलीह, पानिमे डूबि कऽ आत्महत्या कऽ लैत छलीह, मुदा लीली रेक नारी पात्र रेणु रोगिणीमे से नहि कऽ अपन उत्तरदायित्वक निर्वहन करैत अछि। अन्तिम कथा नीक लोकक संतु कमासुत अछि, कर्मठ अछि, संवेदनशील अछि, ममता छैक, अपन स्वर्गीय सखी मेनकाक संतानक प्रति सहानुभूति छैक, ओकर विकास आ सुरक्षाक अभिलाषी अछि आ तें ओकर धियापुताक मौसीसँ माय बनि जायब स्वीकार कऽ लैत अछि। किन्तु जखनहि जीतेक व्यवहार अमानवीय आ अपमानजनक भए जाइत छैक, एक दयालु संतु, एक भावुक संतु, परोपकारी संतु कठोर भए सदाक लेल जीतेक घर छोड़ अपन घर आबि जाइत अछि। अबूझ कथामे दुर्गा, मंगल आ ओकर धियापुताक सुख समृद्धिक आ सुरक्षाक लेल अपनाके अर्पित कए देने अछि, मुदा मंगल ओकरा वस्तु जात बुझैत अछि। ई अनुभव करिते दुर्गा शहर छोड़ अन्यत्र कमाय लेल चल जाइत अछि। जिद कथामे समान पारिवारिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमिक देवव्रत आ देवकीक बीच विचारक मेल जखन नहि होइत अछि, केओ ककरो सुनवा सहवा लेल तैयार नहि होइत अछि, देवकी उपराग दैत अछि भरि जीवन अहाँ हमरा अपन अनुपयुक्त बुझलहुँ, आब जखन हम अपन रास्ता ताकि लेलहुँ तऽ अरंगा लगबैत छी। विशाखन कथामे अमित आ मधु दुनू पति पत्नीक नीक नौकरी छै, मधु जल्दी संतान नहि चाहैत अछि, किन्तु जखन संतान भऽ गेलैक तऽ बात बात पर एक दूसरा पर आरोप प्रत्यारोप लगबै लागल, जाहिसँ जीवनमे कटुता बढ़ैत गेल। अंततः दुनूक संबंध विच्छेद भऽ जाइत अछि। अंतः सलीला कथामे फूल कुमारी रौदमे गलैचाके डेंगाय अपन पति रमचटिया पर अपन आक्रोश उतारैत अछि आ अंततः निर्णय करैत अछि रमचटियाक अत्याचार नहि सहत। विधिक विधान कथामे पानमती व्यक्तिगत प्रतिष्ठाक हनन नहि चाहैत अछि। अबूझ कथामे गाममे रहैत मंगलक युवती पत्नी बुलंती अपन आवश्यकताक

0: पूर्तिक हेतु बेटा के पितामही लग छोड़ दोसर आ फिर तेसर संबंध कै लैत अछि। रेणु, मालती, रानू देवी, फूल कुमारी आ बुधमाया, बगरा आदि नारी पात्र सेहो कोनो पाप नहीं करैत अछि। लीली रे कथा में बदलित सामाजिक जीवन आ संबंधक चित्र सहज रूप में देखौलन अछि। नारी सशक्तिकरणक एक टा प्रबल पक्ष अछि आर्थिक आत्मनिर्भरता। लीली रे कथा प्रायः समस्त नारी पात्र शिक्षित हो वा अशिक्षित, कुशल हो वा अकुशल, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर अछि। ई आर्थिक आत्मनिर्भरता घर में बैसल रहला से नहीं, परिश्रम से अर्जित होइत अछि। आवश्यक नहीं अछि जे ओ बड़का कंपनी में काज करैत हुए आ घरक उठा काज से व्यापार धरि करैत अछि। बाल विधवा रेणु से संतु धरिक लीली रेख समस्त नारी पात्र देह तोड़ मेहनत कऽ आर्थिक रूपे सबल भेल छली। परिवारक दोसर सदस्य के आत्मनिर्भर बनेबाक प्रयास सेहो करैत छली। एकटा कंपनीक उच्च पदाधिकारी डॉक्टर देवव्रत घोषालक पत्नी देवकी संबंध विच्छेदक बाद टाइपिंग सीख सम्मान पूर्वक जीवन यापन करैत अछि। बस चढ़ी में गुलाबीक टूटल टांग आ परित्यक्त जीवन के देखियोक अपन घरक सपनाक पूर्तिक हेतु बस चढ़ी पर कर्तव्य नहीं छोड़बाक निर्णय लैत अछि। अहिना माया, बगरा, मुरलिया, गीता, सुगंधी, रानू, फूल कुमारी, मिस्टर रानी सुब्बा, करुणा, अरुणा, सुजाता, लक्ष्मी दीदी, पानमती, रंजू, दुर्गा, विष्णु कामा, शोभिया, मधु, लक्ष्मा आदि नारी पात्र अछि। एहि क्रम में एकटा बात स्पष्ट होइत छैक जे नारीक आर्थिक आत्मनिर्भरता सँ आयल स्वाभिमान पुरुष वर्चस्ववादी मानसिकता लोक के पचित नहीं अछि आ तखन ओ सब साम दाम दंड भेद नीतिक संग हिंसा पर सेहो उतारू भ जाइत अछि। लीली रे सब कुछ सहितों अश्लीलता के कोनो आभास होमे नहीं दैत छथि। यह कथा कहबाक हुनक शैली पाठक के मदमस्त कऽ दैत छैक। लीली रेक नारी पात्र आत्मसम्मानक लेल संबंध विच्छेद वा बर्तन पोछा, दुकान दौरी कर आर्थिक आत्मनिर्भरता लेल योग्यता आ क्षमताक अनुरूप परिश्रम करबा में कोनो कसर नहीं छोड़ैत अछि। मुदा मानवीय करुणा, सुख दुख में सहयोग करबा में लीली रेक नारी पात्र सेहो पाछा नहीं छथि। कह सकैत छी आधुनिक दृष्टिबोधक संग मानवीय संवेदना समन्वित अभिव्यक्ति लीली रेक कथा पाठक के अंत अंत धरि बहने रखैत अछि। लीली रेक कथाक पात्र सर्वोद्देशीय अछि, मुदा कथाक भाषा में मिथिलाक सुगंध विद्यमान अछि। हिनक वाक्य विन्यास आ शब्दक चयन कतौ कठिन नहीं लगैत अछि। लीली रे अपन व्यापक एवं संघनित अनुभव के विलक्षण भाषा शैली में अद्भुत कलात्मकताक संग मनोयोग पूर्वक अभिव्यक्त कयलनि अछि। मुदा सभक भाव अछि नारी जागृति।
1: हाँ तो श्रोतागण, अखन ई वार्ता सुने छलहुँ। वार्ताकार छली रागिनी कुमारी। तो आप चले छी कार्यक्रम में शब्द विमर्श दिस। एकटा शब्द अबैत अछि छहर मोहर। एह छहर मोहर कह लिय, बाद में बुझात जब एकाएक खगता पड़त न, तखन बुझाइत जे पाई जे छै से बिना मतलब के एतेक खर्च कऽ लेलहुँ। देखू, समयक संग हमरा सबके चलबाक अछि, तऽ अगला भेंट धरिक लेल हमरा नीतूके चलबाक आज्ञा दिअ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हमारा ये मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। इस समय रात के 8:45 होने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
1: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
2: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली थी। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
3: हमारी साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतरना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के हृतिव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि हृतिव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।

आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एमटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
2: टू डेवलप द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम,
3: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
2: R&D and innovation oriented businesses.
1: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण

0: और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
2: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अवशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
1: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
3: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं, ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
1: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
4: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिफाई एजाजात अता किए जाने की तकरीब के दौरान मुसल्ला अफवाज और पुलिस एहलकारों को बहादुरी के अवार्ड्स अता किए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अब पूरे मुल्क में नाफिज हो गई है। मगरबी बंगाल में भी इस स्कीम का निफाज हो गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट में आग लगने के एक बड़े वाकये में 8 अफराद हलाक हो गए हैं। भारत यूरोपीय यूनियन को इस साल सितंबर के बाद तक आबी जराये से हासिल होने वाली मसनूआत, शहद और अंडों की बरामद जारी रखेगा। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। भारत ने कशीदगी को फौरी तौर पर कम करने को कहा है। और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एक इनिंग्स और 300 रन से हराकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुसल्ला अफवाज, मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज और रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पुलिस एहलकारों को बहादुरी के एजाजात से आज नवाजा। राष्ट्रपति भवन में आज शाम दिफाई अवार्ड्स अता किए जाने की तकरीब में ये एजाजात दिए गए। नायब सदर सी पी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और मरकजी वजरा और मुसल्ला अफवाज के सीनियर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर जमहूरिया ने तकरीब के दौरान दिफाई फोर्सेज, मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज और रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की पुलिस के एहलकारों को 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र अता किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को रियासत में नक्सलिज्म के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान उनकी गैर मामूली बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से नवाजा गया। अरुणाचल प्रदेश में शोरिश पसंदों के एक बड़े हमले को नाकाम बनाने में गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करने पर मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नाइक मीनाक्षी सुंदरम ए को कीर्ति चक्र से नवाजा गया। उन्होंने शदीद तौर पर जख्मी होने के बावजूद जम्मू कश्मीर में एक सख्तगीर दहशतगर्द को हलाक किया था। मगरबी बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करने वाली मरकज के जेर इंतजाम इलाकों समेत 36वीं रियासत बन गई है। ये योजना पूरे मुल्क में सभी शहरियों के लिए हिफ्जान सेहत तक मसावी रसाई के हुसूल में अहम संग मील है। आयुष्मान भारत स्कीम अहल मुस्तफदीन को फी कुंबा 5 लाख रुपये तक की सानवी और आला दर्जे की इलाज की सहूलत फराहम करती है। स्कीम को नाफिज करने के लिए कौमी सेहत अथॉरिटी और मगरबी बंगाल की सरकार ने आज नई दिल्ली में एक मफाहमत नामे पर दस्तखत किए। मरकजी वजीर सेहत जे पी नड्डा और मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में इस मफाहमत नामे पर दस्तखत किए गए। अपने खिताब में जनाब नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत पूरी दुनिया में सेहत के शोबे की सबसे बड़ी स्कीम है।
1: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली थी। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
0: जनाब नड्डा ने टीएमसी की पिछली हुकूमत पर यह स्कीम नाफिज न करने पर नुक्ताचीनी की। वहीं जनाब शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत स्कीम मगरबी बंगाल के आवाम को फायदा पहुंचाएगी, अगरचे वो रियासत के बाहर ही रहते हों।
2: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतारना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
0: मगरबी बंगाल में आयुष्मान भारत स्कीम के निफाज से रियासत के लाखों अहल मुस्तफिदीन को फायदा पहुंचेगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट में आज लगी जबरदस्त आग में 8 मजदूरों की मौत हो गई और दीगर 6 जख्मी हो गए। जख्मी मजदूरों को इलाज के लिए करीबी अस्पतालों में दाखिल कराया गया है, जबकि जाए हादसे पर बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और आंध्र प्रदेश के वजीर आला एम चंद्रबाबू नायडू ने हादसे में हुए जानी नुकसान पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है। वजीर आजम मोदी ने महलुकीन के लवायकीन को फीकस 2,00,000 रुपये और जख्मियों को 50,000 रुपये की फौरी मदद का ऐलान किया है। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की वजह का पता लगाने के लिए तफसीली जांच का हुक्म जारी किया है। नायब सदर सीपी राधा कृष्णन ने भी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार

0: इजहार किया है। आकाशवाणी आज अपने कयाम के 90 साल पूरा होने का जश्न मना रहा है। साल 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया था। ये तारीखी दिन मुल्क की सकाफत, इत्तेलात और नशरियाती तारीख में एक खसूसी लम्हा था जिसकी आवाज़ नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ती गई। आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो खिदमात को तेज़ी के साथ वसत दी गई और साल 1956 में उसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में इस मौके पर स्पेक्ट्रम नाम से एक सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में पंजाबी लोक गीतों और राजस्थानी लोक रक्स कलबेलिया पेश किया गया। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए प्रसार भारती के चेयरमैन प्रसून जोशी ने कहा कि आकाशवाणी ने नस्ल दर नस्ल समाज की रीढ़ की हड्डी का काम किया है। उन्होंने मजीद कहा कि आकाशवाणी ने इत्तेलात, सकाफत और तकलीफ के जरिए अवाम को जोड़ने में अहम रोल अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर भारत में एक नुमाया तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए। आकाशवाणी का खबरों का शोबा अहम शोबों में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान हुकूमत की कोशिशों पर खसूसी फीचर लेकर आया है। आज माहौलियाती तहफ़ के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। गुज़िश्ता 12 साल के दौरान भारत ने ठोस पॉलिसी इकदाम और मुस्तकिल नफाज के जरिए पायदार माहौलियाती तब्दीली का मुशाहदा किया है। मुल्क में जंगलात और दरख्तों की तादाद में इजाफा हुआ है। दलदली ज़मीनों, मैंग्रोव्स और साहली माहौलियाती निज़ाम को बहाल किया गया है। नीज नमामि गंगे प्रोग्राम के जरिए दरियाओं की बहाली का अमल भी आगे बढ़ा है। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने बताया कि इस प्रोग्राम की वजह से दरियाए गंगा की सफाई में नुमाया बेहतरी आई है।
1: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
0: 2015 में शुरू किया गया ग्रीन इंडिया मिशन एक अहम इकदाम है जो जंगलात और माहौलियाती निज़ाम की बहाली के लिए वक्फ है। 2024 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम मुहिम का आगाज किया था जो दुनिया की सबसे बड़ी अवामी माहौलियाती तहरीक बनकर उभरी। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस मुहिम के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाने की मुहिम में हिस्सा लिया।
2: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
0: आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं माजिद अली। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इम्तिहानात की कौमी एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 का फिर से इम्तिहान कराने के लिए इम्तिहान के शहरों की पर्ची जारी की है। ये इम्तिहान इस महीने की 21 तारीख को होना है। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि तलबा सरकारी वेबसाइट पर अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालने के बाद अलॉट किए गए शहरों के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: एजेंसी के जरिए जारी किए गए एक नोटिस के मुताबिक फिर से होने वाला यह इम्तिहान भारत के 551 शहरों और गैर ममालिक के 14 शहरों में 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और कागज के जरिए लिया जाएगा। एनटीए ने वाजह किया है कि इम्तिहान के शहरों से मुतालिक जारी की गई पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है, बल्कि ये सिर्फ उम्मीदवारों को इम्तिहान के मरकज के बारे में जानकारी देने के लिए जारी की गई है। एजेंसी ने मजीद कहा है कि उम्मीदवार इम्तिहान और एडमिट कार्ड जारी करने से मुतालिक ताज़ा ऐलानात के लिए उसके सरकारी वेबसाइट से जानकारी लेते रहें। मेडिकल कॉलेजों में दाखिलों के लिए नीट यूजी का इम्तिहान इस साल 3 मई को हुआ था, लेकिन इसको पेपर लीक के इल्जाम के तनाजुर में एनटीए ने 12 मई को मनसूख कर दिया था। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
0: भारत ने तरमीमशुदा यूरोपीय यूनियन इंजबाती फ्रेमवर्क के तहत इस साल सितंबर के बाद भी यूरोपीय यूनियन के बाजारों में शहद और अंडों समेत आबी ज़राअत से मुतालिक अशिया की बरामदात जारी रखने में कामयाबी हासिल की है। यूरोपीय यूनियन ने नए जाब्तों के बाद भारत को इन मसनूआत को बरामद करने के अहल

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मुझे महान अभिनेता और फिल्मकार मनोज कुमार की प्रसिद्ध फिल्म उपकार का ये गीत याद आ रहा है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये गीत केवल फिल्मी गीत नहीं बल्कि हमारे किसानों की मेहनत, उसकी लगन और हमारी उपजाऊ धरती की समृद्धि का जीवंत प्रतीक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी खेती की असली ताकत हमारी मिट्टी है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते और असंतुलित उपयोग ने मिट्टी के स्वास्थ्य, उसकी उर्वरकता और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डाला है। इसी समस्या को समझते हुए सरकार ने अभी खेत बचाओ अभियान शुरू किया है, जिसमें 9,42,000 से अधिक किसान जुड़ चुके हैं। इसकी अहमियत को समझते हुए हमने भी आज पब्लिक स्पीक में इसी विषय को चुना है। खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा पोषक तत्वों को बढ़ावा। हमारे साथ चर्चा के लिए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर महेश चंद मीणा और इसी संस्थान के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, हमारी फोन लाइंस भी खुली हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे विशेषज्ञ। आप कॉल कर सकते हैं 011 जो दिल्ली का कोड है, उसके अलावा 2331-0481, 2371-7117 या 2371-7106 और 2331-4444। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। इस पर भी आप हमारे जो अपने प्रश्न हैं वो भेज सकते हैं। तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर दाबास, आपसे ही जानना चाहूंगी कि खेत बचाओ अभियान जो शुरू किया गया है, इसकी अवधारणा क्या है और आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है।
1: प्रियंका जी, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल में भी केवल कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था कि हमने प्रगति की थी, उसमें उस समय भी हमें काफी ग्रोथ मिली थी और हमारा देश उसमें काफी आगे था, केवल किसानों की मेहनत की वजह से और किसी अनाज की, धन के, उसकी सब्जी की, फल की या किसी किस्म के दूध और वगैरह की हमें कमी महसूस नहीं हुई और हमारा काल बहुत अच्छा निकला और कृषि ने हमेशा इस देश का साथ दिया है
0: जी।
1: तो अगर कृषि को हमें आगे जारी रखना है, अच्छी तरह रखना है, तो किसानों को नई से नई तकनीक समय पर पहुंचनी चाहिए, किसानों को उत्तम गुणवत्ता के इनपुट मिलने चाहिए और सबसे बड़ी बात जो है, किसानों को सही ज्ञान सही समय पर मिलना चाहिए जो कि कृषि वैज्ञानिक दे सकते हैं। इसी के सिलसिले में भारत सरकार ने वैसे तो सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र खोले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम हर सीजन में एक प्रोग्राम चलाने जाते हैं जिससे किसानों को नई नई तकनीक के बारे में पूरी जानकारी जाए और वैज्ञानिक किसानों को हर सही तरह से खेत पे उसको ट्रेनिंग दे और सहयोग करे और जैसी सिचुएशन हो उसमें कैसे हमें टैकल करना है। जैसे मान लें कहीं बारिश ज़्यादा होने की संभावना रहती है तो हमें कौन सी फसल लगानी है, कौन सी किस्म लगानी है, पानी का कैसे उपयोग करना है या पानी की निकासी कौन सी होनी चाहिए और हमें किस किस्म का प्रयोग करना है, वो सारी की सारी जानकारी हमारे कृषि वैज्ञानिक किसानों को उस टाइम पे उपलब्ध करवाते हैं। इसी तरह से अगर वर्षा की कमी हो जाती है तो हम कौन सी फसल लगाएं, कौन सी किस्म लगाएं जो पानी की कमी बर्दाश्त करते हुए अच्छी पैदावार देगी और सबसे बड़ी बात जो है हमारी सॉयल हेल्थ, मिट्टी का स्वास्थ्य कैसे बना रहे, हमें इनपुट्स का कैसे यूज करना है, कौन कौन से इनपुट्स का यूज करना है। अक्सर किसान भाई किसी एक खास किस्म के खाद का ज्यादा प्रयोग करते हैं जो असंतुलित खाद की वजह से मिट्टी का उर्वरा शक्ति घटती जा रही है, तो हमें किसानों को ज्ञान समझाना है कि मिट्टी की जांच के आधार पर ही हम इनके पोषक तत्वों का सही से उपयोग करें और संतुलित मात्रा में करें और खाली हमें रासायनिक खादों पर डिपेंड ना करके हमें इसको समेकित जो पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए, यानी कि हमें सूक्ष्म जो हमारे नैनो फर्टिलाइजर के साथ साथ में दूसरी बताना चाहूंगा कि जो हमारे देसी खाद हैं, रासायनिक खाद हैं, इसके साथ में जो जीवाणु खाद हैं, इन सबको साथ लेना चाहिए और किसानों को अपने जो नेचुरल रिसोर्स है उनको भी रिसाइकिल करना चाहिए और हमें फसल चक्र इस प्रकार से अपनाना चाहिए कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य भी बना रहे, किसान को अच्छा उत्पादन मिले, उसकी लागत भी कम हो और हमारे देश की जो आवश्यकता वो भी पूरी हो
0: जी। आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे श्रोता जुड़ गए हैं दिल्ली के मंगोल।

0: शिवपुरी से ब्रह्मदत्त जी। हेलो।
1: हेलो,
0: नमस्कार।
1: नमस्ते मैडम जी, सब्जियों के लिए प्रणाम
0: जी।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार जी।
1: सर जी, मेरे कुछ जिज्ञासाएं, उत्सुकताएं हैं, उत्कंठाएं हैं। मैं मंगोलपुरी दिल्ली ब्रह्मदत्त बोल रहा हूँ। ये जो हम बात करते हैं फसल चक्रों की, क्रॉप रोटेशन की, उनमें उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार सहायक है? यदि हम धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन आदि जो फसलें होती हैं हमारी, रवि, खरीफ और जायद कालीन, इनमें हम फसल चक्रों में उर्वरक प्रबंधनों को किस प्रकार से कर सकते हैं?
2: ब्रह्मज्योति, जो हमारे फसल चक्कर है उसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि पहले एक फसल अगर ज़्यादा खाद लेने वाली है तो दूसरी फसल ऐसी हो जो कम खाद लेती हो। कुछ फसलों की जड़ें गहराई से खाद लेती हैं, कुछ ऊपर से खाद लेती हैं, और साथ साथ में जैसे जितनी भी हमारी दलहनी फसलें हैं वो न केवल अपने पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं बल्कि जमीन में अगली फसल के लिए भी कुछ पोषक तत्व छोड़ जाती हैं। तो ये हमारी पहले से अवधारणा रही है कि पहले हम कोई धान्य फसल के साथ साथ में दूसरी अगर फसल लेते हैं तो एक दलहन फसल लेते हैं तो उसे दोनों फायदे हैं कि एक तो हमारे देश में दालों का काफ़ी मात्रा में आया

0: प्रबंधन किस प्रकार सहायक है? यदि हम धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन आदि जो फसलें होती हैं हमारी रबी, खरीफ और जायद कालीन, इनमें हम फसल चक्रों में उर्वरक प्रबंधनों को किस प्रकार से कर सकते हैं?
1: मैडम ज्योति, जो हमारे फसल चक्कर है उसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि पहले एक फसल अगर ज़्यादा खाद लेने वाली है तो दूसरी फसल ऐसी हो जो कम खाद लेती हो। कुछ फसलों की जड़ें गहराई से खाद लेती हैं, कुछ ऊपर से खाद लेती हैं, और साथ साथ में जैसे जितनी भी हमारी दलहनी फसलें हैं वो न केवल अपने पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं बल्कि जमीन में अगली फसल के लिए भी कुछ पोषक तत्व छोड़ जाती हैं। तो ये हमारी पहले से अवधारणा रही है कि जैसे पहले हम कोई धान्य फसल के साथ साथ में दूसरी अगर फसल लेते हैं तो एक दलहन फसल लेते हैं तो उसे दोनों फायदे हैं कि एक तो हमारे देश में दालों का काफ़ी मात्रा में आयात होता है तो उसके आयात का सब्सिडी होता है तो विदेशी मुद्रा बचती है, दूसरी बात यह है कि हमारे खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है, और तीसरी बात है जितनी भी दलहनी और तिलहनी फसलें हैं इनमें कम पानी की आवश्यकता होती है तो कम पानी में भी अच्छा हम पैदावार कर सकते हैं, और आजकल मोटे अनाजों की भी काफ़ी जिज्ञासा बढ़ रही है और इनसे अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं किसानों को और हम काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करने की इसमें काफ़ी संभावना है, और ये जितने भी मोटे अनाज हैं ये भी कम संसाधन में यानी कम उपजाऊ जमीन में भी अच्छी पैदावार दे सकते हैं और कम खर्चे पे भी पैदावार दे सकते हैं। तो हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे पानी अगर कहीं ज़्यादा तो वहाँ केले की खेती कर सकते हैं, गन्ने की खेती कर सकते हैं, और धान की खेती में भी हमारे पास कई किस्म की खेती है यानी कि हम पानी के साथ भी कर सकते हैं, ट्रांसप्लांटिंग भी कर सकते हैं, डायरेक्ट सीडिंग भी कर सकते हैं, और आजकल कुछ ऐसी किस्में भी आ गई हैं जिसमें कि खरपतवार उसमें अगर एक पर्टिकुलर दवाई का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें किसी प्रकार के खरपतवार प्रबंधन बहुत आसान हो जाता है जिससे हमारी उत्पादन लागत भी बढ़ती है और साथ साथ में किसान का फायदा भी होता है। तो हमें इन सब चीज़ों को देखना है, जो भी हम फसल चक्र अपनाते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं कि हमारी मिट्टी पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े और किसान को कम खर्चे में ज़्यादा आमदनी मिल सके।
2: जी, आप मिट्टी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीरा, तो जैसे आप बात कर रहे हैं जो सॉइल हेल्थ की बात करते हैं तो मिट्टी के पोषक तत्वों की बात करें तो इसका वास्तविक अभिप्राय क्या है और खेती की उत्पादकता को ये किस तरह प्रभावित करता है?
3: बिल्कुल मैडम, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे कि हमारी खेती हम लगातार करते आ रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, ज्यादातर किसान भाई एक या दो या ज्यादातर बहुत अच्छे किसान हैं तो तीन उर्वरक का प्रयोग कर रहा है, लेकिन क्या है ना, पौधों को कुल मिला के 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आप मिट्टी में डालिए या नहीं डालिए लेकिन वो मिट्टी से लेगा, लेकिन मिट्टी का भी एक अपना एक कैपेसिटी है, वो जब तक देगा जब तक उसके पास रिजर्व में कितना है, और वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया। अभी क्या है ना, हमारी ज़्यादातर मिट्टियों में जहाँ पे किसान भाई जैसे ऑर्गेनिक मेन्योर या ऑर्गेनिक बेस कुछ भी उपयोग नहीं कर रहे तो वहाँ पे क्या है ना, एट ए टाइम आप देखेंगे 5 से 6 पोषक तत्वों की कमी है और उसके कारण हमारी मिट्टी की जो कैपेसिटी है वो घटती जा रही है।
2: डॉक्टर, आपसे बात जारी रखेंगे, पहले हमारे श्रोता जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश जी।
4: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोट खाई शिमला हिमाचल प्रदेश। और सबसे पहले तो आपको पूरी आकाशवाणी टीम को आकाशवाणी की 90 स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं।
2: धन्यवाद
4: जी। तो मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है कि हमारे एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं, एप्पल के बाग, तो मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ कि जब हम खाद डालते हैं तो इसमें क्या क्या किस तरह से हम काबू किया जाए, कितनी हमें मात्रा में खाद डालनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम ज्यादा खाद का उपयोग कर लेते तो हमारे जो है एप्पल की जड़ें खराब हो जाती है, ये मेरा प्रश्न है।
2: डॉक्टर मीना।
3: हाँ, तो राकेश जी जैसे आप बता रहे हैं कि देखो एप्पल का भी जितना हमारा जो एक्सपीरियंस है किसानों से जो चर्चा में आया वो क्या है ना, ज्यादातर आपकी मिट्टियां अम्लीयता हैं और अम्लीयता लगातार जैसे आप कहना कभी मिट्टी परीक्षण नहीं करवा रहे, कई बार क्या है ना मिट्टी की जैसे कई कई जगह थोड़ी गहराई का भी एक इश्यू आता है, और आप मिट्टी का जब टेस्ट कराएंगे तो आपके यहाँ जैसे देखा गया है कि कैल्शियम वगैरह की भी बहुत कमी पाई जा रही है और उसके कारण जो एप्पल का जो पौधा है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा क्योंकि एसिडिटी ज़्यादा हो गई, तो उस कारण से आपका जैसे और भी पोषक तत्व हैं जैसे बोरोन है, जिंक है, ये कई बार क्या होता है ना कहीं कहीं जगह बहुत अधिक हो जाता है, कई बार डेफिशिएंट भी होता है, मतलब कई बार किसान भाई सोचते हैं कि हमारी तो अम्लीय मिट्टी है तो यहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्वों की पर्याप्तता है, ऐसा नहीं है। बोरोन है, बोरोन एक नंबर वन जो मतलब कैल्शियम और बोरोन ये दोनों जो एप्पल का जो हम अभी तक पाए हैं कि ये दोनों का बहुत ज्यादा रोल है और इसकी कमी बहुत ज्यादा है, किसान भाई कभी भी कैल्शियम और बोरोन कभी नहीं डाल रहा तो
2: सॉइल टेस्टिंग समय समय पर बहुत जरूरी
3: है,
2: किसान कराते रहें। छत्तीसगढ़ से एक हमारे श्रोता जुड़े हैं योगेश झांगड़े जी।
5: जी नमस्ते।
2: नमस्ते
5: जी, हम योगेश झांगड़े बोल रहे हैं, अभी मैं तरह छत्तीसगढ़ से।
2: जी जी,
5: हम ये जानना चाहते हैं विशेष रूप से जो हम लोग

0: फसल काटने के बाद जो हमारे अवशेष बचते हैं फसल के, तो उनके लिए हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या क्या हो सकता है उसको सही प्रबंधन करने के लिए?
1: डॉक्टर डबा
2: योगेश जी, जो भी हमारे फसल अवशेष बचते हैं इनको हम खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने एक पूसा संस्था ने एक अलग से एक वो बनाया है जिसको वेस्ट डिकम्पोजर कहते हैं, उसका स्प्रे करके और पानी लगा के इसको अगर इन अवशेषों को मिट्टी में मिला देते हैं तो ये खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन उसको भी बढ़ाते हैं और साथ साथ में पोषक तत्व भी सप्लाई करते हैं और ये मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं। एक्चुअली मिट्टी में तीन प्रकार के गुण होते हैं, एक रासायनिक, भौतिक और जैविक। जब तक तीनों में सुधार नहीं होगा हमारी खेती अच्छी नहीं हो सकती। अगर हम रासायनिक खाद प्रयोग करते हैं तो एक गुण में तो सुधार होता है और वो भी एक या दो पोषक तत्वों के लिए, लेकिन बाकी गुणों का ह्रास होता है। तो हमें जो हमारे देसी खाद हैं इन पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, खासकर बायोगैस सलरी, वर्मी कंपोस्टिंग और उसके बाद अच्छी सड़ी गली खाद। अभी हमारे एक सेब वाले भाई का सवाल था कि उनकी जड़ों में कई बार दिक्कत आती है, तो जड़ों में कई बार अगर किसान भाई कच्चे खाद का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी फंगस लगने की वजह से पेड़ को नुकसान हो सकता है। तो मैं उन किसानों को कहूंगा कि अपनी खाद के अंदर या तो ट्राइकोडर्मा बिल्डी या सुडोमोनास, ये जैविक चीजें हैं, इनका अगर प्रयोग करते हैं तो उससे जो नुकसानदायक फंगस है, फफूंदी है, ये उसके नुकसान को कम कर देते हैं और उसको सही खाद में परिवर्तित करने के साथ साथ में उसकी उपयोगिता को और बढ़ा देते हैं। तो हमें उस बात का ध्यान रखना है और जितनी भी फसल अवशेष है उनका अगर हम उपयोग करते हैं तो उससे मिट्टी को ज्यादा लाभ होता है। तो मैं सभी किसानों को कहूंगा कि वो अपने फसल अवशेषों को मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें और इस तरह से मिलाएं कि वो अपनी अगली फसल के काम आ जाए।
1: डॉक्टर दबास, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जैसे पराली जलाने की जो समस्या हम देख रहे हैं, बल्कि अगर ये जो अवशेष बचते हैं उसको हम मिट्टी में ही मिलाएं, उसको वहीं प्रबंधित करें तो पर्यावरण को भी कम नुकसान होगा। इंदौर से जुड़े हैं हमारे साथ अनिल जी। हेलो जी अनिल जी।
3: मैम हमारा सवाल ये है कि जैसे कि हर वर्ष किसानों को कभी ठंड के मौसम में, कभी बारिश के मौसम में हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है और सरकार तो भरपूर कोशिश करती है उनके खेतों में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की, लेकिन जरूरी नहीं कि हजारों लाखों किसानों के पास सरकार बिल्कुल एक एक किसान के पास पहुंचे जो उनके नुकसान की भरपाई करे। तो जो राज्य स्तर के स्तर पर या नगर निगम के स्तर पर क्या क्या उपाय किया जा सकते हैं किसानों के खेत बचाने के लिए?
2: मैं अनिल जी को ये बताना चाहूंगा कि कृषि जो है एक राज्यों का विषय है और राज्यों का विषय होने के नाते राज्य सरकारों का सबसे बड़ा रोल होता है, इवन आपकी जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसको भी दिलवाने में। तो जगह हमारे राज्य का कृषि विभाग मजबूत है तो एक तो आपको अच्छी किस्म के सभी इनपुट मिलेंगे, उनकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, साथ साथ में उनकी उपलब्धता भी समय पर बनी रहेगी और इस किस्म की कोई विपदा आएगी तो उसमें भी वो ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो हमारे राज्य में जो कृषि विभाग है वो अगर एक्टिव है तो वो सेंटर की भी मदद उसमें आपके किसानों को ज़्यादा जल्दी मिलती है। तो हमारे राज्य स्तर पर ये होना बहुत जरूरी है। तो हमें अपने कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग और बागवानी विभाग या पशुपालन विभाग, इन सब के संपर्क में रहना चाहिए। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे उस केंद्र की हो या राज्यों की हो, वो इन्हीं के माध्यम से लागू होती हैं। तो इन योजनाओं का सही लाभ उठाना है तो हमें इन विभागों से बहुत ही अच्छी तरह संपर्क रखना है और अच्छा कोऑर्डिनेशन करते हुए इन सभी योजनाओं का लाभ उठाना है। सरकार काफी कुछ काम कर रही है केवल किसानों की मदद के लिए, लेकिन मदद तभी हो पाएगी जब किसान भी जागरूक हो और किसानों के जो संगठन बने आजकल किसान उत्पादन संगठन, ये उसमें और अच्छा योगदान कर सकते हैं। तो इनके माध्यम से भी हम इन विभागों के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने किसानों को लाभ दिलवा सकते हैं।
1: उत्तर प्रदेश के मथुरा से जुड़े हैं चौधरी महेंद्र सिंह जी। नमस्कार महेंद्र जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
4: जी नमस्कार। नमस्कार आदरणीय कृषि विशेषज्ञ महोदय को भी नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
4: सर मैं ये जानना चाहता हूँ हर किसान अच्छे उत्पादन हेतु ज्यादा से ज्यादा उर्वरक खेत में डालता है छोड़ता है, लेकिन उससे पहले और मिट्टी का परीक्षण कराना बहुत जरूरी है। तो खेत के चारों कोने से मिट्टी ली जाए और कितनी गहरी ली जाए?
1: जी डॉक्टर मीना।
5: हाँ महेंद्र जी, जो आप बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब भी हम सैंपल लेते हैं तो चारों कॉर्नर को टारगेट नहीं करना है हमारा जो, क्योंकि आप देखेंगे खेत के चारों तरफ यदि दो दो मीटर का एरिया देखेंगे वो सबसे अच्छा और फर्टाइल होता है। तो आपको बॉर्डर पहले दो मीटर छोड़ना है और जितना ओपन है इवन पेड़ और बिल्डिंग, कुएं, जो भी आपकी स्ट्रक्चर है उसके पास से भी नहीं लेना, लेकिन जितना खुला जगह है वहां से आपसे 15 से 20 जगह से मिट्टी लेना है। और मिट्टी की गहराई, जैसे जो आपकी सीजनल फसल है जो एक सीजन में खत्म होती है

0: उनके लिए 0 से 15 सेंटीमीटर की गहराई का सैंपल चाहिए। यदि आपको बाग या मेडिसिनल प्लांट जो पेरिनियल जो कई वर्षों तक चलती हैं ऐसी फसल उगानी है तो आपको प्रोफाइल सैंपल लेना है, और वो सैंपल लेके आपको जैसे मतलब लैब के लिए आपको 300 से 500 ग्राम मिट्टी आपको भेजनी है। ऐसा नहीं कि आपने 15 से 20 जगह से 3 किलो 4 किलो मिट्टी ले ली और सबको फिर कैरी करें, तो वो नहीं है। लेकिन आप ये जो आपने मैं बोला ये बिल्कुल सही नहीं है, चारों कॉर्नर को कभी भी आपको सैंपल में मतलब ऐसा जो लेते हैं वो गलत सैंपल है। तो आपको यही है कि बॉर्डर इफेक्ट छोड़िए और जितना ओपन एरिया है वहां से 15 से 20 जगह से मिट्टी उठाइए और उसको अच्छे से मिक्स करके और उसमें से 300 से 500 ग्राम अपनी लैब को सैंपल चाहिए होता है।
1: जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। समय समय पर श्रोताओं जो हमारे किसान भाई सुन रहे हैं, समय समय पर सॉइल टेस्टिंग कराते रहनी चाहिए, और सरकार ने इसके लिए योजना भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी शुरू की है, तो उसका लाभ जरूर ले। व्हाट्सएप पे भी हमारे पास एक प्रश्न आया है मध्य प्रदेश के पन्ना से हर्षवर्धन पांडे जी का। उन्होंने पूछा है कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत किसानों को कौन सी खेती करनी चाहिए।
0: देखो सबसे बड़ी बात है कि खेत बचाओ जो अभियान है वो विशेषकर जो हमारी मिट्टियाँ हैं धीरे धीरे जो मतलब उनकी उपजाऊता घटती जा रही है, उत्पादकता घटती जा रही है तो और बैरन होती जा रही है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं या कभी हम ऑर्गेनिक मेन्योर जैविक खादों का कभी उपयोग नहीं कर रहे, फसल चक्र नहीं अपना रहे, कभी भी हमने दलहनी फसलें नहीं उगाते, तो इनसे क्या है ना धीरे धीरे नकारात्मक प्रभाव पड़ता जा रहा है। तो हमारा जो इसमें जो फसल खेत बचाओ अभियान इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम कैसे मिट्टी की उत्पादकता और उसकी उर्वरकता हम कैसे बढ़ाएं, और इसमें सबसे बढ़िया है कि आप समय समय पे जैसे मान लो आप वर्मी कंपोस्ट और आप कंपोस्ट गोबर की खाद नहीं कर सकते तो हरी खाद आप जरूर कीजिए, वो नहीं कर सकते तो अभी जैसे हम अब एक श्रोता ने हमसे पूछा था कि क्रॉप रेसिड्यू का जो फसल अवशेष हैं उनको आप वहीं पे जैसे पूसा डिकम्पोजर है ऐसे बहुत सारे डिकम्पोजर हैं उनका उपयोग करके उनको वहीं गलन करके, मतलब अल्टीमेट ये है कि हमको मिट्टी को कार्बन देना है और कार्बन देंगे तो वो जैसे हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन तो वो उसका सॉइल का हीमोग्लोबिन है, यदि जैसे जैसे कार्बन घटता जाता है मिट्टी की अपनी शक्ति है वो कम होती जाती है। तो किसान भाइयों को यही है कि ऐसी फसलें अपनाएं जिसके द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा अवशेष या हम ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल मिट्टी को दे पाएं और उसकी उर्वरकता हम बढ़ा पाएं।
1: डॉक्टर जैसे अभी हम बात कर रहे हैं जैविक खेत, गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट के बारे में, हरी खाद, मतलब इन तकनीकों को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है मृदा जो पोषक तत्वों को बढ़ाने में। डॉक्टर
2: जैसा कि आप जानते हैं कि हमें जितने भी खादों के बारे में डॉक्टर मीना ने जिक्र किया है, एक्चुअली जो हरी खाद है ये तो हमेशा सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ में उसका ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ाती है और साथ साथ में मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ में उसके जो भौतिक गुणों में उनमें भी काफी सुधार लाती है। तो हमें समय समय पर इसका उपयोग करना चाहिए, और अगर हम उपयोग नहीं कर पाते हरी खाद का तो हमें दो फसलों के बीच में एक दलहनी फसल जरूर लेनी चाहिए। उसमें क्या होता है दलहनी फसल काफी मात्रा में नाइट्रोजन भी फिक्स करती है और हमारा ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ाने में मदद करती है, और उसमें हम केवल फली का उत्पादन ले लें यानी दाना का उत्पादन ले लें, बाकी पौधों को अगर सॉइल में इंकॉर्पोरेट कर देते तो हरी खाद का भी काम करता है। एक तो ये बात होगी, दूसरी बात है कि जितने भी हमारे पास पशुओं की संख्या आजकल संसार में सबसे ज्यादा है और आज हम काफी बड़ी मात्रा में लगभग 2 लाख करोड़ के करीब रुपए खर्च करते हैं विदेशों या तो खाद आयात करने में या उनके ऊपर सब्सिडी देने में, जबकि हमारे जो अपने संसाधन है वो वेस्ट हो रहे हैं जिनकी वजह से नदियां भी पोल्यूट हो रही हैं और साथ साथ में हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी बाहर से मंगाने पड़ते हैं, तो उनका भी सब्सिडी हो सकता है। अगर हम इन सबको बायोगैस के माध्यम से एनारोबिक डाइजेशन के माध्यम से उनका खाद भी बनाए साथ में उसका गैस का उपयोग भी करें तो ये हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य को भी सुधारेगा, साथ साथ में हमारा पैसा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जाता है उसकी भी बचत करेगा और हमारी गैस के माध्यम से भी हमें स्वावलंबी गांव बन सकते हैं। और आजकल इस गैस के माध्यम से मैं गाड़ियां भी चला रहे हैं तो उसका भी काफी बड़ा लाभ हो सकता है, और जबकि ये हमें बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा जितने हमारे देसी खाद अगर बनाने का जो कंपोस्ट भी बनाते हैं तो उसमें भी आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि कंपोस्ट बनाते समय उन चीजों को अगर हम इनकॉर्पोरेट लगा देंगे तो एक तो कंपोस्ट जल्दी बनेगा, कंपोस्ट की गुणवत्ता बेटर होगी, इसमें एक तो वेस्ट डिकम्पोजर होगा, इसके साथ साथ में हमारे पास कुछ जैविक खाद है जो उनके माध्यम से दे सकते हैं या कुछ जैविक ऐसी भी चीजें हैं जो फफूंद नाशक है जैसे ट्राइकोडर्मा वीडी का जिक्र किया था, सिडोमोनस का जिक्र किया था, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। तीसरी बात है हमें एक तो खरपतवारों का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह करना है जिससे कि हम कीड़े के प्रकोप को या जो नुकसान को भी कम कर पाए। एक पानी हमारे पास सीमित संसाधन है तो पानी का सदुपयोग होना या सही मात्रा में उपयोग होना बहुत जरूरी है। एक्सेस पानी हमारे न्यूट्रिएंट को

0: लॉस करता है, खरपतवारों को बढ़ावा देता है, कीड़े और बीमारी को भी बढ़ावा देता है, तो इसका उपयोग ठीक से होना बहुत जरूरी है। और कई बार जब कम बारिश होती है तो उसमें और ज्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है। तो इस साल हमारे किसानों को बहुत जागरूक रहना चाहिए कि बरसात से पहले ही अपने खेत की मेड़ मजबूत रखें और अधिक से अधिक पानी खेत के अंदर जाए और बह के ना जाए, क्योंकि जो पानी बह के जाता है वो न्यूट्रिएंट को भी लेके जाता है और नुकसान करता है। तो हमारे किसानों को उन सब बातों का विशेष ध्यान रखना।
1: ये बहुत जरूरी बात आपने कही कि जल संरक्षण भी साथ साथ बहुत जरूरी है। उड़ीसा से हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, देशदीप दास जी। हेलो
2: जी, नमस्ते।
1: नमस्कार
2: जी, मेरा प्रश्न है
1: जी,
2: बीज उपचार करने से फसलों को बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है?
0: मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फसलों बीज उपचार करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बीज के माध्यम से ही अगली फसल में जाती हैं, या अगर हम उसको बीज को उपचार कर देते तो मिट्टी में भी कुछ अगर फफूंद है तो उसका रोकथाम हो जाती है, जमाव भी अच्छा होता है, पौधा बहुत हेल्दी होता है। और बीज उपचार करने के लिए जितनी भी फसलें हैं उनके साथ साथ में दिया होता है कि हमें किस चीज़ से उपचार करना है। जैसे कि मैं एक छोटा एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि हमारे यहाँ ब्लैक समेट एक गेहूँ में बीमारी आती है और इससे बाली काली हो जाती है, उसमें दाना नहीं बनता है, और यही इसी किस्म के अगर बीज का हम बार बार उपयोग करेंगे तो काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। लेकिन इसमें अगर हम सही से फफूंदनाशक दवाई से बीज उपचार कर देंगे तो इस बीमारी का स्वतः ही नियंत्रण हो जाएगा, तो आपके आगे फसल में भी नहीं जाएगा, आप बीज भी अच्छा पैदा कर पाओगे और बहुत अच्छा कर पाओगे। तो बीज उपचार बहुत ही जरूरी है। बीज उपचार के लिए दोनों चीज़ें उपलब्ध हैं, रासायनिक भी उपलब्ध हैं और आजकल जैविक भी कई सारे ऐसे संसाधन हैं जो कि जिनकी रिकमेंडेशन की जाती है कि बीज बोने से पहले हम उसका उपचार कैसे करें। कई बार हमें जो हमारी प्योद होती है जैसे हमने रुपाई करनी है तो उसमें भी फफूंदनाशक दवाई भी काफी प्रयोग किया जाता है और साथ साथ में कुछ जीवाणु खाद के टीके भी होते हैं जिनका बीज के माध्यम से भी प्रयोग करते हैं और साथ साथ में इसको प्योद को भी इसमें अगर उसको उपचारित करके लगाते हैं तो खाद की भी बचत होती है और किसान का उत्पादन लागत बढ़ती है। कुछ हमारे खाद के टीके ऐसे हैं जैसे आपकी धान की फसल है उसमें ब्लूग्रीन एल्गी है या अजूला है, तो ये भी ऐसी चीजें हैं जो कम खर्चे में किसानों को ज्यादा लाभ देती है, इनका भी उपयोग कर सकते हैं।
1: छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं इंद्रभान सिंह जी।
3: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलेज जिला कुंजा छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ
1: जी।
3: प्रश्न यह है, मैदानी भागों में की जाने वाली खेतों में तो कृषि उपकरणों का उपयोग आज किया जाने लगा है, लेकिन ऊंची नीची जमीनों पर और सुदूर पहाड़ियों में की जाने वाली खेती में जनजाति लोग नवीन उपकरणों का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसा क्यों?
1: डॉक्टर मीना आप क्या कहेंगे?
4: जैसे इंद्रबान जी जो पूछ रहे हैं कि जैसे ऊंचे नीचे जो एरिया है प्लेन में, तो देखो अभी मैकेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है और अभी हम बहुत सारे जैसे मेजोरिटी हमारे किसान भाई मतलब मशीनरी का उपयोग करते हैं, लेकिन जैसे ऊंचे नीचे भागे तो वहाँ पे क्या ना एक विशेष स्पेशल मशीनरी की जरूरत होती है, मतलब छोटी मशीनरियों की जरूरत होती है जो उसको हम आसानी से मतलब उन पे वहाँ पे एरिया में ले जा सकते हैं कर सकते हैं। दूसरा उनका था कि जनजाति जो पीपल भाई हैं कि वो उनका उपयोग मतलब कम कर पा रहे हैं, तो देखो सबसे बड़ी बात वही है कि जैसे एक तो उनकी अवेलेबलता मतलब वो ऐसी छोटी मशीनें अवेलेबल हैं कि नहीं है, दूसरी एक किसान की जागरूकता, जैसे हम जो जनजाति किसान भाई हैं अभी उनमें मतलब मशीनरी के बारे में अवेयरनेस नहीं है, बहुत कम लोग जान पाते हैं कि किसके लिए कौन सी मशीन उपलब्ध है। और जैसे छत्तीसगढ़ में है या एमपी में है अपने बहुत सारे जो इंजीनियरिंग मशीनरी के जो संस्थान हैं और वहाँ पे छोटी छोटी मशीनें अवेलेबल हैं, बस बात यही है कि उनको किसान तक पहुँच नहीं है और किसान को भी उनके बारे में मतलब नॉलेज नहीं है कि
1: कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर अगर जिसपे किसान कॉल कर सकते हो और जो उनकी जिज्ञासा है जो अगर समस्या है वो पूछ सकते हो।
0: मैं इसमें दो बार ऐड करना चाहूंगा कि हमारा जो और भारत सरकार है उन्होंने एक अलग से हेल्पलाइन नंबर दे रखा है किसान कॉल सेंटर का, और वो पूरे देश में है और कहीं का किसान अगर वहां से कॉल करता है तो उसके राज्य के ही हेल्पलाइन सेंटर पे जाएगा और उसकी जिज्ञासा का समाधान होगा और जो भी जानकारी उसको मिलेगी। ये नंबर है 1800 1551 1551। तो ये हमारा किसान कॉल सेंटर का नंबर, इसी तरह पूसा संस्थान का भी कॉल सेंटर का नंबर है और वो है 1800118989, तो उसमें भी कर सकते हैं। पूसा में एक और भी नंबर है जिसमें आपका यहाँ का एसटीडी कोड लगाएंगे 01125841670, ये भी एक नंबर है जो पूसा संस्थान में जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार के जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके भी नंबर हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक और जो अभी हमारे एक साथी ने क्वेश्चन पूछा था ऊंची नीची जमीनों में,

0: देखो जो ऊंची नीची जमीनों में जब टेक्नोलॉजी गई है तभी बहुत उत्पादन हुआ, खासकर अगर मिसाल का हरियाणा का नंबर बात करें या राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे स्प्रिंकलर इरीगेशन और ड्रिप इरीगेशन से जहाँ पे कोई पैदावार नहीं होती थी आज वो एरिया बहुत ही उपजाऊ हो चुके हैं। तो ये टेक्नोलॉजी तो जा रही है लेकिन हाँ क्योंकि जनजाति क्षेत्र में कम जा रही है उसको जाने के लिए उनके स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी भी वहाँ पे डेवलप हो रही है और प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं लेकिन और भी प्रयास करने की आवश्यकता है।
1: जी हरियाणा के हिसार से जुड़े हैं राजेंद्र जी।
2: नमस्कार जी प्रियंका जी और विशेषज्ञ जी को भी नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी
2: प्रियंका जी, आपने मनोज कुमार की फिल्म के बारे में वो गीत बताया, अच्छे बताए और धरती कहे पुकार के ये भी
1: जी,
2: एक
1: जी राजेंद्र जी हमारे पास समय कम है, अपना प्रश्न पूछे।
2: जी जो शहर का बेस्ट पानी होता है वो सीधा खेतों में जाता है, इसमें केमिकल तरह तरह के केमिकल मिले होते हैं, इसको सफाई करके अगर पानी को खेतों में डाले जाए तो बंजर होने से खेती को बचाया जा सकता है, और क्या किसी की खेती बंजर हो चुकी है तो क्या इस पे कोई लोन मिलना
1: जी डॉक्टर मीना।
3: हाँ तो अभी राजेंद्र जी जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, देखो ऐसा नहीं है और हमारे जो सरकारें हैं वो जितना भी हमारा वेस्ट आ रहा है उसको ट्रीट करके, जैसे हमारे स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं और ये सब ट्रीट करके ही उसको डिस्पोज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा यदि मान लो उनको देखने में आया है तो उसको क्या है ना थोड़ा अपने लेवल पे भी किसान भाई इकट्ठा करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब उसमें दो तरह की होता है, कभी कभी जैसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, कभी कभी साल्ट की प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज को पहले हम उसका क्या ना जो भी वेस्ट आ रहा है उनके एरिया में उसको पहले जांच करा लें, क्योंकि जांच से ही हमें एग्जैक्ट पता लगेगा कि इसमें किस तरह की समस्या है, कोई केमिकल की समस्या है कि साल्ट की समस्या है या बायोलॉजिकल सिस्टम, क्योंकि अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, और उसका एक बार जब पता लग गया कि इसमें ये प्रॉब्लम है तो उसका निवारण आराम से उपलब्ध है और उसकी परामर्श करके वो उसका ट्रीट करके उसको फसल के लिए वो कर सकते हैं। दूसरा वो कह रहे थे कि इसके लिए देखो सरकार का बहुत सारे प्लान चल रहे हैं जो जैसे हमारे जमीन सुधार के लिए, तो उसमें जैसे मान लो कहीं लवणीयता हो गई, क्षारीयता हो गई, अम्लीयता हो गई, उस कारण से कभी कभी क्योंकि एसिडिक नेचर का भी तो पीएच डाउन हो जाता है, तो उनको सुधार के लिए बहुत सारे प्रोग्राम है तो उनकी मदद वो ले सकते हैं।
1: डॉक्टर दबास आपसे अंत में सवाल जानना चाहूंगी कि उर्वरक और का जो अत्यधिक उपयोग होता है उससे हमारे पर्यावरण को, हमारे स्वास्थ्य को, जो मानव स्वास्थ्य की बात करते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है?
0: देखो एक्सेस उर्वरक, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कोई भी चीज हमारे अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं उसका बहुत ही नुकसान होता है, और यही उर्वरकों का हाल है, जब हम उसको सही हम फसल से ज्यादा या संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हैं तो उसमें से फसल तो उसका कम प्रयोग कर पाती है लेकिन उसमें से अधिकतर भाग या तो वातावरण में जाता है जो उसको प्रदूषित करता है, या मिट्टी में या पानी के होते हुए हमारे पानी को भी प्रदूषित करता है, क्योंकि हमें सही मात्रा में उपयोग करना बहुत जरूरी है और हमें ये भी देखना है कि हमारी मिट्टी कैसी है, उसमें कौन से किस्म के उर्वरक का और कब और कितना उपयोग करना है, तो ये जानकारी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से लग सकती है, तो हर किसान को अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में रहना चाहिए और अपने जिले के बारे में जाने, हमारी कौन सी समस्या, उनका समाधान क्या है, उनकी रिकमेंडेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे पूरे भारत सरकार के लेवल पे हमको एक रिकमेंडेशन नहीं बता सकते, वो जगह जगह पे वेरी करेगी और उसको अगर सही मात्रा में देखना तो हमें कृषि विज्ञान केंद्र से या कृषि विश्वविद्यालय से या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान के उनके माध्यम से मिलकर उनको हम टैकल कर सकते हैं। किसानों को संगठित कर होके एक सामूहिक प्रयास करते हैं उसका ज्यादा लाभ मिलता है, पानी का भी हमें प्रॉपर शब्द उपयोग करना चाहिए और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखना है, तो आपको समेकित पोषक तत्व प्रबंध करना बहुत ही जरूरी है।
1: तो जो समय जो कह रहा है, जो आज की जरूरत है कि हम मृदा स्वास्थ्य को समझें, उर्वरकों का संतुलित और वैज्ञानिक उपयोग करें और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए खेतों को सुरक्षित रखें। डॉक्टर दबास, डॉक्टर मीणा, आप दोनों का धन्यवाद, आपने इस चर्चा में भाग लिया। अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी पब्लिक स्पीक में एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।
0: नमस्कार।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़, साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर। रात के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए अपनी पसंद के पुरानी फिल्मी गीतों का हमारा ये जीवंत फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: एक सवाल जो हम खुद से पूछते हैं कि वो कौन है जो हमें सच में प्यार करता है। कहते हैं जो हमारी खामोशी को समझ जाए वही हमसे सच्चा प्यार करता है। और ये खामोशी हमारी जो समझ जाए उस प्यार करने वाले को हम कभी भुला नहीं पाते। उसके साथ होना हमें खुशियां देती है, उसके पास होना हमें खूबसूरत जिंदगी का एक सुंदर सा एहसास देता है। जी हाँ दोस्तों, आज है 8 जून। हम बात कर रहे हैं आज आपके उसी अपने आकाशवाणी की। सबसे पहले आप सभी सुनने वालों को आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने की ढेर सारी बधाइयां। 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो यानी भारतीय अखिल प्रसारण का जो एक माध्यम बना गया, एक ऐसी वाणी जो उस वक्त अकल्पनीय थी, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से हम तक पहुंची। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस ऑल इंडिया रेडियो को औपचारिक रूप से हमने नाम दिया आकाशवाणी। कहते जब हम अकेले होते हैं, हमारे साथ कोई नहीं होता, फिर भी ये हमारे साथ होता है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन एक साथ हम तक पहुंचाने वाला हमारा ये साथी। यूं ही अपने सफर में आगे बढ़ता रहे। एक बार फिर आपके साथ है आपका ये रेडियो हम सफर संजीव कुमार सुधाकर। आप सभी सुनने वालों को दिल की गहराइयों से हमारा प्यार भरा नमस्कार। उसी प्यार, उसी अपनेपन के साथ हम हैं आपके पास, बिल्कुल आपके करीब, आपके रेडियो से और न्यूज ऑन AIR इस ऐप के माध्यम से आप तक। 9430029353 हमारा ये नंबर है, हमें आपका इंतजार, आपके पसंद के प्यारे पुरानी फिल्मी गीतों का इंतजार। और बिल्कुल हमें पता है कि हमारे सुनने वालों को अब ये नंबर बिल्कुल याद हो चुका है, हमारे एक श्रोता जुड़ चुके हैं, आइए ना मिलते हैं उनसे। हेलो,
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, स्वागत करते हैं हम अपने श्रोता का जानी पहचाने से। आवाज,
1: हम साबिर परवाना बोल रहे हैं, नहर मन टोला जिला मधुबनी बिहार से।
0: स्वागत करते हैं साबिर परवाना साहब।
1: कैसे हैं सर आप?
0: बिल्कुल अच्छे हैं, आप बताइए।
1: हाँ हम भी ठीक है सर, आप लोग का दुआ है, ठीक है एकदम।
0: इन दिनों कहाँ हैं, गांव है या?
1: गांव में है सर।
0: तो भाई आम तो अब पकने शुरू हो गए हैं ना?
1: जी जी।
0: आपके क्षेत्र में भी बेहतर आम होते हैं?
1: जी सर जी।
0: तो आम का आनंद ले रहे हैं?
1: जी जी।
0: गर्मी ने थोड़ा परेशान किया होगा?
1: बहुत ज्यादा सर, आज तो बारिश हुआ है, जम करके एकदम
0: बारिश हुई है, लेकिन हमारे इधर अभी बारिश नहीं हुई है। अब बादल और बिजली काफी तेज, बिजली मैंने देखा आसमान में चमकते हुए।
1: जी जी।
0: तो लग रहा था कि कहीं जोरदार बारिश हो रही है, इतनी तेज बिजली चमक रही थी।
1: जी सर।
0: वैसे इस वक्त मैं स्टूडियो में हूँ, बाहर का मौसम आप ही बताएंगे, इस वक्त का हाल बताइए।
1: अभी तो सर बारिश खत्म है, अभी नहीं बारिश।
0: ये बताइए साबिर भाई, आज आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, सबसे पहले आप सभी सुनने वालों को एक बार फिर बधाई।
1: जी आप लोग को भी, सभी श्रोता मित्र को भी।
0: कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: आज सरस्वती चंद्र का गाना सुना दीजिए, फूल कीजिए भेजा है खत में।
0: क्या बात है भाई, खत से जारी जो ये सिलसिला

0: मिला हुआ था ना फूल भेजने का, अब मोबाइल सेट तक पहुंच गया है साबिर भाई, और आज मोबाइल सेट के माध्यम से आपने ये ख्वाहिश हम तक पहुंचाई है, तो ये ख्वाहिश ये फूल हम आप तक पहुंचाते हैं, तमाम सुनने वालों तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साबिर भाई।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार।

0: कुमार रंजन सर।
1: ज्ञानेश कुमार रंजन जी, भाई आप तो पुराने श्रोता हो गए अब इस कार्यक्रम में।
0: जी सर, मकरमपुर पंचायत से बोल रहा सर, मोहन बडियाम गांव से।
1: मकरमपुर से हम स्वागत करते हैं आपका, कैसे हैं?
0: ठीक है सर, आप कैसे हैं?
1: बिल्कुल अच्छे हैं। कैसा लगता है ये कार्यक्रम?
0: आकाशवाणी का 90 साल हो गया सर।
1: बिल्कुल, शुभकामनाएं आपको हमारी।
0: बहुत जी, 90 साल हो गया सर आज।
1: ये सफर यूं ही चलता रहेगा जब तक आप जैसे चाहने वाले आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं।
0: जी।
1: और ज्ञानेश जी, हम जानना चाहेंगे आज आपकी पसंद, अपनी पसंद हमें बताएं।
0: आराधना फिल्म का सर गाना, किशोर कुमार का।
1: कोरा कागज था, कोरा कागज था ये मन मेरा, है ना? गीत के बोल।
0: जी सर।
1: तो हम बिना देर किए हुए ये कोशिश करते हैं कि आप तक आपकी पसंद पहुंचाए, इस उम्मीद में कि आपका ये प्यार, ये अपनापन यू ही इस कार्यक्रम से बना रहे, आकाशवाणी से बना रहे।
0: जी सर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्ञानेश जी।
0: जी सर, धन्यवाद।
1: शुभ रात्रि, धन्यवाद।

0: आप ही के पसंद के प्यार भरे पुराने फिल्मी गीतों के ये खूबसूरत फूल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा, अपने पसंद के पुराने फिल्मी गीतों का ये जीवंत फोन इन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हेलो आकाशवाणी। हेलो
1: जी, हेलो,
0: स्वागत है आपका जी, अपना नाम बताएं।

9430029353 हमारा ये मोबाइल नंबर है। इसी वक्त हमें कॉल कीजिए और सुनिए अपनी पसंद के पुराने सदाबहार फिल्मी गाने। एक श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए मिलते हैं उनसे। बड़ी मुश्किल से कॉल लगता है आप श्रोताओं का, हम समझ सकते हैं। और इस वक्त हमारी कोशिश है आप तक जल्द से जल्द पहुंचने की।

श्रोताओ, इस बीच में हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हुए थे, कादिर अली जी, पुरानी श्रोता हैं। अचानक इनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द हम आपके कॉल को ले और आप तक आपकी पसंद के गाने सुनाएं। दोस्तों, आज आपको बता रहा था कार्यक्रम की शुरुआत में ही कि आज आकाशवाणी अपने गौरवशाली 90 वर्ष पूरे कर रहा है। एक बात, आज इस फोन इन कार्यक्रम में आप शामिल होते हैं तो आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जो पहली बार आकाशवाणी से जो फोन इन कार्यक्रम हुआ था ना, वो 10 जनवरी 1993 को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया था। कादिर अली जी का फोन इस बीच में डिस्कनेक्ट हो गया है। जहां तक हमारी कोशिश थी, चले गीत आप तक पहुंचाते हैं इस उम्मीद में जब तक आपका कॉल आ जाए।

हमारी ये कोशिश है कि जल्द से जल्द हम आप तक आपकी पसंद पहुंचाएं, और ये कार्यक्रम भी आप श्रोताओं का है, आपकी पसंद का है। हेलो आकाशवाणी, आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति। हमने आपको बताया था कि एक कॉल हम पूरी तरह आप तक नहीं पहुंचा सके, उन श्रोता को तो हम

0: सेट तक उनकी फरमाइश के साथ नहीं पहुंच सके, लेकिन इस बीच में हमारे साथ एक और श्रोता जुड़ चुके हैं, आइए मिलते हैं उनसे। हेलो।
1: हेलो सर, नमस्कार,
0: स्वागत है आपका।
1: हेलो, नमस्कार नमस्कार संजीव कुमार सुधाकर भाई, मैं राम पक्की जिला मधुबनी बिहार से सुनैन महतो बोल रहा हूँ सर।
0: क्या बात है भाई, मधुबनी जिला के ही, आपके कॉल से पहले एक कॉल आया था कादिर अली साहब का, और ये अच्छा संयोग है कि चलिए उसी जिला से कम आप शामिल हो गए, और हम समझते हैं कि वो भी आपको सुन रहे होंगे, तो ये जरूर समझ रहे होंगे कि चलो अपने ही जिला के किसी का कॉल लगा है।
1: जिला का ही नहीं बल्कि हमारे पड़ोसियाँ बहुत नजदीक हम लोग का, एक दूसरे
0: क्या बात है भाई, क्या बात है,
1: हमारे घर से लगभग 1 किलोमीटर पूरे में उनका घर पड़ता है, इसलिए से हम लोग एक पड़ोसी है और कादिर परवान और मैं।
0: ये तो बड़ी सुखद बात है। ये बताइए आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: गीत हमको फिल्म गौतम गोविंदा का गीत सुना दीजिए, आशा भोसले सर के स्वर में दरोगा जी चोरी हो गई।
0: क्या बात है भाई, तो बिना देर किए हुए हम इस उम्मीद में हमारे पुराने श्रोता और तमाम श्रोताओं तक ये गीत हम पहुंचाते हैं फिल्म गौतम गोविंदा से। एक बार फिर आपको शुभ नारायण महतो जी, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: चलिए आप सबको, आपको भी समस्त श्रोता भाई को भी ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया शुभ नारायण जी, नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: हेलो आकाशवाणी,
0: स्वागत है आपका।
1: जी सर।
0: आवाज तो हमारी पहचान में आ गई है, लेकिन हम चाहेंगे कि काफी दिनों बाद ये आवाज आज सुनने को मिल रही है। हम चाहते हैं कि तमाम तमाम सुनने वालों तक अगर आप खुद ही अपना परिचय दें तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। हेलो,
1: हाँ मैं कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता राजनगर मधुबनी से बोल रहा हूँ। आपके पुराने श्रोता हूँ मैं आपके केंद्र के।
0: बिल्कुल बिल्कुल, पुराने श्रोता हैं, कई चिट्ठियां भी आपकी कई कार्यक्रमों में शामिल होते रहते हैं, मैं सुनता रहता हूँ। ये बताइए कैसे हैं गुप्ता साहब?
1: बस मैं ठीक हूँ। आज थोड़ा सा मौसम सुहाना है, बारिश हुई है हल्का फुल्का।
0: तो हम तो चाहेंगे कि उस बारिश को थोड़ा सा और पश्चिम की ओर भेज दें।
1: एक बात ये है कि आकाशवाणी दरभंगा का 50 वर्ष पूरा होने पर आप लोग को बधाई।
0: क्या बात है।
1: और आकाशवाणी की 90 साल आज पूरा होने जा रहा है, और आकाशवाणी ने हमें बहुत कुछ दिया है। मित्र दिया है, आकाशवाणी केंद्र दिया है, सच्चे दोस्त दिया है, उद्घोषक दिया है, सबने ना।
0: कहते हैं ना आकाशवाणी का जो मूल मंत्र है ना कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, मतलब चाहे बात बोली और भाषा की हो, विभिन्न बोली भाषा की, मतलब हर चीज को संरक्षित और उसको आगे बढ़ाने का वो जो योगदान संपूर्ण तरीके से अगर निभाया जा सकता है तो आकाशवाणी ने इसका सुंदर सा प्रमाण दिया है।
1: मैं कहीं भी जाता हूँ, कोई दूसरे शहर का आकाशवाणी जरूर मैं जाता हूँ, जैसे लखनऊ हुआ, अयोध्या हुआ, राजकोट भी मैं गया था, समझे ना।
0: जी जी।
1: और मिला उनसे, और वहाँ के बहुत से रेडियो दोस्त भी मिले। आजकल भी बातचीत होती रहती है, और आपके केंद्र के जितने भी पुराने रिश्तेदार है, जैसे कि आज पहला कॉल जिनका लगा है उससे भी मेरा बहुत पुराना रिश्ता है।
0: और देखिए ना, सभी लोग आसपास के ही आज लगभग जितने कॉल लगे हैं, ये एक अच्छा संयोग भी आप लोगों के लिए। और गुप्ता साहब स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, आप एक वरिष्ठ श्रोता हैं, हमारे पुराने श्रोता हैं, शुरुआती दौर से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल अच्छे हैं ना।
1: जी, स्वस्थ है आप लोगों की दुआ से।
0: बिल्कुल, हम सबों की दुआ आपके साथ हमेशा बनी रहेगी, ऐसे ही स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आप ही का तो ये साथ है, अपनापन है, जो आज आकाशवाणी अपने 90 गौरवशाली वर्ष पूरे कर रहा है।
1: संगीत ही जीवन है, संगीत के जीवन बिना जीवन अधूरा होता है, समझे ना।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये संगीत जो है, ये अधूरापन को हम चाहेंगे कि दूर करें, क्योंकि संगीत से हम लोग पूर्ण हो जाते हैं, है ना।
1: जी सर,
0: बड़ी अच्छी बातें कही आपने। कौन सा गीत सुनवाएं, कौन सा गीत आज बजे जो सब लोग आपके नाम से आज हम लोग

0: मुझे फर्ज का गीत है मुकेश लता मंगेशकर की आवाज में,
1: जी जी
0: क्योंकि आसमानी का मैं दीवाना हूँ, हम तो तेरे आशिक है।
1: क्या बात है भाई,
0: पुरानी
1: क्या बात है। तो हम तो चाहेंगे कि हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आप जैसे दीवाने श्रोता इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं शुरुआती दौर से, मुझे याद है। तो आज इस दीवाने की आवाज़ थोड़ा गुनगुना ले तो बेहतर लगेगा।
0: हम तो तेरे आशिक है सभी हो पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने, मगर आपको मानना पड़ेगा।
1: हाँ बिल्कुल, मानते हैं, सलाम करते हैं आपको, सर झुकाते हैं आप तमाम सुनने वालों के लिए। ये आपका अपनापन, ये गुनगुनाहट, ये मोहब्बत, ये हंसी ऐसे ही बने रहे तमाम श्रोताओं पर। बहुत बहुत
0: जी
1: शुक्रिया
0: सर,
1: कुशेश्वर गुप्ता जी, शुभ रात्रि।
0: बहुत धन्यवाद सर।

कि मुट्ठी भर मोहब्बत बिखेर दो जमीन पर, बारिश का मौसम आ रहा है, शायद मोहब्बत पनप जाए। अपनी पसंद के पुराने फिल्मी गीतों का ये जीवंत फोन इन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी

0: दरभंगा। हेलो।
1: हेलो,
0: स्वागत है आपका जी। अपना नाम बताएं हमें।
1: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर तहसील सरण जिला विदिशा मध्य प्रदेश एमपी से।
0: हारून साहब स्वागत करते हैं आपका।
1: जी और आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं लगातार इसको?
1: जी जी। और मौसम कैसा है आपके दर?
0: हमारे यहाँ तो बड़ी तेज गर्मी है और क्या बताएं, थोड़ी सी बारिश आसपास के जिलों में हुई है। उम्मीद है कि देर रात शायद इधर भी हो जाए।
1: हमारे इधर भी ऐसे मौसम है, गर्मी की उमस है, बादल भी छाए हैं, लेकिन थोड़ी बहुत टिमटिम बारिश हो जाती है।
0: हमारे इधर तो थोड़ी भी बारिश अभी इन दिनों नहीं हुई। लगातार उमस भरी गर्मी, दिन रात एक जैसा, बूढ़े बच्चे सब परेशान।
1: जी जी। हेलो, आकाशवाणी के लोग अच्छे हैं,
0: दुआ है आप चाहने वालों की, आप तमाम अपनों की। आप बताइए कैसे अरुण साहब इन दिनों?
1: अकबर हम ठीक ठाक हैं, आपको ट्राई कर रहे थे, फोन लगा रहे थे, बाहर बैठे हुए हैं और आपसे बातचीत हो रही है और आपसे जल्दी भी कॉल मिल गया आपसे।
0: तो अभी जहाँ बैठे हुए हवा थोड़ी महसूस हो रही है कि नहीं?

0: बूढ़े बच्चे सब परेशान।
1: जी जी हेलो आकाशवाणी के लोग अच्छे हैं,
0: दुआ है आप चाहने वालों की, आप तमाम अपनों की। आप बताइए कैसे अरुण साहब इन दिनों?
1: अकबर हम ठीक ठाक हैं, आपको ट्राई कर रहे थे, फोन लगा रहे थे, बाहर बैठे हुए हैं और आपसे बातचीत हो रही है और आप पीछे जल्दी भी कॉल में लगे आपसे।
0: तो अभी जहाँ बैठे हुए हवा थोड़ी महसूस हो रही है कि नहीं?
1: जी जी जी
0: अच्छा लग रहा होगा है ना?
1: अच्छा लग रहा है हवा, लेकिन सुन है लेकिन बैठे हुए हैं बाहर।
0: बड़ा मजा आता भाई एकांत में कहीं प्रकृति के बीच में रेडियो सुनना।
1: जी जी क्या है रेडियो के साथ में अपने साथ मनोरंजन हो जाता है, साथ में मैच भी देख लेते हैं, मैच कमेंट्री वगैरह खेल जो चलता है ना मोबाइल पे जो सब देख लेते हैं। रेडियो से रेडियो की दीवानगी तो बात अलग ही रहती है।
0: आज देखे ना 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं आकाशवाणी के, एक बार फिर आप तमाम सुनने वालों को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: जी आपको भी 90 वर्ष की रेडियो की हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।
0: अरुण साहब ये प्यार ये मोहब्बत अपनापन बना रहे ताउम्र, हम तो यही गुजारिश करते हैं आपसे।
1: जी जी ये प्यार मोहब्बत तो रहेगा रेडियो का आकाशवाणी से,
0: तो आज
1: चलता रहेगा।
0: इस मोहब्बत को और बेहतर करें कौन सा गीत सुनवाएं आज आपको?
1: जी यही गांजा का सुना देना मोहम्मद रफी की आवाज में, ये दुनिया ये महफिल बड़े काम की नहीं।
0: काम की बनाएंगे हम लोग
1: काम की तो बनाएंगे खैर
0: बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिंदगी में हारून साहब जो हमारे काम की तो सच में नहीं होती लेकिन उसे काम की बनानी पड़ती है।
1: जी जी बनाने तो पड़ती है, खैर कुछ काम होता है तो इसको तो काम करने की जरूरत ही तो पड़ती है।
0: चलिए हम लोग मिलकर इसको काम की बनाते हैं, सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत। बहुत बहुत शुक्रिया हारून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया
1: आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत हुई,
0: हमें भी बड़ी खुशी हुई। ऐसे ही फोन करते रहिएगा, इस कार्यक्रम को सुनते रहिएगा, शुक्रिया आपका, शुभ रात्रि,
1: धन्यवाद।

0: अपनी पसंद के पुरानी फिल्मी गीतों का ये जीवंत फोन इन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। एक बार फिर आपके साथ है आपका ये रेडियो हम सफर संजीव कुमार सुधाकर। हमें है आपका इंतजार। घड़ी की सुई ये बता रही है कि कार्यक्रम लगभग 17 मिनट और है शेष। इस बीच आइए ना मिलते हैं हमारे अगले श्रोता से। हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो,
0: स्वागत है।
1: मैं राम कुमार शाह सिमरिया भिंडी पंचायत कल्याणपुर समस्तीपुर से बोल रहा हूँ।
0: राम कुमार शाह साहब हमारे पुराने श्रोता हो गए आप बिल्कुल, और लगभग कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति होती है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। हमें बल मिलता है, हमें उत्साह मिलता है आप तमाम सुनने वालों से।
1: सर्वप्रथम श्रीमान, सर्वप्रथम तो आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हमारी शुभकामनाएं पूरे रेडियो परिवार के लिए।
0: हम सबों की ओर से भी राम कुमार शाह जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आकाशवाणी का जो ये मूल मंत्र है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय,
1: बहुजन सुखाय जी हाँ है, बहुत बहुत प्रमुख ये होलोग्राम के लिए में उसका मूल मंत्र।
0: तो अब ये बताइए कि क्या हम लोग आप तक जो सामग्रियां लेकर आते हैं उनमें आप लोग रुचि रखते हैं तो हमें अच्छा लगता है। अब देखिए इतनी रात हो जाती है फिर भी इस कार्यक्रम में सभी लोगों का कॉल आता है तो हम में भी देर रात तक उत्साह बना रहता है, ऊर्जा बनी रहती है। कैसे हैं आप?
1: जी हाँ, आप लोगों की कृपा है, ईश्वर की कृपा और आप लोगों की, मैं सानंद हूँ पूरे परिवार के साथ।
0: बिल्कुल ईश्वर की कृपा सदा आप सभी सुनने वालों पे बनी रहे, स्वस्थ रहें आप, इस कार्यक्रम के प्रति आपका प्यार बना रहे।
1: जी सर,
0: आज कौन सा गीत सुनवाए?
1: एक गीत है मेरे नैना सावन भागो, और इसके लिए मैं एक हमारे मित्र हैं जो बहुत अब साथ में चले गए हैं, उनकी इच्छा है ये गीत सुनने की, इसलिए हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं गीत के लिए।
0: हम समझते हैं कि जिनके आपके जैसे मित्र हो इतने सुलझे हुए वो कभी अब साथ में नहीं जा सकते। हाँ, जिंदगी में परेशानियां दुख सबके आते हैं।
1: जी सर, जी सर।
0: आप हमसे ज्यादा अनुभवी हैं, ऐसे कौन है जो इस दुनिया में आए हो उनको तकलीफ न झेलनी पड़ी हो? अब स्वयं
1: नहीं, वो तो सबके लिए, सबों के लिए।
0: तो हम जरूर उनके लिए वो गीत बजाएंगे इस उम्मीद में कि अगली बार जब हमारी आपसे बात होगी उन तक भी हमारा प्रणाम पहुंचाइए।

0: और कहिएगा
1: जी
0: ढेर सारी
1: सर, जी सर, मैं
0: बधाइयाँ आ
1: आता हूँ।
0: जाए। जी, और कहिएगा
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: सभी लोग उनके लिए
1: जी।
0: शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, जो भी परेशानी है उनकी ज़िंदगी में वो दूर हो जाए। और इस उम्मीद
1: जी
0: में ये
1: सर,
0: गीत बजा रहे हैं कि ये जो है ना, जो भी गीत है, इस गीत के माध्यम से ही ये सारे दुख तकलीफ भुलाकर अब जब मिले आपको, तो आपको
1: जी
0: बोले कि
1: सर,
0: भाई आपने जो गीत सुनाया उसने दवा का काम किया। हम इसी उम्मीद में हैं।
1: वो हम कल सवेरे में उनसे मिलकर ये बारी से बात जो कहेंगे उनसे।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जैसे नेक लोग अब कहाँ हैं, चंद लोग हैं जो औरों के लिए बेहतर सोचते हैं। ये बेहतरी औरों के लिए जो सोचने की, जो ये एक आदत है ना, अब लोगों में खत्म होती जा रही है। राम कुमार साहब
1: हाँ,
0: जी
1: एक एक गीत का है ना कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, अजी
0: दिल
1: ये
0: तो
1: जमाने
0: जिए,
1: के लिए
0: क्या बात है,
1: ये हम चाहते हैं, हमारे मन में भाव नहीं रहती।
0: बिल्कुल बिल्कुल सुनवाते हैं आपको,
1: ठीक है सर,
0: आपको और आपके तमाम
1: बहुत
0: दोस्तों
1: बहुत
0: को बहुत बहुत शुक्रिया
1: बहुत
0: आपका।
1: बहुत धन्यवाद सर,
0: आपका
1: धन्यवाद
0: भी, आपका
1: श्रीमान,
0: भी। नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: नमस्कार।

0: घड़ी की सुई अब इशारा कर रही है कि धीरे धीरे समय शेष होता जा रहा है। हमारे पास 10 मिनट और शेष है, हमारे अगले श्रोता से मिलते हैं। हेलो आकाशवाणी, कमल शाह जी हमारे पुराने श्रोता हैं भाई, स्वागत करते हैं आपका। थोड़ी सी दूरी बना ले रेडियो से।
1: आपका भी स्वागत है। 90 साल होने के उपलक्ष्य में पूरे आपका टीम को और आपका ऑल इंडिया में जितना भी है परिवार को मेरे तरफ से प्रणाम, सुनने वाले को प्रणाम, आकाशवाणी के सभी को प्रणाम।
0: आकाशवाणी परिवार की ओर से भी आपको, तमाम सुनने वालों को प्रणाम और ढेर सारी शुभकामनाएं। कमल शाह जी पुराने श्रोता हैं, लगातार कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं। बिल्कुल, लक्ष्मी सागर विद्यापति चौक के हमारे पुराने श्रोता हैं कमल शाह जी। कमल शाह जी, आप जैसे श्रोताओं का जब कॉल आता है ना तो हमें बड़ी खुशी होती है, और पुराने श्रोता हैं और कई बातें आप हमारे साथ शेयर करते हैं, चाहे वो अच्छी बातें हो या जिंदगी से जुड़ी हुई ऐसे तकलीफ की बातें, कभी कभी जो मुश्किल हो जाती है, लेकिन आप तमाम सुनने वालों को सुनकर वो तकलीफ भी हमारी दूर हो जाती है, आपकी भी दूर हो जाती है ना। तो आज कौन सा गीत सुनवाएं कमल शाह जी, पहले ये बताइए कैसे हैं आप? खाना वाना खा लिया कमल जी?
1: गाना प्रोग्राम खत्म होगा तब,
0: क्या बात, मतलब गाना सुनने के बाद भूख और बढ़ेगी तब खाना खाएंगे, है ना। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। तो कौन सा गीत आज हम आपके लिए पेश करें जो आपके भोजन को और रुचिकर बना दे और टेस्टी बना दे? कौन सा गाना सुना? जलता है बदन। अरे क्या बात है, रजिया सुल्ताना फिल्म का ये गीत है, आशा भोसले साहिबा का गाया हुआ जलता है बदन। हम बिना देर किए इस उम्मीद में ये गीत आपके लिए प्ले कर रहे हैं कि फिर हमारी आपसे बात हो गई, है ना।
1: ठीक है, नमस्कार।
0: नमस्कार, शुभ रात्रि।

कमल शाह जी, लक्ष्मी सागर विद्यापति चौक के जिनके पसंद पर हम आपको सुनवा रहे थे लता मंगेशकर का गाया ये गीत फिल्म रजिया सुल्तान से। श्रोताओं, लगभग एक मिनट और शेष रह गए हमारे पास आज इस कार्यक्रम में। आप तमाम सुनने वाले जिनका कॉल लगा उनको तो तहे दिल से शुक्रिया है, साथ ही उनका भी जिन्होंने लगातार कोशिश की, या फिर वैसे श्रोता जिनके फ़ोन कॉल लगकर किसी वजह से कट गए। देखिए, तकनीकी साधन है, हमारी कोशिश होती है कि तमाम आप सुनने वालों तक आपकी पसंद हम पहुंचाएं। कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां होती है तो फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है, हमारी ये कोशिश होती है कि हम हमेशा आपके कॉल को रिसीव करें। तो उन सबको को भी दिल से धन्यवाद, और साथ ही आज इस कार्यक्रम के आज के इस अंक से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा, संयोजक असद दाऊद के साथ दीजिए अपने इस रेडियो हम सफर संजीव कुमार सुधाकर को विदा। एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने की ढेर सारी बधाइयां, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिएगा।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 11 होने ही वाले हैं। अब हिंदी में समाचार आप सुनेंगे, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।

0: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
1: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
2: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई, ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।